मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त सन 2026, प्रातः के 5:55 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सूरज की पहली किरण के साथ प्रातःकालीन की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी ही देर में सूर्य की किरणें संपूर्ण धरती को अपने आंचल में भरकर गतिमान और ऊर्जावान बना देंगी और धरती पर धरती के हर एक कण में नई ऊर्जा का विशाल संचार हो जाएगा। श्रावण के इस मास में चारों तरफ हरियाली, भक्ति और त्योहारों की गूंज शुरू हो चुकी है। नई ऊर्जा के साथ सभी में नई उल्लास के साथ नई चेतना जागृत हो गई और इसी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाने लेकर आए हैं हम कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हमजोली, जी हां संजोली। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है दीन दुनिया की खबर रखने का, यानी समाचार का। तो आइए श्रोताओं, चलते हैं हमारे दिल्ली स्टूडियो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक

0: जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी लखनऊ है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर कृषि के विषय में चर्चा होना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत एक भेंट वार्ता डॉक्टर संजीव कुमार से। वार्ता का विषय है फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती और आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से उप महानिदेशक डॉक्टर संजीव कुमार साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती की क्या कुछ संभावना है अपने प्रदेश में?
4: किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। प्रदेश में फल फूल सब्जियों की संरक्षित खेती की प्रचुर संभावनाएं हैं। फलों में विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी की खेती जाड़ों में जब करते हैं, सब्जियों में टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा है, करेला है, कभी कभी धनिया की भी खेती की जाती है, राजमा की खेती कर लेते हैं जिसको फरास बीन बोलते हैं
3: जी,
4: और कभी कभी 56 कद्दू और परवल की भी खेती इसमें की जाती है। अगर फूलों की बात करें तो गुलाब, जरबेरा और कभी कभी गुलदावदी की खेती भी संरक्षित खेती के रूप में की जाती है। संरक्षित खेती में पैदा करते हैं उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है और इन फसलों की उपलब्धता एक लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें कम क्षेत्रफल में लाभ भी अधिक होता है और इससे हमारे किसान भाइयों को रोजगार भी प्राप्त होता रहता है।
3: बेमौसम
4: भी पैदा होता है।
3: किसानों के खेत पे कौन कौन से पाली हाउस या ग्रीन हाउस उपयोगी होंगे?
4: जी, किसानों के खेत पर मुख्य रूप से प्राकृतिक वायु संवाहक पाली हाउस और वॉक इन टनल और नेट हाउस, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो किसानों के क्षेत्र में आसानी से लगाए जा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा समय बताना चाहूंगा कि जो प्राकृतिक वायु संवाहक पॉली हाउस होते हैं,
3: यानी नेचुरल हवा,
4: हाँ, इसमें एक पाइप के सहारे पॉलीथीन की सीट लगा दी जाती है कि जब हवा की जरूरत हो तो उसको ऊपर उठा दिया जाता है और नेट के थ्रू हवा अंदर आती जाती रहती है, और जब जरूरत नहीं होती है तो उसको नीचे गिरा दिया जाता है, विशेष तौर से जाड़ों के मौसम में तापमान नियंत्रित रहता है। और इनके बनाने पर अगर हम 1000 वर्ग मीटर का इस तरीके का पॉली हाउस बनाते हैं तो लगभग 10 से 15 लाख तक का खर्चा आ जाता है।

0: जाता है।
1: डॉक्टर साहब, नेट हाउस के क्या फायदे हैं और इसमें तकनीक क्या है?
0: नेट हाउस में मुख्य रूप से सब्जियों की पौध तैयार की जाती है। इससे सुरक्षा कीटों से हो जाती है, कीट बीमारियों का प्रकोप इसमें नहीं होने पाता है और इससे जो पौध तैयार होती है वो आगे चलकर कीट और विषाणु रोग से बची रहती है। दोनों तरीके की प्रजातियां होती हैं, कुछ सामान्य किस्में हैं और कुछ संकर किस्में हैं। किसान भाई अधिकांशतया संकर किस्मों को ज्यादा लगाते हैं संरक्षित खेती में, चूंकि इनकी पैदावार सामान्य किस्मों की अपेक्षा ज्यादा होती है। लेकिन मैं दोनों प्रकार की किस्में बताना चाहूंगा। टमाटर में जैसे पंत 3 है, पूसा गौरव, VL टमाटर 1, ये सामान्य किस्में हैं। और अगर संकर किस्मों की बात करें तो इसमें नवीन है, अविनाश 2 है, रूपाली है, मनीषा है और GS 600 है। ये कुछ संकर किस्में हैं जो टमाटर में की संरक्षित खेती के लिए अनुकूल हैं।
1: और शिमला मिर्च
0: में संकर प्रजातियों में अगर हम बात करें तो पूसा दीप्ति, भारत, इंदिरा, स्वर्णा, ओरोवेली और बाम्बी है। जबकि सामान्य किस्मों में कैलिफोर्निया वंडर, योलो वंडर, अर्का मोहनी, अर्का गौरव और अर्का बसंत प्रमुख रूप से हैं।
1: और खीरा में डॉक्टर साहब?
0: खीरे में दो तरीके की होती हैं, एक तो सामान्य प्रजातियां, दूसरी संकर प्रजातियां और तीसरी होती हैं बीज रहित प्रजातियां। तो इसमें पूसा संयोग जो है सामान्य प्रजाति है, संकर प्रजातियों में प्रिया, पंत संकर, खीरा 1 है और बीज रहित किस्मों में कियान और इसेटिस जैसी प्रजातियां हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहां फूलों की संरक्षित खेती करनी है,
0: पुष्प वाली जो फसलें हैं इनकी खेती की जा सकती है। सबसे ज्यादा मांग गुलाब की रहती है, इसके बाद जरबेरा की मांग रहती है अगर देखा जाए, और उसके बाद गुलदावरी की मांग अपेक्षाकृत कम रहती है। गुलाब की जो प्रमुख किस्में हैं इसमें रेड, ग्रैंड गाला, बेंडी, कैरामिथा, गोल्डन टाइम, लेम्बाडा कुछ ऐसी किस्में हैं जिनकी संरक्षित खेती की जा सकती है। जरबेरा में सांगरिया, जाफा, कबाना, डायना, एलन ये कुछ किस्में हैं जिनकी खेती कर सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, फूलों की संरक्षित खेती जहां करेंगे वहां इनकी अवधि क्या होगी?
0: गुलाब की खेती 3 से 4 वर्ष तक कर सकते हैं। गुलदावरी की खेती 8 से 9 महीने में समाप्त हो जाती है, जबकि जरबेरा की खेती 2 से 3 वर्ष तक चलती रहती है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 94-151-95-278, 94-151-95-278, 94-151-95-278।
1: डॉक्टर संजीव कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती कैसे करें किसान भाई बहन, कम क्षेत्रफल में बेमौसम कैसे फल फूल और सब्जियों को तैयार करें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत एक भेंट वार्ता डॉक्टर संजीव कुमार से। अब प्रस्तुत है सुविचार मातृभूमि।
3: मातृभूमि में एक ऐसी अलौकिक मोहिनी शक्ति है जो मूक से मूक प्राणी को भी मुग्ध कर लेती है। जो जितना ही अधिक संवेदनशील होता है इसके प्रति उसका भावनात्मक लगाव उतना ही अधिक रहता है। मानव हृदय में कवि चेतना सबसे अधिक संवेदनशील होने के कारण महान कवियों की रचनाओं में मातृभूमि का गौरवगान मिलता है। भारत भूमि को प्रकृति ने ऐसा इंद्रधनुषी सौंदर्य दिया है कि वह किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहता। महापुरुषों की देश सेवा प्रेरणा स्रोत है। मातृभक्त से श्रेष्ठता मिलती है, निस्वार्थ साधना इतिहास रचती है। मातृभूमि बहुलता में एकता स्थापित करके जीने की कला सिखाती है। सप्तपुरियों में एक का नाम लेने पर सभी की उपस्थिति हो जाती है। सदाचार, विचार और चरित्र से निर्मित मातृभूमि की जीवन दृष्टि कीर्ति बढ़ाती है। उपकार स्वीकार करने पर परोपकारी धन्य होता है। एक कोयल ने तोते के बच्चे से पूछा, अपने माता पिता का साथ छोड़कर मेवा फल खाकर संतुष्ट रह पाओगे? उसने कहा, पराधीनता में इसकी भूख नहीं है, अपने माता पिता के साथ पत्तियां खाकर रह जाऊंगा। अपनी मातृभूमि के प्रति है एक पक्षी का इतना उदात्त भाव। माँ की गोद में जन्म देने वाली मातृभूमि से बड़ा स्वर्ग दूसरा नहीं है, जहाँ ग्राम देवता में अन्नदाता रहते हैं। यहाँ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि पूरे विश्व को त्याग प्रेम का संदेश देती हैं। भारतीयता का सृजन मंत्र गूंजने पर जीवन चेतना थिरकने लगती है। मातृभूमि की दिव्यता बोध से अनुप्राणित कवि कुलगुरु कालिदास नगाधिराज हिमालय को देवात्मा और पृथ्वी का मानदंड कहते हैं। भवभूत के राम पूर्ण शैला गंगा अस्तमन करते हुए कुल देवता के रूप में प्रणाम करते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की एकता को एक सामाजिक सच्चाई माना। बंकिम बाबू ने

राष्ट्र प्रेम को सबसे बड़ा धर्म कहा है। रामचंद्र बंदोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखते समय बंकिम चंद्र से कहा था, वंदे मातरम से बंग दर्शन का पेट नहीं भरेगा, आप जल्द एक उपन्यास लिखना आरंभ कर दें। इसका उत्तर बंकिम बाबू ने दिया, इस गीत का मर्म अभी तुम लोग नहीं समझ सकोगे, अगर 25 वर्ष जीवित रह गए तो देखोगे कि इस गीत के पीछे सारा बंगाल पागल हो उठेगा। गुरु रामकृष्ण परमहंस के कहने पर 3 बार विवेकानंद ने काली माता से धन न मांग कर ज्ञान वैराग्य मांगा। इसी देवभूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण रज पड़ी है, यहीं से हमारी सभ्यता संस्कृत का जन्म और पोषण हुआ है। हिम पुत्रियों के तटों पर वेदों पुराणों का गायन किया गया। देवात्मा के अतिरिक्त संसार के और किसी भाग में कस्तूरी मृग के दर्शन नहीं होते। यहाँ स्वर्ग से अधिक शांतिप्रद स्थान है। नदियों में ऋषियों मुनियों ने स्नान करके इसे अलौकिक तीर्थ बना दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सहपाठी वेद मूर्ति पंडित क्षेत्रेश चंद चट्टोपाध्याय को पत्र में लिखा, तुम वेद में कार्य करो, मैं देश सेवा के लिए कार्य करूंगा। फांसी का फंदा तोड़ने वाले नरनाहर राम नारायण ने यही जन्म लिया। त्याग परोपकार शरणागत के रक्षक शिव दधीच के देश में जन्म लेने के लिए देवता लालायित रहते हैं। हिमालय से कन्याकुमारी, अटक से कटक और द्वारिका से रामेश्वरम के कण कण में राष्ट्रीयता का आदर्श समाहित है। क्या और कहीं मलय की रम्य घाटियाँ देखने को मिल सकती हैं, जहाँ तमाल वन शोभा, पान बेल से ढके सुपारी वृक्ष और इलायची के बेलों से लिपटे चंदन के वृक्ष हों। सेतुबंध से लेकर सरजू, त्रिवेणी से गोदावरी, कालिंद कन्या की कलकल धारा मातृभूमि का अध्याय रचती है। गगनचुंबी माल्यवान की अद्भुत चोटियाँ हैं तो पंचोटी का कहना ही क्या। अगस्त्य, सातकर्णी, सुतीक्ष्ण, शरभंग ने तप से इसे गौरवान्वित किया है। उच्च शिखरों वाला चित्रकूट और मंदाकिनी का दृश्य मातृभूमि के कंठ में मोतियों का हार पहनाता है। अत्रि अनसुईया के क्षेत्र से पावन धारा बहती है। केरल में त्रिकूट देश का दक्षिणी मानदंड और विजय स्तंभ है। शिप्रा महाकाल के कारण अवंती को जो प्रतिष्ठा प्राप्त है, वह गंगा और विश्वनाथ के कारण प्राप्त काशी के गौरव से किसी भांति कम नहीं। कलिंग में महेंद्र पर्वत के साथ हिलोरे लेता सागर का सौंदर्य स्वर्गिक है। नर्मदा सोनभद्र का उद्गम अमरकंटक अलौकिक है। हमारी पर्व परंपराएं मातृभूमि को अर्घ्य चढ़ाती हैं। जीवन बचाने के लिए मातृभूमि अनुराग विलक्षण सार्वभौमिक तत्व है। इतनी पूर्ण मातृभूमि को प्रणाम करके मन नहीं भाता।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये सुविचार। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है 747 किलोहर्ट्ज़ पर। मनुष्य जीवन में ईश्वर के अस्तित्व को सहज रूप से साधना ही आराधना है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

कि हे ईश्वर, आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं, जिस ओर नजर जाती है उस ओर आप हर कण में व्याप्त हैं। आपका होना हमारे जीवन को संतुलित व संयमित करता है कि हर ओर सत्यम शिवम सुंदरम, हर हृदय में हर हर हैं, जड़ चेतना में अभिव्यक्त सतत, कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं।

कि हे प्रभु, तेरी भक्ति में मेरा मन सदा रमा रहे, तेरे नाम का स्मरण मेरे जीवन की पहचान बनी रहे। कि शंकर ही सत्य है, शंकर ही सहारा, शंकर ही जीवन का है उजियारा। भोलेनाथ की भक्ति में मन रम जाए, हर हर महादेव से हृदय भर जाए।

कहे ईश्वर अहंकार और मोह से दूर रखकर सत्य के मार्ग पर हमें चलाना, हर पल तेरी कृपा का अनुभव हो और चरणों में श्रद्धा बनी रहे। कि रघुनंदन राम तुम्हारा नाम ही सहारा है, तुम्हारी भक्ति में मन को मिलता उजियारा है, हर संकट में प्रभु तुम ही राह दिखाना, अपने चरणों में रखकर जीवन सफल बनाना।

कि हे प्रभु, तेरा पावन नाम का स्मरण मेरी हर सांस में बसा रहे। जीवन में चाहे सुख आए या दुख, मेरा विश्वास कभी ना डगमगाए। कि सतनाम वाहे गुरु मन में ज्योति जगा दे, अपने चरणों में रख कर जीवन सफल बना दे। हर सांस में तेरा नाम, हर धड़कन में तेरा ध्यान हो, वाहे गुरु की कृपा से मिले प्रेम, शांति और सम्मान हो।

कि हे ईश्वर, मेरे हृदय में प्रेम, दया, करुणा और सेवा की भावना रहे। अहंकार, मोह और भय से दूर रखकर सत्य के मार्ग पर चलूं। कि सीता राम का नाम ही मन का उजियारा है, इनके चरणों में मिलता सच्चा सहारा है। राम में सीता, सीता में राम समाए हैं, इनका पावन नाम ही जीवन को धन्य बनाए हैं।

कि हे ईश्वर, हम पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना और हमेशा सद्मार्ग पर चलाए रखना। इसी प्रार्थना के साथ आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मीडियम वेव 401.61 मीटर पर ये आकाशवाणी लखनऊ है। श्रोताओं, अनेक ग्रंथों में महान ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जो हमारे चरित्र का निर्माण करता है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग, भाग 261। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

नवधा भक्ति का उपदेश देकर शबरी का उद्धार करने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण पंपासर नामक सरोवर की ओर अग्रसर हुए। गहन वन के अभेद्य रास्ते पार करते हुए अरण्य की शोभा अनायासी मन को हर लेती है। विशाल वृक्षों से लिपटी लताएं ऐसी मालूम होती हैं जैसे विभिन्न आकार प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं, कोयल कूक रही है। ढेक और महोग पक्षी को देख ऊंट और खच्चर का बोध होता है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो कामदेव की सेना में अश्वों की भूमिका निभा रहे हैं। पर्वतों के शिलाखंड रथ और उनसे उत्पन्न निर्झर नगाड़ों का नाद उपस्थित करते हैं। ऐसी दृश्यावली में जहां कामदेव की सेना प्राणी मात्र के हृदय में काम का संचार करती है, गोस्वामी तुलसीदास ने कामी लोगों की विवशता तथा धीर और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ करने वाली श्री राम भक्ति की महिमा का गान प्रस्तुत किया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस की संगीतमय प्रस्तुति भाग 261। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत समाचार होंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयकम् 26,000-तमम् सर्वसम्मत्या पारितम्। अनेन विधेयकेन निगमाय स्वकीयानि कार्याणि औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमन्यन्ते। अथ च राज्यसर्वकाराः सहकारिता विकासकार्ये संस्थापिताय कस्मैश्चित् अपि निकायाय अस्याः संस्थायाः वित्तीयसाहाय्यम् दातुम् अधिकृताः। एतद् अतिरिच्य संसदा संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां केरल इति राज्यस्य नाम परिवर्त्य केरलम् इति विधातुं केरल नाम परिवर्तन विधेयकं 26,000-तमम् अपि स्वीकृतम्। अपरतः वैदेशिक अनुदानानाम् उपयोगम् अधिकाधिकं पारदर्शिकं उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् आनीतम्। वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकम् 26,000-तमम् विस्तृत सूक्ष्म परीक्षणार्थम् संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् गृहमंत्री अमित शाहः लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला महोदयाय पत्रं लिखित्वा नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये प्रदर्शनकाले घटितानां विविधानां घटनानां उपरि पुनः एकवारं विस्तृत चर्चायै स्वकीयां सम्मतिं प्राकटयत्। संसद परिसरे पत्रकारैः सह सम्भाषमाणः मन्त्री अकथयत् यत् सर्वकारः स्वयं वदति यत् सः चर्चायै सन्नद्धः अस्ति तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति, किन्तु विपक्षः उत्तराणि श्रोतुं न वाञ्छति, चर्चायाश्च पलायनं करोति।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम रेल विभागस्य गेरातपुर अहमदाबाद खण्डे चतुर्मार्गीय उपरि सेतोः निर्माणार्थं 53,000,000,000 रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृतास्ति। रेलमन्त्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्यान्तर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां

0: निर्माणार्थं स्वीकृता अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् रेलसेतु भागस्य समग्र दीर्घता 6.1 मीटरमिता भविष्यति। अस्मिन् 53 मीटरपरिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हरघर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मण्डल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्तिभावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्याम् एका विशाल तिरंगा नौकायात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वम् एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्रगतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण यात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते। भारत ऋतुविभागेन उत्तर बंगालखात्याः उपरि न्यूनचापक्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशाराज्ये गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिकवृष्टिः भवितुम् अर्हति। ह्यः नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीये दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्णपदकानि, एकं रजतपदकं, एकं कांस्यपदकं च प्राप्तम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर पर ये आकाशवाणी लखनऊ है। स्वस्थ मनुष्य में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए हमारा स्वस्थ होना जरूरी है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज का विषय है विश्व अंगदान दिवस, नया जीवन देने की शक्ति, और जानकारी दे रही है नीना सोनकर।
2: नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो न केवल जीवन से जुड़ा है बल्कि जीवन देने की शक्ति से जुड़ा है। आज का विषय है विश्व अंगदान दिवस, जो हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन न केवल हमें अंगदान की आवश्यकता और महत्व के बारे में जागरूक करता है बल्कि ये भी याद दिलाता है कि एक व्यक्ति की सोच, एक परिवार की सहमति और एक निर्णय किसी और के लिए संपूर्ण जीवन की सौगात बन सकता है। शायद हम में से बहुतों ने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि मृत्यु के बाद भी हमारा शरीर किसी के लिए जीवन की उम्मीद बन सकता है। दिल, किडनी, लिवर, फेफड़े, आँखें और यहाँ तक कि त्वचा तक, हमारे शरीर के कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हम मृत्यु के बाद किसी जरूरतमंद को देकर एक नया जीवन दे सकते हैं। ये विज्ञान की एक ऐसी क्रांति है जो केवल तकनीक पर नहीं बल्कि हमारी संवेदनशीलता, उदारता और इंसानियत पर टिकी है। आज भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो अंग प्रत्यारोपण के इंतजार में हैं। कोई किडनी की असफलता से पीड़ित है, कोई लीवर ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा में है, कोई आंखों की रोशनी को तरस रहा है। इन सब के लिए कोई दवा, कोई मशीन, कोई और रास्ता नहीं, केवल एक ही राह है और वो है अंगदान। और ये कोई असाधारण काम नहीं है बल्कि एक मानवता से भरा हुआ सामान्य निर्णय जो हम सभी ले सकते हैं। श्रोताओं, जब हम अंगदान की बात करते हैं तो अक्सर ऐसे सवाल मन में उठते हैं, क्या अंगदान से हमारे शरीर को नुकसान होगा? क्या धार्मिक दृष्टिकोण से ये सही है? क्या ये प्रक्रिया सुरक्षित है? और सबसे अहम, क्या मेरे एक अंग से वाकई किसी का जीवन बच सकता है? इन सभी सवालों के उत्तर बहुत स्पष्ट हैं। हाँ, अंगदान पूरी तरह सुरक्षित, कानूनी और नैतिक रूप से मान्य प्रक्रिया है। और हाँ, आपका एक निर्णय कई जिंदगियों में उजाला भर सकता है। भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच अब भी सीमित है, वहाँ अंगदान की जागरूकता और स्वीकृति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल हजारों लोग केवल इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें समय रहते अंग नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ हमारे देश में अंगदान की दर अब भी बहुत कम है क्योंकि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है या वे भावनात्मक रूप से निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन اگر ہم چاہیں تو یہ تصویر بدل سکتی ہے، اس کے لیے ضرورت ہے بات چیت کی۔

0: जानकारी की और दिल से लिए गए उस एक निर्णय की जो किसी अनजाने इंसान के जीवन में रोशनी बन जाए। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये विकल्प है और ये विकल्प हमारे हाथ में है। कई बार परिवारों को अंगदान की बात मृत्यु के समय सोचनी पड़ती है जब मन पहले ही भारी होता है। ऐसे में यदि पहले से अंगदान की इच्छा व्यक्त कर दी जाए, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय या परिवार से चर्चा करते समय, तो समय आने पर ये निर्णय सरल हो जाता है। आज देश भर में कई अस्पताल और संगठन हैं जहां आप ऑर्गन डोनर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये एक सशक्त संदेश होता है कि आप मृत्यु के बाद भी किसी की जिंदगी बचाना चाहते हैं। इस चर्चा में ये भी समझना जरूरी है कि अंगदान का असर केवल शारीरिक नहीं होता, ये सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत गहरा होता है। किसी की आंखों से कोई बच्चा फिर से स्कूल जा पाता है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होने से वो अपनी पढ़ाई या नौकरी फिर से शुरू कर पाता है, किसी को लीवर मिल जाने से वो अपने परिवार में लौट आता है। कल्पना कीजिए, आपकी मृत्यु के बाद आपके शरीर का एक हिस्सा किसी की जिंदगी में संगीत बनकर लौटे। ये केवल विज्ञान नहीं, ये एक अद्भुत मानवीय चमत्कार है और यही कारण है कि विश्व अंगदान दिवस केवल एक दिन की जागरूकता नहीं बल्कि एक मानवीय अभियान है। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये एक ऐसी विरासत है जो आपके नाम से नहीं, आपके दिल के हिस्से से जुड़ी होती है और शायद यही सबसे सुंदर उपहार है जो कोई किसी को दे सकता है। श्रोताओं, अगर आज की चर्चा से आप थोड़े भी प्रेरित हुए हैं तो अपने परिवार से इस विषय पर बात करें, उन्हें बताएं कि आप अंगदान के पक्ष में हैं। ये निर्णय छोटा लगे लेकिन किसी के लिए पूरी जिंदगी की तरह बड़ा हो सकता है। हम सब मिलकर अगर इस दिशा में थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो ये समाज एक स्वस्थ, संवेदनशील और समृद्ध समाज बन सकता है। तो आइए इस विश्व अंगदान दिवस पर हम संकल्प लें कि हम मृत्यु के बाद भी जीवन देने वाले बनेंगे, कि हम दूसरों के अंधेरे में रोशनी की किरण बनेंगे और सबसे अहम कि हम उस मानवीय ताकत को पहचानेंगे जो सिर्फ शरीर से नहीं दिल से निकलती है। आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, मैं थी नीना सोनकर। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए स्वास्थ्य संदेश के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अंगदान के बारे में सोचें क्योंकि आप किसी के लिए जिंदगी बन सकते हैं। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। थोड़ी देर में हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा होगी।
2: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात्रि 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकालीन की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा देवर्षधर के स्वर में भजन। शाम 6:30 पर लोकायतन व खेती किसानी कार्यक्रम होगा हमारे किसान भाइयों का, जिसमें आज आप सुनेंगे लोकायतन के अंतर्गत एक वार्ता अरुण कुमार सिंह से। विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली संवर्धन। और कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत सुनेगा एक भेंट वार्ता डॉक्टर कुंदन किशोर से।

चर्चा का विषय होगा अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन और आपसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। नई उड़ाने कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर और हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग होगा अपने ही समय पर यानी शाम 5:10 पर। नीरा मिश्रा के स्वर में अवधि लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 2:45 पर और प्रातः 9:50 पर। कार्यक्रम विज्ञान और किसान के अंतर्गत सुनेगा एक भेंट वार्ता डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव से। विषय होगा पशुओं में लंगड़िया बुखार कारण और निवारण। आपसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर आंगन दोपहर 1:15 पर। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जवानों के लिए, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1:50 पर। फोन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें अपने ही समय पर यानी प्रातः 11:00। उर्दू कार्यक्रम पेश किया जाएगा प्रातः 9:30 पर, जिसमें आज का मौजू है लफ्ज खामोश हो गए पर गूंज अभी बाकी है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश है। प्रातः 9:15 पर आज आप सुनेंगे जालौन व हाथरस जिले की हलचल। भद्रवाह मेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत होगा प्रातः 8:45 पर। प्रातः 7:31 पर सुनिएगा पंडित प्रवीण कश्यप का ख्याल गायन राग नट भैरव, कार्यक्रम होगा शास्त्रीय संगीत। और अब से थोड़ी देर में यानी 7:10 पर होगा कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हमजोली, जी हां संजोली। श्रोताओं, आज का विषय है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। जी हां, संस्कृत की यह सूक्ति मानव जीवन के दो अत्यंत महत्वपूर्ण गुणों दानशीलता और सत्यवादिता का संदेश देती है। इसका सरल अर्थ है कि मनुष्य के हाथों की वास्तविक शोभा दान करने में है और उसके कंठ की वास्तविक शोभा सत्य बोलने में है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अच्छे कर्म और सच्चे वचन मनुष्य के व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं। बाहरी सुंदरता कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार और चरित्र जीवन भर मनुष्य को सम्मान दिलाते हैं। दान का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। दान भारतीय संस्कृति की महान परंपरा रही है। दान का अर्थ केवल धन या वस्तु किसी को दे देना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी दान है। भूखे व्यक्ति को भोजन देना, गरीब विद्यार्थी को पढ़ाई में सहायता देना, जरूरतमंद को वस्त्र देना, किसी दुखी व्यक्ति को समय देना और किसी असहाय व्यक्ति का सहारा बनना भी दान के ही रूप हैं। दान मनुष्य के भीतर करुणा, प्रेम, सहानुभूति और उदारता जैसे गुणों का विकास करता है। जब हम अपनी वस्तुओं या संसाधनों को किसी जरूरतमंद के साथ साझा करते हैं, तो समाज में सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ती है, प्रबल होती है। दान केवल लेने वाले व्यक्ति की सहायता नहीं करता, बल्कि देने वाले व्यक्ति को मन को भी संतोष देता है। हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में दान को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में त्याग और दान की महा

महान मिसाल प्रस्तुत की है। राजा हरिश्चंद्र, कर्ण, दधीची जैसे पात्रों की कथाएं त्याग और परोपकार की भावनाओं से भरी हुई हैं। इन उदाहरणों से हमें सीख मिलती है कि वास्तविक महानता धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उसका उचित उपयोग दूसरों के कल्याण करने में है। अगर दान के सही स्वरूप की बात की जाए तो दान तभी सार्थक होता है जब उसमें निस्वार्थ भावना हो। यदि कोई व्यक्ति केवल प्रसिद्धि, प्रशंसा या दिखावे के लिए दान करता है तो दान की मूल भावना कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। सच्चा दान वही है जिसमें देने वाला व्यक्ति सामने वाले की आवश्यकता को समझे और बिना किसी स्वार्थ के सहायता करे। दान अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास धन समान मात्रा में नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य होता है। कोई धन दे सकता है, कोई ज्ञान, कोई समय और कोई अपनी मेहनत। किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में मदद करना भी दान है और किसी बुजुर्ग की सहायता करना भी दान है। इसलिए दान का संबंध केवल अमीरी से नहीं बल्कि बड़े और उदार हृदय से होता है। अब अगर बात की जाए इस सूक्ति के दूसरे भाग की कि सत्यम कंठस्य भूषणम, अर्थात सत्य कंठ का आभूषण है। मनुष्य के वचन उसकी पहचान बनाते हैं। सत्य बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे समाज में विश्वास और सम्मान प्राप्त करता है। सत्य का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। कई बार झूठ बोलना हमें तुरंत आसान रास्ता दिखाई देता है, लेकिन झूठ को छिपाने के लिए व्यक्ति अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। इसके विपरीत सत्य बोलने वाले व्यक्ति को अपने शब्दों को छिपाने या बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सत्य मनुष्य के चरित्र को मजबूत बनाता है। परिवार, मित्रता, विद्यालय और समाज, हर संबंध की नींव विश्वास पर टिक जाती है और विश्वास सत्य से पैदा होता है। यदि लोगों को एक दूसरे के शब्दों पर विश्वास ना हो तो कोई भी संबंध लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे नेताजी महात्मा गांधी ने सत्य को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार बनाया था। उन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से समाज और देश के कई एक नई दिशा प्रदान की थी। उनके जीवन हमें सिखाता है कि सत्य केवल बोलने की चीज नहीं है बल्कि जीवन में अपनाने का सिद्धांत है। दान और सत्य का एक बहुत गहरा संबंध है। दान और सत्य अलग अलग गुण दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाते हैं। दान हमारे कर्मों को सुंदर बनाता है और सत्य हमारे वचनों को सुंदर बनाता है। एक व्यक्ति यदि बहुत धनवान है लेकिन किसी की सहायता नहीं करता तो उसकी संपत्ति समाज के लिए उतनी उपयोगी नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है लेकिन सत्य नहीं बोलता तो उसकी वाणी पर विश्वास करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए जीवन में केवल बाहरी सुंदरता पर्याप्त नहीं है, मनुष्य के कर्म और वचन उसकी वास्तविक पहचान बनाते हैं। आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धक इस जीवन में एक सूक्ति का महत्व और भी बढ़ गया है। लोग सफलता और धन प्राप्त करने की दौड़ में कई बार नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंततः कहा जा सकता है कि हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम केवल एक संस्कृत सूक्ति नहीं बल्कि आदर्श जीवन को जीने का संदेश देती है। दान हमारे हाथों को पवित्र बनाता है और सत्य हमारी वाणी को सम्मान देता है। धन, वस्त्र और बाहरी आभूषण समय को साथ नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चे शब्द मनुष्य की ऐसी पहचान बनाते हैं जो लंबे समय तक बनी रहती है। तो श्रोताओं, आज की विविधा यही तक।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने के लिए संसद ने पारित किया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी, चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर जिले के बांस गांव ब्लॉक को मिला पहला स्थान, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला पुरस्कार। और प्रदेश में फिर मानसून सक्रिय होगा, 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी, जबकि लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। यह विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: इस बीच विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। संसद के दोनों सदनों ने कल विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया कल पूरी हो गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रक्रिया के दौरान 18 आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय चयन समिति ने पहले दिन करीब 10 आवेदकों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें रिटायर आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र, रिटायर आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल रहे। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभवों का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम 3 नाम की सूची तैयार करेगी। ये नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस फैसले

0: 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो के दूसरे दिन कल कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी की राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है।
2: देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगले दिनों में जैसा कि आपके अपने प्रेजेंटेशन में आया कि कंप्रेस्ड बायोगैस में भी हम देश में सर्वाधिक उत्पादन कर रहे हैं, यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर है।
1: कार्यक्रम में दूसरे दिन भी प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में गोरखपुर जिले का बांसगांव विकास खंड नंबर 1 चुना गया है। यह जानकारी नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में दी गई है।
3: इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोरखपुर को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का जोर समावेशी विकास के जरिए नागरिकों के जीवन में सुगमता और गुणवत्ता के वृद्धि और समग्र रूप में जीवन स्तर के सुधार पर होता है। इसके अंतर्गत 5 थीम स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, आधारभूत ढांचा और सामाजिक विकास के कुल 39 संकेतकों पर संबंधित आकांक्षी ब्लॉकों का मूल्यांकन किया जाता है। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के कई जिलों में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई। लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम मुख्यालय से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकली। बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल और अमरोहा में भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना है। हापुड़ जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को 2.5 लाख झंडे बनाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव अनवरपुर के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हेमलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान के लिए आभार जताया।
4: हमारे SSG अधिकारियों ने हमें 10,000 झंडे का टारगेट दिया था बनाने के लिए, हमने वो लक्ष्य पूरा किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ कार्य करने को मिला महिलाओं के लिए। और पहले गांव में महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, हम SSG से जुड़े तो हमें बाहर जाने का अवसर मिला और हम बहुत खुश हैं इस चीज।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश में युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए रंग दे बसंती अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत कल लखनऊ में विश्वविद्यालय के पास भित्ति चित्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने माफिया मुक्त और बदलते उत्तर प्रदेश की थीम पर सार्वजनिक भित्ति चित्र बनाए। इस अभियान के क्रम में आज मुजफ्फरनगर में कॉमिक वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज ही रंग दे बसंती अभियान का गीत डर से आजादी भी लॉन्च किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।
5: नशा किसी भी युवक की शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या व्यक्ति से उसका विवेक, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, परिवार का विश्वास और जीवन का उद्देश्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान केवल एक सरकारी अभियान

0: नहीं बल्कि राष्ट्र की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने का जन आंदोलन है।
1: प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश न होने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ रही है। कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की खबर भी मिल रही है। उधर मौसम विभाग आगामी 18 अगस्त तक मानसून के फिर सक्रिय होने और राज्य के कई जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना जता रहा है। इस बीच पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से मात्र 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहां बाढ़ से राहत के लिए विविध इंतजाम किए जा रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने के लिए संसद ने पारित किया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी, चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर जिले के बासगांव ब्लॉक को मिला पहला स्थान, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला पुरस्कार। और प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी लखनऊ है और श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। इसी के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में पंडित प्रवीण कश्यप का ख्याल गायन, राग है नट भैरव।

ने धने धने तो पम बधने ता हा सा बीच बबरम सरा ने नि ता सरा ने नि ता ता सरा ने नि ता ता गग नि ता ता सरा ने नि ता ता धरा ने नि ता ता बब

धनी धनी धनी धपम अब धनी ता हाँ सभी जब बरम सरदे ने निनी ता सरदे ने निनी ता ता सरदे ने निनी ता ता का निनी ता ता सरदे ने निनी ता ता धरदे ने निनी ता ता बब बब धरदे ने निनी ता ता मम मम बब

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित प्रवीण कश्यप का ख्याल गायन राग था नट भैरव। और इसी कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ यहीं संपन्न होता है। कल फिर होगी मुलाकात एक नई आवाज के साथ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार प्रभात होंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
6: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
5: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि

0: संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
1: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
2: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
3: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे है, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
4: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
6: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि

0: प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
2: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजी माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चोवा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
4: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास, डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया, कहा बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है देश में अंगदान की

0: कमी बनी चुनौती। भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर एक से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 8:15 हो रहे हैं और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली।

यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रफला क्रियाः। जहां स्त्रियों का यानी कि नारियों का आदर होता है, वहां देवताओं का वास होता है और उनके तिरस्कार किए गए स्थान पर किए गए सारे सद्कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम नमस्ते बरेली में, और हम लेकर हाजिर हैं आज ताजगी से भरा हमारा ये मॉर्निंग शो नमस्ते बरेली। कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे कि बड़े ही सुंदर श्लोक से हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की, तो उसके पीछे की वजह भी आपको बताते चलें कि हम देखें तो इस सृष्टि का निर्माण ही में सभी का योगदान है। ऐसे में हम आधी आबादी की बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारे जननी, हमारी माताएं बहनों के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो लोग अपना सर्वस्व निछावर करती हैं अपने परिवार के पीछे। बहुत बड़ा योगदान होता है परिवार को आगे लेके चलने में उनका, और एक महिला माँ है, बहन है, जननी है, तो ऐसे में हम देखते हैं कि वो सबकी तो सेवा करती हैं लेकिन कहीं पीछे रह जाती हैं अपने बारे में सोचने के लिए। वो अपनी स्वास्थ्य को, अपनी प्राथमिकताओं को सबसे अंतिम स्थान पर रखती हैं। उनके लिए उनकी जिम्मेदारी, उनकी प्राथमिकताएं, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनका समाज, ये सारी चीज़ें पहले होती हैं और वो स्वयं को, अपने स्वास्थ्य को सबसे अंत में रखती हैं। तो श्रोताओं, हुई ना ये वो वाली बात कि सबको जो देने वाला होता है ना, वो बड़ा महान होता है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, सब अपने अपने स्थान पर कार्यरत हैं, और अगर बात करें आधी आबादी की तो आज किन्हीं भी मायनों में वो कम नहीं है, हर स्थान पर वो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। ऐसी ही बातें हम कार्यक्रम में और आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि भाई जो हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं, जो लोग भी हमें मतलब सुन रहे हैं इस समय, वो भाई थोड़ा बहुत अपना भी ध्यान रखें। भाई सबसे पहले वो अपने आप को फिट रखें, तभी तो परिवार को फिट रख पाएंगी। और डॉक्टर भी ऐसा बोलते हैं और जो विशेषज्ञ लोग हैं वो भी ऐसा बोलते हैं कि परिवार की रीढ़ जो है वो महिला, उस परिवार की गृहिणी होती है, महिला होती है, अगर वो बीमार पड़ती है तो पूरा परिवार ही बीमार होता है एक तरीके से। तो बिल्कुल अपना ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और इन सारी बातों को लेकर के आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ रही हैं वेलनेस कोच अंजना चतुर्वेदी। आइए बात करते हैं अंजना जी से और जानते हैं कि कैसे खुद को फिट रखें, खुद को आत्मनिर्भर बनाएं और अपनी दिनचर्या में से थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालें। आइए बात करते हैं अंजना चतुर्वेदी।

0: 26.
1: तो श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे कहा कि महिलाएं कदम से कदम मिलाकर आज भारत में पुरुष के साथ चल रही हैं, और किन्हीं मायनों में भी वो कम नहीं है। आज महिलाओं ने चांद पर कदम रख दिया है। हम देखें कौन सी ऐसी दिशा है जहां वो पीछे है। हर जगह वो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। और अब हम जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि आज हम यूं ही वहीं ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कॉमन सामान्य बात है और हमेशा से हम लोग करते रहे हैं अपने कार्यक्रम में। तो इसलिए क्योंकि आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे महिलाओं की आत्मनिर्भरता के संबंध में। महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वस्थ कैसे रहे, तो स्वस्थ रहते हुए भी आत्मनिर्भर बनना, अपना भी ध्यान रखना, इन सारी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं अंजना चतुर्वेदी जी, जो कि स्वयं एक इंडिपेंडेंट और वर्किंग विमेन है, और बताएंगी हमें कि अन्य जो महिलाएं हैं वो भी कैसे स्वस्थ रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इंडिपेंडेंट भी बने। तो अंजना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते बरेली में।
2: हाय, मैं अंजना चतुर्वेदी, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। तो मेरी भी लाइफ बहुत ही बेकार थी। मैं एक घर पे रहती थी, मेरा 90 किलो वेट था, लेकिन मैं अपनी सेहत के आगे कुछ ध्यान, मैं सेहत पे देख ही नहीं रही थी, मैं तो सेहत एकदम खराब होती जा रही थी। मुझे 7 बार जॉइंटिस हुआ था। ओके, तो मैं नहीं चाहती कि जितनी भी ये वुमेन्स है, लेकिन कहीं अपने आप को आप भूल रही है, तो मैं चाहती हूँ आप अपने आप को याद करिए, अपनी पहचान लाइए, और लेकिन अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए।
1: अच्छा, एक बात बताइए अंजना जी, जैसे हमारी बहुत सारी श्रोता महिलाएं इस समय सुन रही हैं आपको, और बहुत दूर दूर सुन रही हैं
2: जी,
1: तो कुछ उन्हें बताइए कि महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर बनते हुए भी फिट रहने वाली बात तो हुई कि भाई अपना ध्यान रखे परिवार का, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कहाँ से शुरुआत कर सकती है?
2: आत्मनिर्भर की शुरुआत वो सबसे पहले अपनी हेल्थ से कर सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आपको वेल्थ अच्छी है। आप अगर जिंदगी में अपना शरीर साथ अगर नहीं दे पाएंगी, शरीर को अगर फिट नहीं कर पाएंगी, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप बाहर भी कल को जॉब भी करती हैं, तो आपकी जॉब में अगर आपकी बॉडी में अगर कोई दिक्कत है या आपको कोई समस्या है तो आप क्या जॉब कर पाएंगी? नहीं। आप अपने आप को इतना ध्यान दीजिए, मेरे को तो वुमेन्स के लिए सबसे ज्यादा वो है, क्योंकि हमारे भारत में इंडियन में सबसे ज्यादा मोटापा हमारी फीमेल में है।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे थे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी थी वेलनेस कोच अंजना चतुर्वेदी जी, और आपने बताया अपने जीवन की यात्रा को कि कैसे इन्होंने एक अस्वस्थ शरीर, बेडौल शरीर से एक स्वस्थ शरीर की काया में परिवर्तित किया, खुद को न सिर्फ काया को स्वस्थ किया बल्कि अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाया और अपने कदमों पर खड़े होकर आज एक अच्छे से जीवन को बिताते हुए आगे बढ़ रही हैं और लोगों को एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का संदेश देते हुए आगे बढ़ रही है। तो अंजना जी, आप हमसे कार्यक्रम में जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच सर, आपका भी वेलकम।

वेल ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम और सुन रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग शो, हमारा इंफोटेनमेंट प्रोग्राम नमस्ते बरेली अपने रेडियो दोस्त ब्रजेश के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं बहुत सारी बातों पे, फिलहाल आगे और भी बातें करेंगे। सुबह हो गई है, अखबार और चाय के साथ आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली का। प्रोग्राम में हमने अभी बात की कि भाई अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात भी श्रोताओं आपसे बात करेंगे। देखिए, बारिश ऐसा लग रहा है ना जैसे कि अब जा रही है, नहीं है आज, कल भी धूप अच्छी थी, आज भी मौसम खुला हुआ है। मौसम का परिवर्तन जो है बहुत तेजी से हो रहा है, ऐसे में अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम में कैच द रेन कैंपेन की। प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को कहा, नाम दिया कैच द रेन, मतलब साधारण शब्दों में बात करें तो बारिश को पकड़ लो। इसका अर्थ यह है कि जो भी बारिश हो रही है हमारे आसपास, हमारे छत पे, हमारे आजू बाजू, उसको हम वापस से इकट्ठा कर लें, उसके जल को चाहे अपने किन्हीं माध्यमों से, या फिर उसको हम ग्राउंड में यानी जमीन के नीचे डाल दें, अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर लें, भूगर्भ जल स्तर को बढ़ा लें। तो इसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, और यहाँ तो फिलहाल गवर्नमेंट से हम भी आप सबकी तरफ से ये कहेंगे कि भाई एक ऐसी वृहत योजना भी चलाएं जिसमें सब्सिडी के रूप में भाई और लोगों पे यह अनिवार्य भी किया जाए कि आपको जो है वर्षा के जल को संरक्षण करना है, उसकी रक्षा करनी है। ऐसी एक योजना ही आनी चाहिए, जैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जिसमें हम सोलर से यानी सूर्य की रोशनी से बिजली बना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसी भी एक योजना चलाएं। आज हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बिहाफ पे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री भूगर्भ जल संरक्षण योजना अगर ऐसे चले और कंपलसरी अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति के घर में उसकी जगह के अनुकूल एक, हालांकि बहुत बड़ा खर्चीला काम नहीं है, एक पिट, सोक पिट लगाई जाए जो छत के पानी को, साफ पानी को जमीन के नीचे यानी कि ग्राउंड में डाल दे, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि हम लोग कितनी आसानी से

पानी को यूज कर रहे हैं, इधर से उधर कर ले रहे हैं, जमीन में से साफ पानी निकाल के घंटों अपनी गाड़ियां धो रहे हैं। बार बार लगातार हम ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें करने से कुछ नहीं होगा, परिवर्तन लाना होगा अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर। अगर आप किसान हैं तो अपने खेतों में छोटे छोटे गड्ढे बना लें, बारिश के पानी को इकट्ठा करें, बाद में अपनी सिंचाई में यूज कर सकते हैं आप उसे। अगर आप एक निवासी हैं, चाहे शहर के या ग्रामीण, तो अपनी छत के पानी को जमीन में डाल सकते हैं। यही है कैच द रेन कैंपेन।

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी हाँ, इन दिनों हम देख रहे हैं कि हर तरफ तिरंगे झंडे की धूम है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या शान से फहरा रहा है। जी हाँ, ये बात हम यूं कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि बरेली में बहुत सारे संस्थानों द्वारा तिरंगा यात्राएं निकाली गईं और इसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी निकाली गई, बहुत सारे लोगों ने तिरंगा यात्राएं निकाली बरेली में और ये प्रदर्शित करता है राष्ट्र के प्रति उनके सच्चे भावों को। और श्रोताओं, अब बात करते हैं कि हम सभी अपनी जीवन में रेलगाड़ी से जुड़े हैं और बचपन में तो वो हमारे लिए एक एक एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था। अगर आज की बात करें तो आज ज़रूर एक वो ट्रांसपोर्टेशन का साधन, एक महत्वपूर्ण साधन है और बहुत कम समय में हम एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित रूप से जा सकते हैं। लेकिन बचपन की यादें भी अलग थी कि वो रेलगाड़ी की कुछ छक छक छक छक की बातें, कितनी कहानियाँ, मतलब कितने ही रिश्ते बन जाया करते थे ट्रेन में कि एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते करते लोग एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल जाते थे कि वो सुनहरी यादें आजीवन उनके साथ चलती थी। अच्छा, हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे वाकये हैं कि चलते चलते वो रिश्ते ऐसे बने कि आज तक माता और पुत्र का वो रिश्ता कायम है। बहुत सारी बातें हैं, ज़रूर किसी अन्य कार्यक्रम में साझा करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में ये बात, ट्रेन की बात इसलिए आई है कि पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के अलग अलग रेलखंडों में 660 किलोमीटर रेलखंड जो है, यानी ट्रैक है, उस पर कवच 4.0 लगेगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि कवच का मतलब सिग्नल जो प्रणाली है वो सुरक्षित हो जाएगी और जो ट्रेन में दुर्घटनाएं होने की जो संभावनाएं हैं आमने सामने वो कम हो जाती है। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है इससे कि कभी दुर्घटना की स्थिति में या एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आने की स्थिति में वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है आपके ट्रेन के अंदर। और ऐसा सारा सिस्टम डेवलप करने के लिए पूरी 660 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक है इसमें कवच का वो सिस्टम लगाया जाएगा। ढेर सारे रुपए खर्च करके ये काम हो रहा है केवल हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। और जब बात चली है सुरक्षा की ट्रेन की, तो यहाँ एक बात आपसे साझा करते चलेंगे, मन की बात है। उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर इससे जो है कनेक्ट करेंगे कि देखिए श्रोताओं, हम लोग साफ़ सुथरी ट्रेन में यात्रा करना पसंद करते हैं, हमको ट्रेन में साफ़ सुथरे टॉयलेट्स चाहिए होते हैं, हमको हर चीज़ें, लेकिन यहीं हम देखते हैं कि कुछ लोग सेंसलेस काम भी करते हैं। वो काम ये कि अब मूँगफली खा रहे हैं तो मूँगफली तो खा ली, छिक्कल वहीं फेंक दिया ट्रेन के कोच के अंदर। क्या अब इस लेवल पे हम लोगों को शिक्षित होने की आवश्यकता है क्या कि कौन सी चीज कहां पर फेंकी जाए? कूड़ा कचरा, चिप्स खाया, रैपर वहीं फेंक दिया, जबकि ट्रेनों में जगह दोनों तरफ डस्टबिन लगे होते हैं, समय समय पर सफाई कर्मी भी आते हैं, या फिर हम उन चिप्स के पैकेट को खिड़की से हाथ निकाल के बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल दैट इज विल रॉन्ग। रेलवे इतनी मेहनत कर रही है हमारे लिए, तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी रेलवे के प्रति थोड़ा साफ सफाई बनाए रखें, कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंकें, खुले में ना थूकें। देखिए ना, इतने सुंदर एस्केलेटर बनाई गई कि लोग अच्छे से उस पर चढ़ें और सीढ़ियाँ जो हैं स्वचलित सीढ़ी के माध्यम से ऊपर पहुँच जाएँ। लोग वहाँ उस पर भी पान और गुटखा खा के थूक देते हैं। टॉयलेट्स में जाएंगे तो टॉयलेट्स में जो सीट लगी होती है टॉयलेट की, ये भी क्या बताने की चीज़ है कि वहाँ पर उस यूरिनल को किया जाए या अपने नित्यकर्म वहाँ किए जाए, इधर उधर ना, मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। हम लोग ऐसे भी देश सेवा कर सकते हैं और हम मनाने जा रहे हैं अपनी देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस, तो हम अपनी देश की सेवा इस तरह भी कर सकते हैं कि साहब

कूड़ा कचरा ना फैलाएं, राष्ट्रीय संपत्ति, देश की संपत्ति की रक्षा करें, जो संपत्ति हमें जिस रूप में मिली है उसको उसी रूप में प्रयोग करें। और चलते चलते ट्रैफिक्स की बात करें तो ट्रैफिक बरेली में सामान्य है। कुछ कुछ मार्गों पर सिंगल लेन एंट्री है, वो पूरे महीने ही सावन में है, उसके बारे में हम आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुके हैं। और फिर भी अपने घर से निकलें, यातायात के नियमों का पालन जरूर करें, घर से निकलते ही समय हेलमेट का प्रयोग करें, बाइक या कार चलाते समय फोन का प्रयोग न करें। ट्रैफिक विभाग द्वारा जनहित में जारी।

तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आपको आज के नमस्ते बरेली का सफर पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दीजिएगा और आपको

0: एक बात बताते चले, कार्यक्रम आपका पत्र मिला, लक्की थ्री और मनभावन, इन तीनों ही कार्यक्रम में आप हमें व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं। हमारा यानी आकाशवाणी बरेली का व्हाट्सएप नंबर है 9457395859, 9457395859। एक बार फिर से सुन लीजिए, 9457395859। प्रोग्राम का सफर अब यहीं तक, मुझे यानी ब्रजेश को दीजिए अनुमति। श्रोताओ नमस्कार, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर, और श्रोताओं स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 8:45। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।
1: We bring you a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: तो जब तक एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि मुझे मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे किसी से कनेक्ट करना है, तब तक नेक्स्ट स्टेप आता ही नहीं है। We do not then talk about what rights he has or what where he can go. जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, whether he is healthy or not, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, एंड वी यूजुअली इग्नोर द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट एंड द सोशल। सो WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, आर वी एबल टू कोप अप विद दोस थिंग्स, आर वी प्रोडक्टिव डिस्पाइट हैविंग टू फेस वेरियस चैलेंजेस इन लाइफ। सो इफ वी आर एबल टू डू सो, वी वुड से दैट आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम एबल टू डील विद माई मेंटल हेल्थ एडिक्वेटली। देयर आर वेरियस सिचुएशंस इन लाइफ, वेदर इट इज एट वर्क प्लेस, फैमिली, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. To hamare reactions alag alag hote hain. And at the same time, we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. अगर हमारे पास एक बच्चे के सामने एग्जाम हो ही नहीं तो वो पढ़ेगा ही क्यों? तो एग्जाम एक तरह से उसके लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, पर दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको एक चैलेंज भी मिलता है कि मुझे आगे सीखना है। But at the same time, after a certain amount of stress, we become dysfunctional. जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए एंजाइटी देता है, घबराहट देता है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग देता है। दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू सीक हेल्प। इफ वी आर एबल टू फेस द स्ट्रेस एडिक्वेटली वी आर फाइन, बट इफ वी आर नॉट एबल टू फेस द कोपिंग, वी आर नॉट एबल टू फेस दोज चैलेंजेस, देन वी स्टार्ट हैविंग हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है। सो दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इश्यूज, क्योंकि अक्सर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी फिजिकल का नाम देते हैं। हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, बट एक्चुअली द कॉज मे बी एट द मेंटल लेवल। ये कहना कि कब उदासीपन, डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है। जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सैडनेस डिप्रेशन व्हिच इज वेरी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, एंड इट इज सैडनेस या डिप्रेशन इज कॉमनली यूज्ड वर्ड अमंग द पब्लिक। सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दीज साइंस? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा कोई नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली। सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड, देयर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बारी पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के।

0: बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर अर्लियर. सो एनी चेंज ओवर द टाइम विच इज नॉट देयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम डिसबिहेवियर नीड्स टू बी अटेंडेड टू. एट द सोशल लेवल वी डोंट वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद पीपल, वी डोंट वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड टू पीपल, रिस्पॉन्ड टू फैमिली मेम्बर्स. छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम नर्वस हो जाते हैं. समटाइम्स वी से दैट मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. सो दीज काइंड ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑल्सो आर अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड मे बी एन इंडिकेशन फॉर मेंटल इलनेस. सो मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइन फॉर सम मेंटल इलनेस. हमारे रोज के रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं, वी आर नॉट ईटिंग वेल, आई गेट अप इन बिटवीन एट नाइट, और देयर इज अ चेंज इन माय इंटरैक्टिव. पहले बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन होती थी, अभी मैं मेरा मन नहीं करता है. सो दीज आर ग्रॉस साइंस विच मे बी ड्यू टू एनी रीजन, but they are important to be picked. Some signs are specific to a particular disorder. ये सब common बीमारी है, बहुत ज़्यादा checking होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा हाथ hand washing होती है तो OCD, obsessive compulsive disorder. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो सेवन्थ क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो सेकंड क्लास का परफॉर्मेंस है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तारे ज़मीन पर हम सब ने देखी है, एंड दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉट दिस इज अबाउट. मैनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस पीपल डू रिपोर्ट, मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है. It should be taken seriously. It's a cry for help that I am not feeling well. अक्सर देखा गया है कि individuals who do try to commit suicide, they do say, they verbalize their problems, their helplessness, and they seek help, which we most often in our peer groups we do not recognize. Later on, अरे उसने तो ऐसा कहा था. Sometimes individual report मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को. These may be signs for psychosis. Sometimes we say that बहुत anxiety, बहुत घबराहट हो रही है तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया. It may be a panic attack. So we need to seek help rather than face that मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं नहीं जाता हूँ दिखाने. At times if it is possible तो teachers setting में या parents जो educated हैं, we have small self-administered questionnaire which can actually tell you कि ये इस 10 items में से इतना cut off 2 के ऊपर है, that means you need to consult a mental health professional. PHQ, GAD, 7 items, 9 items, it's hardly anything. Very simple items which can be used in community.
1: You had been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. We slip into a short break.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वी कंटिन्यू विद द टॉक ऑन मेंटल हेल्थ एंड एक्सेस टू जस्टिस केयर एंड ह्यूमन डिग्निटी बाय डॉक्टर रचना भार्गवा प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स दिल्ली।
2: ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स में एडल्ट की प्रॉब्लम्स होती है। इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड वर्ल्ड वाइड दैट मोस्ट ऑफ द मेंटल इलनेस दे हैव देयर ऑनसेट इन द एडोलेसेंट एज। दैट्स व्हाई वी एम्फसाइज कि बच्चों में और एडोलेसेंट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक द साइंस अर्ली सो दैट वी कैन प्रिवेंट एनी सीवियरिटी ऑफ मेंटल इलनेस। हेल्प सीकिंग ट्रीटमेंट गैप इज वेरी वेरी सीवियर इन आवर कॉन्टेक्स्ट। In the recent National Mental Health Survey, 72%

0: seek a professional help, whether it is a health center, it's a district hospital, or it's a private setup. Thank you.
1: You had been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity by Dr. Rachna Bhargava, Professor Clinical Psychology, AIIMS Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 9 बज रहे हैं और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं बचना ए हसीनो, इस फिल्म से लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: आप सुन रहे थे ये गाना बचना ए हसीनो इस फिल्म से। वैसे इस फिल्म के कई गाने, खास तौर से इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बॉलीवुड रेट्रो से बहुत इंस्पायर्ड है, इसीलिए इस फिल्म के कुछ गानों में आपको राहुल देव बर्मन के गानों की झलकी सुनाई देगी। खैर, इस गाने को के म्यूजिक को तैयार किया था विशाल शेखर ने और इस गाने को लिखा है अन्विता दत्त ने।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे

ए.आर. रहमान, कार्तिक और महबूब की आवाजों में आप सुन रहे हैं युवा फिल्म से गाना। लिरिक्स है महबूब के और म्यूजिक ए.आर. रहमान का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं दोस्ताना फिल्म से। विशाल ददलानी और श्रेया घोषाल की आवाजों में अनविता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 FM पर। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 9:30 हो रहे हैं और श्रोताओं, अब समय हो गया प्रायोजित कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।
1: लीजिए, प्रस्तुत है SR एजुकेशनल ट्रस्ट भुता बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।
2: SR हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली से करवाएं समस्त स्त्री रोगों का इलाज। प्रमुख स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या गंगवार।
3: SR हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन के साथ बच्चेदानी और बांझपन के इलाज की पूरी व्यवस्था।
4: डॉक्टर रतन गंगवार से कराएं जहर खाए, दिमागी बुखार, एक्सीडेंटल, सांस रोग जैसे मरीज अपना सफल इलाज या ऑपरेशन।
3: ICU और वेंटिलेटर की सुविधा के साथ SR हॉस्पिटल बीसलपुर रोड बरेली।
1: SR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मैकपुर भुता फरीदपुर रोड भुता बरेली में बी फार्मा करें गवर्नमेंट की फीस पर। श्रोताओं, सबसे पहले आइए हंसने की बातें करते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। बेटे और बाप की बातें सुनते हैं, क्या बातें हो रही हैं? जरा सुनिए तो सही।
5: पापा, जैसे आप मुझे मारते हो, क्या दादाजी भी आपको मारते थे?
1: हाँ बेटा।
5: तो ये खानदानी पागलपन कब तक चलेगा?
1: आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र मिश्रा का सप्रेम नमस्कार।
6: आज बृहस्पतिवार है और आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं डॉक्टर रतन गंगवार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद रविंद्र जी।
6: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में विषय है जहर खाए एवं सांप काटे मरीजों का इलाज।
7: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
6: डॉक्टर साहब, आज आपसे जहर खाए और सांप के काटे मरीजों के बारे में बातचीत करेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
7: पहले तो मुख्यतया हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पदार्थ जहरीले होते हैं।
6: जी जी।
7: हमारे पास जो भी मरीज आते हैं उनमें हम देखते हैं, कुछ मरीज गेहूं में दवाई वो लेकर के आते हैं, कुछ गन्ने के खेत में जब बोते हैं गन्ना उस समय छिड़कते हैं क्लोरपाइरीफॉस, मुख्यतया कोरोसिव पॉइजन लेकर के आते हैं। कोरोसिव पॉइजन वो होते हैं जिनमें मिट्टी का तेल है, फिनॉल है, जो कि आहार नली को जला देते हैं, कोरोसिव पॉइजन कहलाते हैं। दूसरे ऑर्गेनोफॉस्फोरस ग्रुप के पॉइजन लेके आते हैं जिनमें क्लोरपाइरीफॉस आता है मुख्यतः, जो कि धान की बुआई के समय पे, गन्ने की बुआई के समय पे इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग एल्कोहल जब ज्यादा मात्रा में लेकर के आते हैं वो भी पॉइजनिंग की श्रेणी में आता है।
6: डॉक्टर साहब, क्या एल्कोहल भी जहर बन जाता है?
7: जब अधिक मात्रा में कोई भी चीज लेंगे वो जहर का ही काम करेगी।
6: डॉक्टर साहब, किसी को नींद नहीं आती तो वो नीम की गोली खा लेते हैं और वो सो लेते हैं, क्या ज्यादा गोली खाने से जहर बन सकती हैं गोलियां?
7: जी, ये वेंजोडाइजिपिन और ग्रुप की दवाइयां होती हैं।
6: जी,
7: अधिक मात्रा में लेने पे जहर का ही काम करती हैं। उसी तरह से लक्षण आते हैं, मरीज की जान तक जाने की संभावना रहती है।
6: डॉक्टर साहब, कैसे पता करेंगे कि किसी व्यक्ति ने जहर खाया है या नहीं?
7: अलग अलग ग्रुप के विषाक्त पदार्थ अलग अलग तरह में अलग अलग तरह के लक्षण मिलते हैं। अगर कोई धान में छिड़कने वाली दवाई पी करके आता है तो मुंह से ज्यादा झाग आने लगेंगे, सांस तेज चलने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर नम हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर पानी छोड़ने लगता है, इस तरह के लक्षण। कभी कभी धान में दवाई छिड़कते समय मुंडी घास को मारने के लिए धान में या गेहूं में दवाइयां छिड़कते हैं, वो उस समय भी लोगों को कपड़ों पे लग करके स्किन खाल से त्वचा से अंदर एब्जॉर्ब हो करके जहर पैदा कर देती है।
6: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अपने खेत में दवाइयां छिड़कें तो क्या क्या सावधानी बरतें ताकि इन दवाइयों का असर ना हो?
7: जी, जो भी कंटेनर में दवाई को भरा जाता है वो कंटेनर लीकेज ना हो, उसमें लीकेज होगा कपड़ों पे दवाई गिरेगी त्वचा के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के। दूसरा, मुंह पर कोई कपड़ा बांध के दवाई छिड़कनी चाहिए, हाथों में अगर हो सके तो दस्ताने पहन के दवाई छिड़कनी चाहिए, आंखों पे चश्मा अगर लगा लें तो बहुत अच्छा रहे, कभी कभी आंखों पे छींटे पड़ने की वजह से भी आंखों से दवाई एब्जॉर्ब हो जाती है, आंखों में नुकसान पहुंचा देती
6: है। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ भाई होते हैं वो मशवरा देते हैं कि उल्टी करा दो, क्या ये उचित है? आप क्या कहेंगे इस बारे में?

किसी भी पॉइजनिंग में उल्टी कराना उचित नहीं है। जितना जल्दी से जल्दी आप अस्पताल जाएं और वहां पर नली डाल के, जिसको हम राइल्स ट्यूब कहते हैं, अपने अलग अलग पदार्थ, अलग अलग मेडिसिन के द्वारा धुलाई अलग अलग जहर के लिए होती है वो की जाए, तभी मरीज को फायदा होगा। कुछ जहरों में, जैसे कि अगर कोई मिट्टी का तेल पीता है, आप उल्टी करा देंगे तो मिट्टी का तेल फेफड़ों में चला जाएगा, मिट्टी के तेल से निमोनिया होती है, आपने

0: मिट्टी के तेल से निमोनिया होती है, आपने उल्टी कराई तो मरीज को निमोनिया हो जाएगी और मरीज जो नहीं ठीक होने वाला होता है वो भी ठीक नहीं होता है।
1: डॉक्टर साहब, देखिए हमारे श्रोता अधिकतर इस समय गांव में हमें सुन रहे हैं, क्या गेहूं में भी ऐसी कोई दवाई होती है जो रखी जाती है या जिससे नुकसान हो सकता है?
0: तो सेल्फॉस के एम्प्यूल भी आते हैं और सेल्फॉस की गोलियां भी आती हैं,
1: अच्छा,
0: ये
1: लिक्विड और टेबलेट। अच्छा
0: जी
1: अच्छा
0: लिक्विड और टेबलेट आते हैं।
1: जी
0: हमारे किसान भाई इन्हें गेहूं जब स्टोरेज करते हैं
1: जी
0: उसमें डाल रखते हैं। ये दोनों ही अत्यंत जहरीले पदार्थ होते हैं, इनके लेने पे मरीज का नब्ज कम होने लगती है, नाड़ी गिरने लगती है, सांस तेज चलने लगती है, शरीर नीला पड़ने लगता है। इसके लक्षण ये हैं। जैसे ही लें आपको या तो पता लगे कि मरीज ने लिया है या आप देखें कि इस तरह के कोई लक्षण आ रहे हैं मरीज के अंदर, तुरंत ही उपचार के लिए अस्पताल ले जाएं। सेल्फॉस के विषय में मैंने बताया, गोले का तेल अगर आपके पास है गोले का तेल, नहीं है तो कोई भी तेल या घी, देसी घी आप मरीज को 100 ग्राम पिला दें और जल्दी से जल्दी उसको उचित अस्पताल में जहां पे जहर के मरीजों का इलाज करने की सुविधाएं उपलब्ध हों और जहर के मरीज के इलाज में वेंटिलेटर है, डायलिसिस मशीन है, इन सभी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब, अब कुछ बातें हो जाएं सांप के जहर के बारे में। जो सांप का जहर इतना खतरनाक होता है, इतना भयानक होता है, लोग नाम सुनते ही कांप जाते हैं, डर लगता है कि सांप है, सांप का जहर। तो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
0: सांपों को हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं, जहरीले एवं बिना जहरीले। जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश में 1500 प्रजातियां सांपों की पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 300 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। उनमें से भी जो मुख्यतया पाए जाने वाले 10 या 15 तरह के सांप होते हैं। अब इसमें हम कहें कि जहरीले में अंतर कैसे पता करेंगे कौन से जहरीले हैं? अगर सांप को पलटेंगे जिसमें देखेंगे उसके नीचे स्केल्स होते हैं, वो जिसके बड़े हैं वो जहरीला होगा, जिसके छोटे हैं वो जहरीला नहीं होगा। ये मुख्य अंतर एक है। दूसरे जहरीले में जो फंग होता है, एक दांत होता है, दांत लंबा होगा और दांत में कैनाल्स भी होगी।
1: सांप अगर काट लेता है तो कैसे पता चलेगा बहुत जहरीला था या?
0: हाँ, इसके विषय में बताना चाहूंगा, सांप तीन तरह के होते हैं। एक न्यूरोटॉक्सिक जो नसों पे प्रभावित करते हैं, जिसमें आपका कोबरा आता है, काला नांग आता है, करेत होते हैं। दूसरे खून को प्रभावित करते हैं, खून गाढ़ा कर देते हैं, जगह जगह से खून बहने लगता है, जो वाइपर ग्रुप के होते हैं, आप अगर गांव में गदहना जिनको आप लोग बोलते हैं। और तीसरे सी स्नेक होते हैं जो मायोटॉक्सिक होते हैं, जिन मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं। हमारे इधर उत्तर भारत में चूंकि समुद्र नहीं है इसलिए सी स्नेक नहीं पाए जाते हैं, केवल न्यूरोटॉक्सिक नांग, हीमोटॉक्सिक जो कि वाइपर पाए जाते हैं।
1: पैर में अगर सांप ने काट लिया तो लोग बंद बना देते हैं, मतलब बांध देते हैं, ये कब करना चाहिए और कितनी दूरी पर बांधना चाहिए?
0: कहीं पे भी सांप काटता है शरीर के किसी भी अंग पे, सबसे जरूरी है अश्योरेंस, मरीज को ढाढ़स बंधाएं और उसको कहें कि जिस सांप ने आपको काटा है कोई जरूरी नहीं वो जहरीला ही है। ज्यादातर मरीजों को देखा गया है कि सांप के जहर से नहीं उसके डर से हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु होती है। दूसरा, जिस अंग पे काटा है उस अंग को हिलने ना दें, हिलने की वजह से जहर ऊपर, चूंकि वहां का खून का दौड़ान बढ़ेगा और खून के रास्ते जहर ऊपर की तरफ तेजी से जाएगा। तीसरा, आप अगर पहले तो बांध लगाए ना, अगर आप लगाना चाहते हैं बांध, जिस जगह पे काटा है, मान लीजिए पैर पे काटा है, पैर को ज्यादा हिलाए नहीं, खून का दौड़ान नहीं बढ़ेगा तो जहर ऊपर नहीं बढ़ेगा। दूसरा, बांध या तो लगाए नहीं और बांध लगाना चाहते हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक तीन बांध कम से कम नीचे, अब आधे घंटे से ज्यादा बांध नहीं लगाए, नहीं तो नीचे का पैर काला पड़ने लगता है। तो दो बांध आप जो लगाते हैं, पहले वाला बांध जो ऊपर की तरफ का बांध है वो आप खोल दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा उसको टाइट करिए, फिर नीचे वाला खोल दीजिए, तो खून का दौड़ान एक बार चला जाएगा जिससे कि पैर का हिस्सा काला नहीं पड़ेगा। आईसीयू में इस तरह की मशीनें हैं, इस तरह के उपचार होते हैं कि सांप का काटे हुए मरीज की मृत्यु नहीं होती है, सभी लगभग ठीक हो जाते हैं।
1: अक्सर सांप काटने के क्या लक्षण होते हैं? और
0: ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सांप काटने के लक्षण पता होना बहुत आवश्यक है। तीन तरह के सांप होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक नस पे असर करने वाले, वास्कुलोटॉक्सिक खून पे असर करने वाले, और मायोटॉक्सिक मांसपेशियों पे असर करने वाले। जो न्यूरोटॉक्सिक सांप काटते हैं उन मरीजों के पलकें ढलक जाती हैं, नीचे की तरफ हो जाती हैं, ऐसे व्यक्तियों को ढाढ़स बंधाया जाता है। मरीज हाथ पैर चलाने में असमर्थ हो जाता है, खाना निगलने में उसको दिक्कत होती है, मरीज बोलता है मुझे पानी नहीं निगला जा रहा है, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है, मरीज को सुस्ती आने लगती है। ये न्यूरोटॉक्सिक के सांप के काटने में, जिसमें कि काला नांग आता है और करेत आता है, करेत गांव में कुलिया कड़ार उसको बोलते हैं, और भी उस ग्रुप के

0: एक होते हैं, लेकिन इस तरह से लोग कुछ सांप के काटने जैसे कि किंग कोबरा होता है, उसके काटने पे मरीज की मृत्यु 5 मिनट के अंदर होने की संभावना होती है, अन्यथा अन्य सभी सांपों के काटने के बाद कुछ समय मिल जाता है। हमारे क्षेत्र में पाए जाने वाले पानी वाले सांप जहरीले नहीं होते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले सांप सी स्नेक जिसे कहते हैं वो जहरीला होता है, उसका असर मांसपेशियों पर होता है। तो यहाँ उत्तर भारत में चूंकि समुद्र नहीं है तो जहरीले सांप उस तरह के पानी वाले नहीं है।
1: हाँ डॉक्टर साहब, सांप के काटने पर अधिकतर झाड़ फूक में चक्कर पड़ जाते हैं।
0: देखा गया है कि लोग सांप के काटने पे डॉक्टर के पास ना आकर के सपेरे या बैगी के लोगों के पास चले जाते हैं, वो लोगों का ज्यादा समय नष्ट कर देते हैं। लोगों को अस्पताल आना चाहिए। झाड़ फूक करने से कोई फायदा नहीं होता है और आपका समय नष्ट हो जाता है। इलाज के लिए जो समय मिलना चाहिए नहीं मिलता है, और जितना जल्दी से हो, जल्दी से जल्दी हो सके, उचित अस्पताल में जाना चाहिए।
1: चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: श्रोताओं को यही बताना चाहेंगे, ये जीवन अनमोल है, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, माँ बाप से झगड़े से या भाई बहन के झगड़े से। तो जो भी ईश्वर ने हमें जीवन दिया है इसको हम पूरा और स्वस्थ जीने की कोशिश करें।
2: डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि जीवन को हंस के गुजारना चाहिए, कितनी भी परेशानियां आए और मुस्कुरा करके हंस करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म थानेदार का यह गीत।

0: SR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से करें, डी फार्मा और बी फार्मा SR पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से करें,
1: BSc नर्सिंग
0: GNM।
2: शिवानी और रुचि क्या कहती हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में?
3: सर मेरा नाम शिवानी देवी है, पापा मेरे फार्मर हैं, विलेज डिमरी पोस्ट बहुआ बाजार। सर मैं GNM सेकेंड ईयर में हूँ, पढ़ाई भी अच्छी होती है और फैसिलिटीज भी मिल रही है। GNM खानागर के पोस्ट बेसिक का क्लासेस भी प्रॉपर होती है।
4: मेरा नाम सर रुचि गंगवार है, मैं विलेज गोपालपुर में रहती हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम SR पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। मैं सर GNM कर रही हूँ। सर मेरा ये सपना था GNM करने का, जिससे मैं नर्सिंग में आ सकूँ। मेरे पापा फार्मर हैं, एक 3 ईयर का कोर्स होता है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी फैसिलिटीज है, क्लासेस भी होती है प्रॉपर। सर मेहनत लगा के हमें पढ़ना चाहिए और मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए।
0: और अब आज का कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य समाप्त होता है। दीजिए रविंद्र मिश्रा को अनुमति, फिर मिलेंगे। श्रोताओं नमस्कार।
1: SR
0: इंस्टीट्यूशन मैकपुर भुता बरेली से करें,
1: ITI में इलेक्ट्रीशियन,
0: कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट,
1: रेडियोलॉजी टेक्नीशियन
0: और हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर SR इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से करें, डी फार्मा और बी फार्मा SR पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से करें,
1: BSc नर्सिंग
0: GNM
1: डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी।
0: SR इंस्टीट्यूशंस मैकपुर भुता बरेली के चेयरमैन हैं डॉक्टर रतन गंगवार
1: और वाइस चेयरमैन डॉक्टर संध्या गंगवार।
0: संपर्क करें 9720456885।
5: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:45 होने को हैं। आइए श्रोताओं आपको एक बार पुनः जोड़ दें विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
6: जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली।

पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में वैजयंतीमाला के नायक थे दिलीप कुमार। मधुमती अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय के अलावा अपने सुमधुर संगीत के लिए भी सराही गई।

लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।

0: मा हुड़दंग मचा रहे गुंडे के लिंके।
1: अरे देख रही धन्नो, हम अपने मुन्ना के लिए फॉर्म टेम लावा है। फॉर्म टेम?
0: हाँ टेम लावा है। चलत ना ही सारी से की निकाल दे हो एक मिनट माँ।
1: अरे बाहरी महारानी बा, फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का?
0: फोकट का नहीं, इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
1: अरे इकन्नी देखी है कौनो दिन?
0: हाय हाय, तेली का तेल जले, मसालची की छाती फटे। तोरी छाती का है पटेरे, एक हराती का इको समझाए दियो,
1: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
0: ई हाथन में कांच की चूड़िया नहीं, लोहे के कड़े है, कड़े दिखा।
1: तो ई हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है, देखा?
0: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे।

0: सन 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब वैजयंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

फिल्म संगम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए वैजयंतीमाला ने तीसरी बार पाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार।

फिल्म संगम के बाद वैजयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

अपने करियर के ढलान में भी वैजयंतीमाला ने कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। ये थी सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष।

0: सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।
1: ठंडी

वैजयंती माला जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचेंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंती माला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंती माला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है वो अटूट है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 10 बज रहे हैं और आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

वंदे मातरम। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद में। और श्रोताओं, हम मनाने जा रहे हैं अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस, और चारों ओर पूरे देश में इस समय तिरंगे की, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज की धूम है। जगह जगह भारत तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और लोग अपने राष्ट्र भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं तिरंगा यात्राओं के माध्यम से। और श्रोताओं, ऐसे में लोगों के इस उत्साह को देखते ही बनता है, आप लोगों के इस राष्ट्रभाव के नाम समर्पित आज का हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में हम बात करेंगे तिरंगे की, बात करेंगे आपके पसंद की गीतों की, और बात करेंगे आज के कार्यक्रम की थीम की, जो कि है तिरंगा, और देशभक्ति गीतों से सराबोर होने वाला है हमारा आज का कार्यक्रम। तो आप अपनी पसंद की फरमाइश करते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि फरमाइश कीजिए वो गीत जिनके बोल में हो देश भावना की भाव, जिनके बोल में हो तिरंगा को देश का राष्ट्रध्वज प्रदर्शित होने का भाव, और हमारे राष्ट्रभक्ति के समर्पण का भाव। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इस देशभक्ति विशेषांक कार्यक्रम आपकी पसंद में। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपके नामों को पढ़ने का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आपसे करबद्ध ये निवेदन है कि कृपया अपने कमेंट्स को एक ही बार पोस्ट कीजिए। एक से ज़्यादा बार किए गए कमेंट संज्ञान में आने पर उनका कमेंट एक बार भी अगर हम शामिल ना करें तो ये अतिशयोक्ति न होगी।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद का ये कमेंट हमें मिला है। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। आप हैं कस्बा मीरगंज से आदर्श दिवाकर लव, उमेंद्रपुरी गोस्वामी कल्लू भाई और आपके सभी साथी। शनि बाजार उगहती बदायूं से कमेंट करते हैं प्रभाकर गुप्ता, देश सचिन देव, प्रियल कायरव और गौरी गुप्ता। इस गीत को सुनना चाहा है हमारे नियमित श्रोता हैं दयानंद कॉलेज भवानीपेट शोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रीता वानी और आरव मिस्किन, कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से रतन माला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्र प्रकाश और मन्नू का मैसेज भी फ्लैश हुआ है। पाकुड़ झारखंड से मैसेज करने वाले हैं उत्तम भगत, श्वेता किशु, तासु अर्णव और सत्यमानंद। बोड़ागाजी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का मैसेज भी मिल चुका है हमें। जिला दतिया मध्य प्रदेश से तहसील भांडेर ग्राम गोपी खिरिया से आप हैं राहुल पाल, ज्योति अंजना, हरिमोहन और लक्ष्य। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से मैसेज किया है हमें रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत और स्वीटी छावड़ा ने। जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परमनी महाराष्ट्र से रूपेश, संघई, प्रज्ञेश, महेश, प्रीतेश और आपके परिवार के सभी साथी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से मैसेज किया है हमें तिलक राज अरोड़ा, चंदन अंकुश और प्रकाश अरोड़ा ने। और आप हैं कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रिंकी, कपिल वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से ही ये मैसेज भेजने वाले हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य। मुरादाबाद दूलापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। किशनगंज बिहार से मैसेज किया है हमें रविंद्र मोहनदास और आशा देवी ने और इसी गीत को सुनना चाहा है रघुनाथपुर गंगापुर गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी। आप का मैसेज भी मिला हमें पलारी छत्तीसगढ़ से और आप हैं नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा परागन, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। आप सबने सुनना चाहा है आप सबकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, ट्यून किया है आपने 100.4 FM और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। प्रोग्राम के अगले गीत के लिए हमें मैसेज करने वाले हैं ग्राम लसुड़िया नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से आप हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। इस गीत को सुनना चाहा है पंचकुला सेक्टर 9 से आसुचुग अश्वनी, गोविंद, टोनी, लव, भाविक, राधे और सेक्टर 11 से अतुल शर्मा और आपके सभी साथी। ये फरमाइश हमें भेजी है डापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद और कुमार गौरव मंदूरकर ने। मनकारा मंडी बी रिकॉर्डिंग करगना बरेली से आप हैं मेनी सिंह, सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, शखनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव सिंह। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकिशन शर्मा, प्रवीण, राहुल, मनीष और आपके सभी साथी आप हैं। पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। इस गीत को सुनना चाहा है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगी सपुरी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा सविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। आप हैं सोनू, मोनू, गोलू, विक्की और आपके सभी साथी। दबरा तहसील लराड़ भिंड मध्य प्रदेश से अशरफ खान छावनी होली चौक से आप मैसेज करने वाले हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना मनोरमा, अजय, खेमकरण और लक्ष्मी देवी। अकोला महाराष्ट्र अकोट जिला से मैसेज किया है हमें राम राव नितोने, शारदा सानिका, रिया और आपके सभी साथी। इस गीत को सुनना

रहा है राम अचोरा तहसील मिलक रामपुर से सकावत हुसैन मंसूरी तालिब हुसैन फैज अर्श मंसूरी तौफीक नवीर सुनील राहुल रस्तोगी और आपके सभी साथी। ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता बबीता सत्यम और सुंदरम का भी मैसेज फ्लैश हो गया है। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता मौसम और शिवम गुप्ता का मैसेज मिल चुका है हमें। धनौरी तेली वाला से मैसेज करने वाले हैं निसार सलमानी नौशाद आलिया और आयान बाबू। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म बॉर्डर का गीत सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और श्रोताओं आज का हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद ओत प्रोत है देशभक्ति की भावना से, और आप भी अपने गीतों के गीतों की फरमाइश करते हुए जरूर से इस बात का रखिएगा ध्यान कि आप भी कार्यक्रम में सुनिए देशभक्ति और तिरंगे से जुड़े गीतों को, बात कीजिए उनसे जुड़ी। प्रोग्राम में हमें आपके ढेर सारे कमेंट्स लगातार मिल रहे हैं और हमारी भी ये पूरी कोशिश है कि आपके सभी कमेंट्स को हम शामिल करें। बस ये निवेदन हमेशा से हम करते हैं और करते रहेंगे कि आप लोग जो है वो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि एक बार ही कमेंट करें और एक ही बार अपने नाम को शामिल कराएं। अलग अलग मैसेजेस में अलग अलग नामों से मैसेज कराने से जो उन सारे श्रोताओं के नाम शामिल नहीं हो पाते जो पहली बार या दूर दूर से मैसेज कर रहे हैं। वैसे हमारी कोशिश है रहती है कि हम सभी के नामों को शामिल करें। अगला फरमाइश के लिए ये हमें मैसेज भेजा है नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण राहुल और मनीष शर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा है पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। आप हैं मंजूरी रेडियो लिसनर, आपका मैसेज ऑलरेडी हम शामिल कर चुके हैं।

दुर्गा कॉलोनी हांसी से ये मैसेज हमें भेजते हैं राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, डब्बू बाबू और आपके सभी साथी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूल, पीवी कुलथे और आपके सभी साथी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी और भानु प्रकाश का मैसेज भी मिला हमें, और अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य और आपके सभी साथी हैं। लकांठ रोड लदावली से शेरवानी, स्कूलगंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज कैफ, अनवर लुबना और आलिया अंसारी का मैसेज भी आ गया है हमारे पास। और वडिंगखेड़ा पंजाब से पिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और आपके सभी साथी। ऊंचे गांव दांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल और आपके सभी साथी का मैसेज भी हमें मिला। करनाल से मैसेज करने वाले हैं विनोद लखनपाल और आपके सभी साथी। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी मनीष और आपके सभी साथी। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील, अरफा, इल्मा, एम असलम, सैफी और आपके सभी साथियों का मैसेज भी फ्लैश हो गया है।

पूर्व महाराष्ट्र से कमल सुहाने, हरी अफजल मलिक, संदीप रामगढ़ कैंट से निपी सानी और आपके सभी साथी, ज्योति नगर होकर राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश गोरधना धरा, फरसा राम सोलंकी, श्याम लाल घनश्याम गौरी और हसन सिंह का मैसेज भी मिला हमें। फरीदपुर तहसील पंचायत बाकरगंज से ये मैसेज करने वाले हैं सुनील बाबू, शिवम, अभय मीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या गौतम और आपके सभी साथी। सनावत से मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना का मैसेज भी आ गया हमारे पास। और लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी और साहिर बघेल का भी मैसेज पढ़ चुके हैं हम। नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से मैसेज करने वाले हैं पीएस नुआनकर। निर्मला विशाल मलकापुर से नारायण इंग्ले, सोपान आशीष और मोहरकर और आपके सभी साथी। सैयद यूनुस, सैयद ओमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले और ये मैसेज किया है आपने हमें आष्टी जालना मराठवाड़ा से। और धोतराज आष्टी से मैसेज करने वाले हैं दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते और आपके सभी साथी। गंजुनवारा से यासीन हाशमी, नाजमा, तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी का मैसेज भी मिला हमारे नियमित श्रोता है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन और अपार ढींगिया। और आप हैं नंत्रेगी भाटपारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र और नोकेलाल वर्मा। अजीत भावसार प्रमिला और भावेश भावसार, सन्नी भावसार का मैसेज भी आ चुका है हमारे पास। सीमंदर पार्क वीरगाम से और फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का मैसेज भी हम तक पहुंच गया है। कंवर कॉलोनी बड़वाह खरगोन मध्य प्रदेश से आप हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और आपके सभी साथी। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल और विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा का मैसेज भी फ्लैश हो चुका है। और ये मैसेज हमें भेजा है हेटा रोड गंजुनवारा से फैसल से, नुसरत कैसर, अरमान अरीब और आपके ये सभी साथी। लाहौर डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीष देवी, अंजलि, अर्जुन, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी, रामानंद कश्यप। करावल नगर नई दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी का मैसेज भी आया हम तक।

आप सुन रहे हैं आपकी पसंद सेक्टर 18 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा से आप हैं विनय मोहन खारवन मीनाक्षी प्लोमा और ईशानी। इस गीत की फरमाइश की है हमें नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मीन्द्र गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। सेक्टर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौर को सुयश आशीष तन्मय अपूर्वा और आपके सभी साथियों का मैसेज भी मिल चुका है हमें। उदयपुर राजस्थान से मैसेज करने वाले हैं बाबू भाई भारती रमेश विनीत मिथिल नाचानी प्रगति और तिलक तंबोली। जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा का मैसेज भी आ गया है और ये मैसेज हमें किया है सौंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन सावित्री मोहित देविका गजेंद्र और हियांश कुमार चंदन। अगले गीत की ही फरमाइश की है टोरवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता प्रियंका प्रशांत प्रियम वामिका और वाणी थांदी। भोजपुर सहारनपुर से आप हैं इंतजार जावेद राहत जाकिर वकील अहमद और आपके सभी साथी। ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी अर्चना हरबिंदर बानी लोकेश पायल वैदेही हंसिका अकिता जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू और आपके सभी साथी। प्रदीप सलूजा संगीता सलूजा और प्रथम सलूजा का मैसेज भी फ्लैश हो गया है जनकपुरी नई दिल्ली से और आप हैं अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना आसिफ आफिया जावेद सुराज जासमीन शकीला शमा रजिया सुल्ताना और आपके परिवार के सभी सदस्य। अहमद अंसारी अनवर अंसारी जी मैसेज को एक के नीचे एक नाम लिखिए, इस तरीके से पढ़ने में थोड़ी असुविधा होती है। गंजुंडवारा से कलीम अंसारी जहीरा बेगम आयान उस्मान आशीन और शमशुल कमर राही का मैसेज भी आ गया। गनगोला दातागंज से मैसेज करने वाले हैं इशरत खान शायरा बेगम रऊफ साबरीन शहबाज सैफ ईशान आजम और अरहान खान। गौतम ऋषि मौर्य मनोहर लाल मिही प्रीति रीना और सुनीता मौर्य का मैसेज आया है कर्मचारी नगर रोड मौर्य इलेक्ट्रॉनिक्स से और आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहाँ आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। इसी गीत को सुनना चाहा है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी मधु आशीष शिवन्या अशु गोस्वामी अनु गोस्वामी पंचायत उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। संबलपुर कांकेर से भागू राम यादव ज्योति ओजस्वी और आपके सभी साथी। आप हैं 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक अनिल जयवीर अमनदीप कालका से शुभचंद बजाज साहिल और बिटा बजाज। शंकरपुर पोस्ट सुसावन जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव पुष्पेंद्र आनंद सनोज अमन सोनी अंकित अभिनीता नितानी सुनीता और सूरज सिंह यादव। इस गीत की फरमाइश की है हमें पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से शहीद आई सूफिया अनस आयजा सरोज चौक से कमरुल्ला और नसीम बेगम आयशा खान और हदिया खान। भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी कामरान अरमान नवेद अजरा तवसुम का मैसेज मिला। रायपुर अनेरी बनारस से अब्दुल मजीद अंसारी नौरी नाफिया और आपके सभी साथी का मैसेज भी फ्लैश हो गया है। नई दिल्ली से दीपांशु खोरवाल जय राम खोरवाल अमन सचिन और आपके सभी साथी हमें मैसेज कर चुके हैं और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी फरमाई आपकी पसंद, और आपके ढेर सारे कमेंट्स लगातार हमें मिल रहे हैं और हम भी उन्हें लगातार शामिल कर रहे हैं। हाँ, जितने संभव होते हैं हम कोशिश करते हैं कि सारे ही कमेंट्स को शामिल कर लें, लेकिन समय की हमारे साथ भी बाध्यता होती है। और साथ ही श्रोताओं, हम लोग बार बार लगातार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग एक बार ही अपने कॉमेंट हमारे को प्रेषित किया कीजिए, लेकिन इतना कहने के बाद भी बहुत सारे कॉमेंट एक नहीं कई बार आते हैं, तो उन लोगों के कमेंट्स रह जाते हैं जो पहली बार कर रहे हैं या एक बार कर रहे हैं। खैर, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं फिर से इन ढेर सारे आए कमेंट्स को पढ़ने का सिलसिला। कोटहा पंचकुला हरियाणा से सरोजुद्दीन अंसारी, नसीमन अकरम, शानिया इलियास, मुशाहिद अक्सा, आयशा उमर और समीना अंसारी का मैसेज हमें मिल चुका है। और आप हैं नारायणपुर कोटवा बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय, इसी गीत को सुनना चाहा है। बीजना जिला मुरादाबाद से राजवीर सिंह, कुणाल हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनुस, सोफिया और आपके सभी साथी। हररपुर मटकली से शारुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील, मोइन, तस्लीम और आपके सभी साथी। ये मैसेज हम तक पहुंचा है सिरसा हरियाणा ग्राम खड़िया ठाणी से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजारनिया और आपके सभी साथी। गोबरदल कौंडली सारदरा से तुलसी मिशकिन, वीना, आशीष, चेतन, राजा, मेघा मिशकिन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना का मैसेज भी आ गया हमारे पास। करेली से आप हैं इंतजार अंसारी, हिब्जा, नूरी, हिना, नथु जी, चनन्ने, सूरज, जाहिद, मुर्गिया और आपके सभी साथी। ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूषी का कोयल डुगू, भाविक और आपके सभी साथी। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार और आपके सभी साथी। आप हैं क्योलड़िया से नवाबगंज से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुजनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फत, बबलू, वेदपाल और संजीव गंगवार। इस गीत की फरमाइश की है हमें सतीश अनेजा, विमला अनेजा ने चंडीगढ़ से। ये पद मैसेज हम तक आ पहुंचा है खरकौन सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र मूसा, राजकुमार बोडाना, सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप और आपके सभी साथी। आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से मैसेज करने वाले हैं जगदीश धाकर नायमा, रंजू भाई धाकर, युवराज और शिवांगी। और आप हैं नौलागढ़ बस्ती बरेली से तनुम अंसारी, तराना, अजरुद्दीन हसन अंसारी और आपके सभी साथी। नई दिल्ली से कमलेश मुकुल, सचिन, दीपांशु और आपके साथियों का मैसेज भी फ्लैश हो गया है। पुराना ताला बुरा डुमराव से वलीउल अंसारी, आजमा नाज, शबनम बानो बक्सर से राज अंसारी, फातिमा नाज और चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा का मैसेज भी फ्लैश हो गया है। आप हैं फूले नगर बीर महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा और आकांक्षा करवा, आकाश करवा। ये मैसेज हम तक आ गया है शास्त्री नगर बीर शहर से किशन सबकाल, आशा सोनिया और विशाल सबकाल का। ये अगला मैसेज जो हम पढ़ रहे हैं भेजने वाले हैं तहसील पूना महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता श्रेया और बंटी थोरात। सहारनपुर से इसी गीत को सुनना चाहें जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पल और विलिस डिकेस्ट्रो ने। और ये मैसेज हम तक आ पहुंचा गंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत गुरमन सिंह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, आदर्श पाल जोसन वैंकूवर कनाडा से, रॉबिन सिंह जोशन का मैसेज भी फ्लैश हो गया है। महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवणे, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार का मैसेज आ गया हम तक। मंजूरू कटीला दिल्ली से कमल वालूजा, सुमधु, सागर, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक का मैसेज है। लखनऊ मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडी जी, रिक्षिम, रिमझिम और सक्षम चौबे का मैसेज फ्लैश हो चुका है। और आप हैं बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष और डुगू। ओम गायकवाड़, आम्रपाली, अविष्कार, अनामिका, प्रणीता का मैसेज मिला हदगांव महाराष्ट्र से। और आप हैं लाल कुर्ती रोड की से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिक, दीपाली, युवान और आपके सभी साथी। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती, बेताब रेडियो लिसनर क्लब बिहार से वसीम अकरम, जोई और गुड़िया खातून। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजिए चौकड़ा धाम कॉलोनी खरगोन से कृष्णपाल चौहान, तारा देवी, नवीउद्दीन वैभव, नवउदित सिंह चौहान।

विभवपाल ध्रुवी और प्रद्युम्न सिंह चौहान, और बलकरण वर्मा, अंजनी, प्रहलाद, निधि, निखिल और आपके सभी साथी हैं पठेना पाठन दुर्ग छत्तीसगढ़ से।

श्रोताओं, आप सब सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और कार्यक्रम के अंत में अब हम बस एकदम अंतिम पायदान पर ही हैं, और हम पढ़ रहे हैं ये मैसेज जो हमें भेजा है लोरमी छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे, रजनी तुषार और समीर खांडे ने। और अगला मैसेज जो हमें मिला है वो भेजा है सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल, लवली, खरजत, लव, कुश और आपके परिवार के सभी सदस्य।

से करेली से ही हैं आप लाल मोहम्मद अंसारी, लालू अंसारी, मुनाजिर अबरार, अल्ताफ मुन्ना, आशिक और आपके सभी साथी। और ये मैसेज लछनपुर छत्तीसगढ़ से भेजा है ईश्वरनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू ने। ये अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है। मिस्किन जी आप कितनी बार भेजेंगे एक ही बार मैसेज, आपका नाम शामिल हो तो गया है। विनेश कुमार श्रीवास्तव रागिनी और मुस्कान का मैसेज मिला है चनेटी बरेली कैंट से, और हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम, इरफान और इमरान, आप सभी का मैसेज भी आया हमारे पास। ये मैसेज हमें भेजा जबलपुर मध्य प्रदेश से माधव नामदेव, सीमा और आपके सभी साथी। सेव वाटर सेव लाइफ के एक सुंदर मैसेज के साथ ये मैसेज हमें भेजा है गंजडुडवारा उत्तर प्रदेश से खिलू परवेज, इमराना नवाज, शेख दानिश और अमन अफरीदी ने। और आप हैं बलूचिस्तान से बरकत जमाली बलोच जाफराबाद से, और आपका सलाम आदाब अर्ज है आपको भी। और इस मैसेज के साथ ये फरमाइश करता है भिलाई पदुम नगर चरोदा छत्तीसगढ़ से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जीशान शाहनवाज और आपके परिवार के सभी सदस्य। बाबूदीन का मैसेज भी मिल चुका है हमें बाबू मेरठ कैंट से। और फरीदपुर से आप हैं अनिल कश्यप और आपके सभी सदस्य। गंजुंडवारा से आपके नाम शामिल हो चुके हैं। और बबन रामटेके, वैशाली, आरुषि, आस्था और आपके सभी साथी। भंडारा महाराष्ट्र से मैसेज करते हैं। छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, मीना और विविधा वंडलकर का मैसेज भी फ्लैश हो गया है। एक तो कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत का भी मैसेज मिल चुका है। भाटपारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गंगू लाल रजक, गनूलाल रजक और मुरली छत्री का मैसेज भी फ्लैश हो गया है। मेराजुद्दीन अंसारी, मेराजुद्दीन जी का मैसेज, कैसरुद्दीन जी का मैसेज भी फ्लैश हो गया है कश्मीर से। और साथ में है पीरजादा मेराजुद्दीन। आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत।

इस समय हमारे माहौल में चारों तरफ तिरंगा और देशभक्ति की भावना भरी हुई है और हम मनाने जा रहे हैं अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस। तो श्रोताओं, इस एक प्लेज के साथ, इस एक वचन के साथ हम ये वर्ष मनाएंगे अपना स्वतंत्रता दिवस कि बड़ी ही मुश्किलों से हमें ये आज़ादी मिली है और इन आज़ादी के लम्हों को अब हमें अपने देश के नाम करना है, हमें अपने देश को वैश्विक स्तर पर सबसे ऊंचे पर स्थापित करना है। उसके लिए हमें सीमाओं पर जाके लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें करना ये है कि हमें अपने देश की सेना के प्रति, हमें अपने देश की संपत्ति के प्रति, राष्ट्र की संपत्ति के प्रति जो है सम्मान प्रदर्शित करना है। हमें साफ सफाई बनाए रखनी है और पब्लिक प्लेस में कचरा नहीं फैलाना है। हमें एक पौधा ज़रूर लगाना है, हो रही बारिश को सहेज करके ज़मीन के नीचे ज़रूर डालना है। हमें जिस रूप में भी जो चीजें मिली हैं हमें उस रूप में बरकरार रखनी है और हमारे देश में एक साफ सफाई को लेकर मुहिम चलाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सही स्थान पर थूकें, अगर इधर उधर न थूकें। हम देखते हैं कि लोग पान बीड़ी गुटखा कहीं भी पीते रहते हैं या कहीं भी गुटखा खा के कुछ भी थूक देते हैं, बिल्कुल भी ऐसा ना करें प्लीज, और धूम्रपान तो बिल्कुल ना करें। तो इन सारी प्लेज के साथ आज का कार्यक्रम यहीं तक। कार्यक्रम से मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त ब्रजेश को अनुमति जी, श्रोताओं नमस्कार। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत का आरंभ करते हैं पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव शर्मा के गाए इस भजन के साथ।

और श्रोताओं, इसी भजन के साथ कार्यक्रम सबरंग अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर, और श्रोताओं, स्टूडियो

0: घड़ी में दोपहर सुबह के ठीक 11:15 हो रहे हैं और अब समय हो गया है प्रोग्राम झुमका गिरा रे का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम झुमका गिरा रे। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम झुमका गिरारे में। और कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका अपना रेडियो दोस्त ब्रजेश तिवारी। श्रोताओं कार्यक्रम झुमका गिरारे, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग हमेशा केंद्रित करते हैं किसी एक विशेष जगह पर, किसी एक विशेष परिस्थितियों में और किसी विशेष दिन पर। बस कोशिश ये होती है कि आपके लिए एक बेहतरीन कार्यक्रम लेकर आएं। और इन दिनों हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे आसपास फिजाओं में एक अलग ही रंग महसूस करने को हम फील कर पा रहे होंगे, यानी कि वो रंग है देशभक्ति का, वो जुनून है देशभक्ति का, वो भाव है तिरंगा के प्रति समर्पण का। तो आज का हमारा कार्यक्रम झुमका गिरारे भी केंद्रित है तिरंगा यात्रा, भारत गौरव सम्मान यात्रा, तिरंगा यात्राएं जो निकाली जा रही हैं, और साथ ही साथ देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस जो कि हम मनाएंगे इस 15 अगस्त को, इस सब चीज़ों पर केंद्रित है। और हमने गए बाहर और लोगों से बात किया कि उनकी नज़र में क्या मायने हैं आज़ादी के, क्या है उनका मतलब आज़ादी से। तो हम गए हैं और शानदार तिरंगा लहरा रहा है, उसके छत्र छाया में ढेर सारे लोग हैं और उनसे कर रहे हैं हम बातें।
1: विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी हाँ, हम मनाने जा रहे हैं अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस। और श्रोताओं, आपसे ये बातें साझा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार कार्यक्रम झुमका गिरा रे को, यानी कि इस बार जो कार्यक्रम झुमका गिरा रे में
2: हम बात
1: करेंगे
2: करें।
1: बरेली की फिजाओं में लोगों की नजरों में आजादी के क्या मायने हैं। श्रोताओं, तिरंगे की अलग ही धूम है। इन दिनों हम भारत तिरंगा यात्राएं निकल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने भी यहाँ तिरंगा पहना हुआ है और हमारा तिरंगा भी शान से लहरा रहा है। इसी विषय के मद्देनजर इस बार का होगा हमारा कार्यक्रम झुमका गिरा रे। और हम बात करेंगे विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से और जानेंगे उनकी उनकी नजरों में कि क्या है आजादी के मायने। सुधा, हम बात कर रहे थे कि अलग अलग लोगों से हमने बात की कि क्या है उनकी नजर में आजादी के मायने। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं एक और सुधा। नमस्कार मैम
3: जी। हेलो सर,
1: आपका मैम शुभ नाम।
3: मेरा नाम है अंजना चतुर्वेदी और मैं बरेली से ही बिलोंग करती हूँ।
1: अच्छा।
3: मैं एक इंडिपेंडेंट एसोसिएट हूँ। मेरा
1: अच्छा।
3: काम है इंडिया को, भारत को स्वस्थ करना।
1: तो मैम, हम प्रोग्राम झुमका किरारे के मद्देनजर इस बार बात कर रहे हैं कि आजादी के क्या मायने हैं। तो बीइंग इंडिपेंडेंट वुमेन, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, बीइंग अ फीमेल, अंजना जी के नजर में क्या है आजादी?
3: सर देखिए, मेरे मेरी नजर में आजादी ये है कि हर जो हाउस वाइफ है, जो आज अपने घर पे आज काम कर रही है, मैं चाहती हूँ वो भी बाहर निकले। आज की दुनिया में वो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमारा काम है फिट इंडिया, भारत को स्वस्थ करना, और यही मैं करने आई हूँ। तो मेरा सबसे अच्छा भारत में इंडियन फीमेल मेल जो भी है उनके लिए मैं ये सबसे आगे रखूंगी, तो सभी लोग स्वस्थ रहे और इंडिपेंडेंस डे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
1: थैंक यू सो मच मैम। वही जज्बा हमारे सीनियर सिटीजन समाज के। और हम बात करते हैं कि क्या इनकी नजर से क्या है आजादी। नमस्कार अंकल।
4: नमस्कार।
1: आपका नाम?
4: नरेंद्र शर्मा।
1: नरेंद्र जी।
4: हाँ।
1: तो अंकल, हम बात कर रहे हैं, हम मना रहे हैं अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस अभी। तो क्या लगता है आपको, क्या आजादी है, आजादी के क्या मायने?
4: आजादी का मतलब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कुछ ना कुछ बलिदान करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
4: और देश ही सर्वोपरि है, व्यक्तिगत जीवन तभी तक सुरक्षित है जबकि देश सुरक्षित।
1: बहुत सुंदर बात आपने सर कही कि देश से जुड़ाव ही हमारा अपना जुड़ाव है, और देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। मना रहे हैं अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस, और ऐसे में हम विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से जान रहे हैं कि उनकी नजर में स्वतंत्रता के क्या मायने, क्या अर्थ है, क्या कर्तव्य है। इन सारी बातों को लेके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका नाम?
5: और प्रमोद शर्मा।
1: आप क्या करते हैं?
5: हम उद्यमी हैं, हमारा खुद का बिजनेस है सोलर का।
1: अच्छा। तो प्रमोद जी, आपको क्या लगता है कि

0: स्वतंत्रता यानी आजादी के क्या मायने हैं?
1: आजादी के मायने तो ये है कि हम कहीं भी खुल के घूम ले रहे हैं, किसी भी शहर में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट में फ्री चले जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बाकी आजादी का मतलब थोड़ी अगर सही से समझे आप तो अपनी प्रकृति को बचाएं, ठीक है, प्रकृति पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जिस तरीके से हम पेड़ों को काट रहे हैं,
0: जी जी बिल्कुल,
1: ठीक है, उससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और पर्यावरण खराब होता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: हम आजादी को भूलना छोड़ो, हम जीना ना भूल जाए।
0: बिल्कुल सही बात है, बड़ी मुश्किलों से हमें ये आजादी मिली है और आजाद देश में हमारे आजाद देश के पारिस्थितिकी संतुलन को बना के रखना भी किन्हीं मायनों में हमारे देश के प्रति कर्तव्यों और मूल कर्तव्यों से कम नहीं है। तो प्रमोद जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपने बहुमूल्य विचार साझा किए, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झुमका किरारे, और कार्यक्रम आज का केंद्रित है हमारे देश की 80वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। क्या है बरेली वासियों के लिए आजादी के मायने, हमने कुछ और लोगों से भी बात की, आइए सुनते हैं उन्हें।
1: हमारे साथ आपका नाम
2: रवि।
1: रवि, रवि जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रवि जी, हम मना रहे हैं अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस, तो रवि जी क्या लगता है आपको, हमारी आज की नजर में देखते हुए, आज के प्रासंगिकता को देखते हुए, आजादी के आपके अनुसार क्या मायने हैं?
2: आजादी के जो मेरे हिसाब से मायने हैं कि आदमी स्वच्छता जो अपने देश में स्वच्छता स्टेशन पर खड़ा हूँ और यहाँ पर आसपास देखिए आप कितना स्वच्छ है।
1: जी जी,
2: ये मतलब आदमी एकदम एक हिसाब से बिल्कुल आजाद है,
1: बिल्कुल सही बात
2: है, कहीं भी वो कूड़ा फैला है,
1: बिल्कुल सही बात,
2: इसे ही आजादी बोलते हैं हिसाब से।
1: बिल्कुल सही बात आपने कही कि स्वच्छता और सेवा, ये दो ऐसी चीजें हैं कि हम, और गांधी जी ने भी कहा था कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, और आजादी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा जहां मन करे वो करे, हम वो करेंगे। आप साफ सफाई फैलाकर, स्वच्छता अभियान चलाकर, जो चीज अगर स्वच्छ रूप में हमें मिली है तो उसको उसी रूप में बना कर भी हम देश सेवा कर सकते हैं। तो आजाद, बिल्कुल सही आपने कहा कि आजाद देश में हम साफ सफाई बना के रखें, और ये भी किन्हीं मायनों में देश सेवा से कम नहीं है, और हमारी देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है बहुत सारे लोगों का, उसको बना के रखें, उनका सम्मान है। थैंक यू सो मच रवि जी, आपने इतने बहुमूल्य विचार साझा किए, थैंक यू सो मच। तो शुभम, हम बात कर रहे हैं आजादी की इस छटा में छाई, खास तौर से हम लोग मना रहे हैं तिरंगा यात्रा, भारत तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। ऐसी कड़ी में हम देख रहे हैं चहुओर लोगों पर एक देशभक्ति का सुरूर है, एक जज्बा है। इसी कड़ी में हम बहुत सारे आयु वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं कि उनकी नजर में आजादी क्या है, आजादी के मायने क्या है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक और श्रोता। नमस्कार सर, आपका नाम?
3: नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार है।
1: अजीत जी, हम मना रहे हैं देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस, अजीत जी की नजरों में आजादी क्या है, क्या मायने है?
3: देखिए, आजादी के मायने ये हैं कि हम फ्री होके कहीं भी घूम पाए, कहीं भी कोई चीज मतलब अपने हिसाब से कर पाए, ये आजादी है। और महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाएं जहाँ चाहें, जिस जगह चाहें, सुरक्षित फील करें, जहाँ नौकरी करना चाहें वहाँ कर पाए, तो ये चीजें ही है, ये आजादी हमें।
1: अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने की भाई, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है, हम जहाँ चाहें वहाँ नहीं जा पा रहे हैं?
3: बिल्कुल बिल्कुल, आज के परिदृश्य में ही ऐसा हो रहा है, आज के परिवेश में जैसा हो रहा है, हम चाहते हैं आगे और इससे बढ़िया परिवेश मिले, हमारी बहनें, बेटियां, महिलाएं और सुरक्षित
1: और शिक्षित हो, सुरक्षित हो,
3: और अच्छा फील करें।
1: तो मतलब कुल मिला के अजीत जी की मायनों में महिलाएं बढ़ें, पढ़ें और शिक्षित हों, सुरक्षित महसूस करें, और बेखौफ होके एक निर्भय समाज में एक राष्ट्र निर्मात्री के रूप में कार्य करें। थैंक यू सो मच अजीत जी, आप हमसे जुड़े और आपने बहुमूल्य विचार साझा किए।
3: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये थे बरेली वासियों के नज़र में उनके जीवन में आज़ादी के मायने, आज़ादी के अर्थ, स्वतंत्रता का अर्थ। किसी ने कहा कि मैं मनचाहा खा पाऊँ वो मेरी आज़ादी है, किसी ने कहा मुझे निर्भय होकर बाहर निकलने की आज़ादी मिले, किसी ने कहा हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, और किसी ने कहा कि हमें आसपास अपने साफ सफाई बना के रखना होगा, किसी ने कहा कि हम स्वस्थ रहें और फिट रहें, यही आज़ादी है। तो ये था हमारा आज का झुमका गिरारे कार्यक्रम। कार्यक्रम से दीजिए अनुमति, श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झुमका गिरारे, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर, और स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 11:30। और आइए अब सुनते हैं FM रेनबो प्रोग्राम लखनऊ के, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
4: इन्होंने मैसेज देते हुए निवेदन किया है कि पानी अधिक से अधिक बचाएं और दूसरा पेड़ अधिक से अधिक लगाएं और अपने आसपास सफाई जरूर रखें और हमेशा खुश रहें। संजय जी, आपने जो बात कही है ना, ये बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि ये चीज प्रकृति से जुड़ी हुई है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और खुद को खुश रखने से जुड़ी हुई है। तो उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने यह बात सुनी हुई है हमारी, इसको जरूर फॉलो करेंगे और जीवन में उतारेंगे, लोगों को भी मोटिवेट करेंगे, क्योंकि हंसी

खुशी सब लोग रहे, इससे अच्छी बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। और एक रायबरेली से सलोनी चांदनी जी का भी ईमेल आया है, बस खाली उन्होंने इतना ही मेंशन किया। खैर कोई बात नहीं, अगला मेल करिएगा आप तो जरूर से अपना संदेश भी लिखिएगा। बाबू अंसारी जी का भी अहमदपुर बाजार बाराबंकी से मेल आया हुआ है, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? हम बहुत अच्छे हैं, इनको प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है और संदेश ये दिया है कि थोड़ी गर्मी फिर से वापस आ गई है, तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, लगातार पानी पीते रहें और अपने शरीर में पानी की बिल्कुल भी कमी ना होने दें। साथ ही ब्रह्मेश जी का भी हमें ईमेल आया हुआ है, अब इन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। बाराबंकी से इनका मेल आया हुआ है और इनका संदेश यह है कि जो लोग रोड के किनारे दुकान लगाते हैं, हमें उनसे भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास किराए पर दुकान लेने के लिए पैसे नहीं होते, तो कृपया जरूर ध्यान दें, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी भी चलती है और जो वो सामान देते हैं शायद वो आपको दिल से देते हैं, तो आपको एक बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए, एक बार पता करना चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए, इससे ही उनका दिल बहुत खुश हो जाता है। तो अगर आप किसी को खुशी देते हैं तो इससे अच्छी बड़ी बात भला क्या हो सकती है। एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक फ्रॉम मूवी मिस्टर इंडिया इन द वॉइस ऑफ कविता कृष्णमूर्ति। 11:32 का वक्त, आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल। अपने संदेश जल्दी से जल्दी आप हमें मेल करते रहिए और हमारे फोन नंबर्स ओपन है, तो जल्दी से जल्दी कॉल के सुनते रहिए दिस म्यूजिकल ट्रैक।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: जी हाँ, 11:45 का वक्त, आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल और आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका कि नाम है संदेश आपके गीत हमारे। बहुत सारे लोगों के संदेश ईमेल के जरिए और फोन कॉल के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं। अगर आप हमें सुन रहे हैं और कोई संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज डायल कीजिए 0522223852, यानी कि 0522238852, या फिर 0522238845, यानी कि 0522238845 ईमेल कर सकते हैं हमें। अगर कॉल नहीं लग रहा है तो fmakashwani@gmail.com पर। फिलहाल फोन लाइन पर कोई जुड़ चुका है, ये जानते हैं कौन और वो क्या संदेश देना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम रेनबो में, आपका शुभ नाम जान सकते हैं?
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: जी सर, मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल, ग्राम सिरसा से।
0: तो संभल से सचिन जी आप बात कर रहे हैं, ये बताइए आपने कॉल किया है हमें, अक्सर आप हमारे प्रोग्राम सुनते होंगे?
1: जी जी, मोबाइल ऐप पे सुनते हैं।
0: मोबाइल ऐप पे सुनते हैं, तो रेनबो आपको कैसा लगता है?
1: सर अच्छा लगता है, और खासकर आपके जो स्टेशन पे गाने बजते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और गाने भी अच्छे लगते हैं, जुड़े रहते हैं रेनबो से, और आज देखिए आपकी कॉल भी लगी है।
1: जी जी, आज सफलता मिल गई सर।
0: जी जी, तो चलिए, मुझे लग रहा है आपको बहुत दिनों से उम्मीद थी इस बात की कि आपका कॉल लगे।
1: चलिए, तो संदेश देना चाहूंगा कि हर युवा को अपने माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए, मन से, और अन्य बुजुर्गों की भी। और जैसे कोई खुशी का मौका हो तो उस पे एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाना चाहिए।
0: जी, तो सचिन जी आपका संदेश तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए, क्या किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: जी सर, नाम तो किसी का नहीं लेना चाहेंगे।
0: कोई दोस्त, घर परिवार से किसी का?
1: जी वही मम्मी पापा और बहन भाई, और मेरी बच्ची, मेरी भतीजी हितांशी जी, और वैष्णवी, और मेरा भतीजा है कुछ।
0: जी बहुत अच्छी बात है, आप हमसे जुड़े, आपने इतना अच्छा संदेश दिया और सारी बातें आपने हमने से की, ये हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, लेकिन आज आपका कॉल लगा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि एक नया श्रोता हमारे साथ जुड़ चुका है।

बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा दोस्तों किस तरीके इन्होंने अपना मैसेज भी दिया और कितने खुश भी थे कि आज इनका कॉल लगा। तो इस तरह आपका भी कॉल लग सकता है, प्लीज कॉल कीजिए हमें। हमारी फोन लाइन्स ओपन है 0522-22-38852 पर, और सुनते रहिए FM रेनबो। एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आ रहा है आप सबके रेडियो सेट पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जी हाँ, 100.7

कौन एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल। 11:46 का वक्त और प्रोग्राम चला है संदेश आपके गीत हमारे। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आपके दिल की बात आपके संदेश एफएम रेनबो के माध्यम से पहुंचते हैं बहुत सारे लोगों तक, वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है एफएम रेनबो की आवाज, यानी कि पूरे वर्ल्ड में। फिलहाल आप अपना संदेश हमें पहुंचाने के लिए ईमेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर, फोन भी कर सकते हैं हमें 0522 2238852 पर या फिर 0522 2238845 पर। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के हम तक मेल भी आए हुए हैं, और जो मेल आया हमें वो वकील अहमद जी का है। लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग, आवाज़ अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। इनका संदेश ये है कि कुछ लोग वाहन बहुत तेज चलाते हैं, तेज नहीं चलाना चाहिए। और साथ में इन्होंने अर्ज किया है कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो लाल हरे रंग मत बांटो, रहने दो लाल हरे रंग इनको मत बांटो, और मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। बहुत अच्छी बात है, 15 अगस्त से पहले आपका ये संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। और वकील अहमद मंसूरी कटका हतूरी जिला सीतापुर से इन्होंने मेल किया, साथ में नाम लिखे साहिबा शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलसफा सिद्दीकी, अमन नवाब और भी बहुत सारे लोगों का इन्होंने जोड़ा है साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मेल के लिए।

इसके अलावा अगला मेल है आफरीन मंसूरी जी का, लिखते हैं, कैसे हैं आप, मैं बहुत अच्छा हूँ। साथ में लिखा है इन्होंने मलिहाबाद से मेल कर रही हूँ, इनका नाम है नेहा। नेहा जी आपका मेल शामिल कर लिया है और इन्होंने यही लिखा था कि प्लीज मेल जरूर शामिल कीजिएगा। मेल तो आपका शामिल किया लेकिन संदेश कोई बात नहीं था इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगली बार जब मेल कीजिएगा तो संदेश जरूर लिखिएगा। अजय सिंह कुमार जी का भी हमें ईमेल आया हुआ है, लिखते हैं प्रोग्राम अच्छे लग रहे, गाने भी अच्छे लग रहे, उनका संदेश ये है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। इसके अलावा आकाश कुमार जी का, वारिस अली जी का और भी बहुत सारे लोगों के भाई मेल हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आप तक गाने भी पहुंचाते रहेंगे और बेहतरीन सा एक ट्रैक आ रहा है आप सबके रेडियो सेट पर, उस ट्रैक को सुनिए, इंजॉय कीजिए और बने रहिए FM रेनबो पर।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: जी दोस्तों, 11:55 का वक्त और ये जो टाइम है संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम है। लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि जिन दो लोगों के लास्ट मेल आए हैं उनके भी नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका संदेश भी आपको बता करके ही जाऊंगा। आकाश कुमार जी का मेल आया हुआ है, आकाश वर्मा का ये मेल है, बाराबंकी के रहने वाले हैं और मोहान रोड पर फिलहाल रहते हैं और वहां से इन्होंने मेल किया हुआ है। लिखते हैं कि सादर प्रणाम, नमस्कार, और आज के संदेश में इनका ये कहना है कि किसी भी आदमी को कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं जिससे सामने वाले को बहुत पीड़ा होती है। तो किसी को भी ऐसी बात ना बोले जिससे उसको बुरा लग जाए, सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करें। और साथ में नाम लिखा है, जी हाँ, साथ में नाम लिखा है ओमकार यादव और प्रणव शुक्ला जी को, इन्होंने प्रणाम भी भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी। इसके अलावा ओमकार यादव जी का भी हमें ईमेल आया हुआ है, ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज ओमकार यादव, मोहान रोड लखनऊ से, और ये संदेश सभी को पहचाना चाहते हैं कि जो हमारे भाई लोग रोड के किनारे ठेला लगाते हैं और रोड पर जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लोग उनका महत्व इतना नहीं देते हैं, बल्कि उनसे हर समय उल्टा बोलते हैं, गलत तरीके से बात

करते हैं और इनका ये मानना है कि शरीर की सभी को समानता का अधिकार देना चाहिए और किसी से गलत तरीके से बात नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार यादव जी, आपने जो हमें बात बताई हमने बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दी और आपने जो बात बताई है वाकई में सही बात है, लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो उन दोनों लोगों को मेल थे जो लास्ट में हम तक पहुंचे। फिलहाल चलते चलते एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आप सबके लिए और मैं कहता हूं टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये प्रतिष्ठित कलाकार पूरे देश को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कलाकार संगीतय, नृत्य, नाटकाय, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और अन्य संबंधित प्रदर्शन कलाओं से जुड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

आज समाज सुधारक अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण से लेकर तीर्थस्थलों के विकास तक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार में अद्वितीय योगदान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने जन केंद्रित शासन, अदम्य साहस और कुशल प्रशासन का एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने कल लखनऊ में फर्जी बिलिंग क्रॉस बिलिंग और दवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना कागजी लेन देन में शामिल बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। इसका इस्तेमाल नकली दवाओं को बाजार में बेचने के लिए किया जा रहा था। अमीनाबाद पुलिस थाने में चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना अपनी फर्मों के बीच बिल बनाए और कागजी लेनदेन के माध्यम से खरीद बिक्री का रिकॉर्ड बनाया। चित्रकूट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महेंद्र त्रिपाठी ने आज सुबह मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सकों को ओपीडी में आने वाले प्रत्येक मरीज का विवरण स्पष्ट और पूर्ण रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही दवाओं के सुरक्षित रख रखाव तथा बैच नंबर और एक्सपायरी तिथि की जांच के बाद ही दवा वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। शाहजहांपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में आज वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से हरियाली तीज पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पुलिस परिवार की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान पारंपरिक लोकगीत, भजन, लोक नृत्य, मेहंदी प्रतियोगिता और तीज से जुड़े पारंपरिक खेलों का आयोजन हुआ। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

बरकत है ये औरत के कदमों की कि दरो दीवार को लोग घर कहते हैं। ये काजल जिन आंखों में आकर समर जाता है, ये माथा जो बिंदिया की किस्मत निखार जाता है। रसोइयों से उड़ती ममता की खुशबुएं त्योहारों और उत्सवों पर सजती महफिलें, संघर्ष की मिट्टी में खिलते मुस्कुराहट के फूल, दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली खुद को न जाना भूल। हाँ, तुम हो शत्रुपा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

जी नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून आप सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स को। दोपहर के 12:05 हो चुके हैं और ये समय होता है, जी हाँ, ये समय होता है आपके दिल को छू लेने वाले कार्यक्रम शत्रुपा का। या यूं कहें कि हमारी महिलाओं के दिल को छू लेने वाले कार्यक्रम शत्रुपा का, जिसे लेकर हाजिर है आपकी अपनी दोस्त शिखा।

और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर दिन हम कुछ ना कुछ खास लाते हैं जितनी भी हमारी प्यारी प्यारी महिलाएं हैं ना उनके लिए प्रोग्राम शत्रुपा में, तो आज भी कुछ खास ही होगा ना आपके लिए। तो वो क्या खास होने वाला है आज आपके लिए? जी हाँ, आज किस टॉपिक लुक को लेकर हम बात करेंगे और वो टॉपिक आपका जो ये नजरिया है ना खुद के लिए वो चेंज करने वाला है। तो आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको सुकून से भर देंगी। तो वो टॉपिक हम स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, उसको एंजॉय करते हैं, फिर लौट कर आते हैं और अपना जो बातों का पिटारा है उसको खोलते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: जी हाँ, बस इतना सा ख्वाब है। तो इस ट्रैक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम शत्रुपा में। दोस्तों, हम महिलाएं कितना कुछ करते हैं ना अपने परिवार के लिए। हर समय बस एक ही चिंता कि घर को कैसे मैनेज किया जाए, अपनी जॉब को कैसे मैनेज करें, और घर के हर सदस्यों का ध्यान रखने में हम खुद को ही भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा कि हम अक्सर खुद को ही भूल जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन पता है आपको, जितना जरूरी घर के सदस्यों का ध्यान रखना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपका अपना सुकून भी है। घर में एक कोना आपके सुकून के लिए बहुत जरूरी है। इस बात पे मुझे लगता है कि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि घर में एक कोना ऐसा हो जहां हमें बहुत सुकून मिले। तो बातें तो हम अभी और भी करेंगे आपसे इसी सुकून के कोने के बारे में। जी हाँ, लेकिन उससे पहले एक गाना लगा के रखा है, बेहतरीन सा वो गाना है, आप तक आने के लिए बिल्कुल बेकरार है। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत, फिर लॉन्च कराते हैं और बातें करते हैं।

जी 12:19 हो चुके हैं और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शतरूपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। और आज हम बातें करने जा रहे हैं, जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल। दोस्तों, हम घर को सजाने संवारने में अपना सारा समय बिता देते हैं और कुछ लोग को तो इतना ज्यादा फोबिया होता है कि वो पूरा दिन सिर्फ सफाई में ही लगे रहते हैं। देखिए, ये सब करना अच्छी बात तो है, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को करते करते अपने को भूल जाए तो ये बहुत गलत है। तो क्यों ना अपने लिए एक सुकून का कोना बनाया जाए अपने ही घर में, क्योंकि वो कोना तो बनाना हम भूल ही जाते हैं। जी हाँ, घर को इतना सजाते हैं, इतना सवारते हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सुकून का कोना अपने लिए बनाना भूल जाते हैं, या यूं कहें कि उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको बता दूं कि जिस पर हम ध्यान नहीं देते वही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घर के सभी कोने में हम और हमारे विचार स्वतंत्र होते हैं। तो अगर आपके पास ये सुकून से भरा कोना है, मुझे तो लगता नहीं है कि है। जी हाँ, क्योंकि हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया कि भाई एक तो ऐसी जगह हो जहां पे हम बैठे, एक कप चाय की प्याली और कुछ नमकीन साथ में हो, नहीं हो तो गरम गरम कुछ दो अपने लिए पकौड़े बना लें। भाई अपने लिए तो हम कुछ भी नहीं करते। तो ये सुकून का कोना ना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यही तो वो जगह होगी जहां हम भूल जाएंगे सारी परेशानियां और खुद के लिए दो पल सुकून से बिताएंगे। तो कैसे ये बनाना है कोना, अगर अभी तक नहीं बनाया है, वैसे तो नहीं बनाया, पक्का नहीं बनाया होगा, अपने लिए सुकून का कोना तो नहीं।

बना होगा घर में। बस आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं इस सुकून के कोने को बनाने के लिए। तो वो हम आपको, आप तक वो बातें पहुंचाएं, वो कैसे चीज़ों को क्रिएट करना है खुद के लिए, वो बातें हम आप तक पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले एक गाना एंजॉय कर लें, तो चलिए एंजॉय करते हैं।

0: तो अगर
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: यू आर लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।
3: सपने बड़े हैं,
4: स्टाइल अलग है,
3: तो ये शो है आपके लिए।
4: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
3: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
4: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
3: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
5: शहर आपका, धुन आपकी, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
8: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

जी दोस्तों, 12:28 का वक्त और शिखा है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में, और हम बात कर रहे हैं घर के एक ऐसे कोने की जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। और दोस्तों आपको बता दूं ना, ये जो कोना है ये सिर्फ कोना नहीं होगा बल्कि आपकी पर्सनालिटी का मिरर होगा। जी, आपका व्यक्तित्व कैसा है उस कोने में दिखेगा। इसीलिए रंग भी आपकी पहचान से मेल खाने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप शांत स्वभाव की हैं, जी हाँ, बहुत आपका जो बिहेवियर है वो बहुत शांत है, तो हल्के नीले या हल्के हरे रंग के जो कलर है ना, वो आपको सुकून देंगे। जबकि ऊर्जावान व्यक्तित्व के लिए, जी हाँ, जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, उनके लिए जो पीला कलर है ना और नारंगी रंग, ये बहुत ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन देगा, सुकून देगा। और ये सिर्फ रंग नहीं होंगे, ये आपका जो मूड होगा ना, ये उसको बेहतर बनाएंगे। और ये बता दूं कि ये कोना आपको बनाना कहाँ है। जी हाँ, अगर ये कोना आप अपनी बालकनी, जी खिड़की या कमरे के एक छोटे हिस्से में बना लें, तो आप उसकी दीवार पर खूबसूरत पौधे भी लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट्स है ना, ये आपको पॉजिटिविटी से भर देंगे। और अगर वातावरण इतना अच्छा होगा तो आप अपने रचनात्मक कार्यों पर बेहतर ध्यान दे पाएंगी। और आप चाहें तो अपनी खिड़की को भी खूबसूरत रंगों से भी रंग सकती हैं। तो बातें अभी और भी हैं, बहुत ढेर सारी हैं आपसे करने के लिए, लेकिन एक गाना बिल्कुल तैयार है आप तक आने के लिए। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये गीत।

12:37 का वक्त और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। तो बस ऐसे ही एहसास और प्यार से जुड़े रहिए और सुनते रहिए अपना सतरंगी चैनल। जी हाँ, बोले तो FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

शहर आपका, धुन आपकी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: बारह बजकर 45 मिनट का वक्त और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। और दोस्तों, अभी आपने एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है ना। अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी दूसरों से मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है मन को, तो ये गाना जरूर इससे याद आता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से मिलने की कोशिश करी? मुझे तो नहीं लगता कि भाई आपने खुद से मिलने की कोशिश करी होगी। तो ये जो सुकून का कोना है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, तो इस सुकून के कोने में आप मिल सकती हैं खुद से। और उस कोने में हम क्या क्या चीजें रख सकते हैं, तो उस कोने में एक टेबल का खास रोल है। क्योंकि अगर आप पेंटिंग करती हैं, किताबें पढ़ती हैं, हैंडमेड क्राफ्ट बनाती हैं या फिर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, तो उससे जुड़ी चीजें आप उस टेबल पर रख सकती हैं। तो आप सोच रही कि उससे क्या होगा? भाई उससे मिलेगी आपको इंस्पिरेशन। और दोस्तों, एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि ये बातें सिर्फ सुनना नहीं है आपको। जी हाँ, ये बातें सिर्फ सुननी नहीं है, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। क्योंकि जब आप खुश होंगी ना, तो आपके घर का हर कोना आपके साथ खुश होगा। कि कहते ना, जिस घर में गृहिणी हंसती है तो वो घर संपन्न रहता है। जी हाँ, वो घर खुद ब खुद हंसता है। तो बातें तो अभी और भी हैं हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये गाना पहुंच रहा है आप तक, तो चलिए पहले इसको एंजॉय करते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, 12:50 हो चुके हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप शत्रुपा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं घर का एक ऐसा कोना सुकून से भरा जो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये जरूरी बातें तो हमने आपको बताई, लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है वो आज आप तक पहुंचानी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज है विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। तो आइए इसी विषय पर एक विशेष बातचीत सुनते हैं।
1: विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय गांधी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी SGPGI लखनऊ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नारायण प्रसाद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आपको।
1: सर, विश्व अंगदान दिवस के उपलक्ष्य पे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है, क्यों इतना ज्यादा अवेयरनेस इसके लिए फैलाना जरूरी है?
2: विश्व अंगदान दिवस

0: बनाने का एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि एक डिमांड और सप्लाई गैप है जो इन ऑर्गेन डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, मैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ तो इसलिए इन द स्टेज किडनी डिजीज के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह के जो डिमांड जो है लिवर डिजीज जिनका इन द स्टेज लिवर डिजीज है, जिसके हार्ट भी काफी खराब हो गए हैं, जिसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, तो इस तरह से इन स्टेज ऑर्गेन डिजीजेज होते हैं जिसको ऑर्गेन प्रत्यारोपण की जरूरत होती है। सबसे महत्वपूर्ण क्या कि गैप काफी है, डिमांड काफी ज्यादा है और हमारे पास जो ऑर्गेन अवेलेबल है इनको जिंदा रखने के लिए बदलने के लिए इसकी कमी काफी है। उत्तर प्रदेश में मैं सिंपल सा एक बात बताता हूँ कि आपको हमारे पॉपुलेशन जो है ना 25 करोड़ लग गए, 250 मिलियन पॉपुलेशन है, 250 मिलियन पॉपुलेशन में 200 पर मिलियन पॉपुलेशन लोगों को लगभग गुर्दे की खराबी है, तो इस तरह से लगभग आप देखेंगे तो 40-50 हजार लोगों को कहीं ना कहीं गुर्दे की तकलीफ है, प्रत्यारोपण और ये सब की जरूरत है। तो आज के दिन में एक जागरूकता के लिए बताना चाहते हैं आपको कि हमारी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होती है 24-25 हजार लोगों का लगभग डेथ हो जाती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, हम उसमें से अगर 1% लोगों का भी अगर हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनके मन को बदल सकते हैं कि आप ऑर्गन डोनेशन के लिए आ गए हैं, तो वो बंदे जब ऑर्गन डोनेट करेंगे तो मान लो 250 लोग अगर डोनेट करने हैं तो 500 लोगों की किडनी बदल सकती है, 150 लोगों का लीवर प्रत्यारोपण हो सकती है, हार्ट की प्रत्यारोपण हो सकती है। ये बहुत बड़ा चंक है, लोगों में एक गलत फहमियां होती है कि ऑर्गन जो डोनेशन हम कर रहे हैं वो तो हमारा पेशेंट का केवल उसमें हार्ट चलती रहती है, ब्रेन डेथ रहता है, तो लोगों को इस बात को समझने की जरूरत होती है कि ब्रेन डेथ और जो कार्डियक डेथ है, जो हार्ट की जो डेथ है, जिसका भी ब्रेन डेथ हो गई है ना, वो कानूनन तौर पे उसको डेथ माना जाता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो रियल टाइम में अगर ब्रेन डेथ हो गया तो वो आदमी जिंदा हो सकता है, तो उसको इक्विवेलेंट कार्डियक डेथ मानकर आप आगे आ सकते हैं और गुर्दा प्रत्यारोपण या अपने अंग को डोनेट कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपके ऑर्गन तो इसलिए आप तो नहीं बच पाए, लेकिन ऑर्गन जो आपकी है वो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति की
1: हेल्प हो सकती है। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नेक काम में आगे आना चाहते हैं पर वो सही प्रोसीजर नहीं जानते हैं, तो अगर कोई ये चाहता है कि वो अपने अंग दान के लिए रजिस्टर करा सके तो रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होती है, कहाँ अप्लाई करना चाहिए?
0: इसकी बहुत ही सरल प्रक्रिया है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, हर व्यक्ति के पास आजकल मोबाइल है, तो आप जैसे उत्तर प्रदेश के लिए मैं बोलता हूँ, सोटो है, स्टेट ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, सोटो यूपी डालेंगे तो एक उसकी वेबसाइट निकल के आ जाती है, उस साइट पे जाएं और आप अपना ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेजिंग का एक वो आ जाता है, प्लेज ऑर्गन डोनेशन, उसको आप QR कोड है उसको स्कैन करके आप भर सकते हैं, हार्डली 2 मिनट भी टाइम नहीं लगती है इसमें। और फिर नेशनल लेवल पे हमारा नोटो है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके साइट पे भी सेम प्लेजिंग का ऑप्शन है, तो आप कोई भी व्यक्ति जिसके मन में है कि हम मरने के बाद हमारे ऑर्गन प्रत्यारोपण हो, तो हम उस पे जाकर अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है।
1: सर, इसके लिए क्या कोई एज बार डिसाइड होता है, किस उम्र से और किस उम्र तक किया जा सकता है?
0: देखिए, उम्र कोई बार नहीं है डोनेशन के लिए, है ना।
1: okay.
0: एक छोटे बच्चे आपने देखा होगा, हम लोगों ने न्यूज में पढ़ा था, 1 साल से छोटे बच्चे ने भी ऑर्गन डोनेट किया है, वो होता है वो किसके लिए सुटेबल है उसके मुताबिक, लेकिन कोई एज बार नहीं है।
1: okay.
0: आप अच्छे साल के लोग हैं तो मान लिया उनके जो ऑर्गन ठीक काम कर रहे हैं वो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उसके ऑर्गन की सुटेबिलिटी की टेस्ट करते हैं जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं, तो आज उसके मुताबिक ये है उसके ऑर्गन ले जाते हैं, लेकिन कोई एज बार नहीं है ना। किसी का मान लीजिए एज मैंने 70-80 बताया आपने, अगर दोनों किडनी मिला करके अगर मान लो ठीक काम कर रहे हैं तो ड्यूअल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, जैसे दोनों किडनी निकाल करके एक आदमी में लगा दिया तो फिर वो अच्छे काम करते हैं। ये डिसीजन होती है जो ट्रीटिंग लोग होते हैं उसकी डिसीजन होती है, एज बार लेकिन इसमें नहीं है।
1: सर, एक सवाल और बनता है, मेडिकल फर्टर्निटी में रजिस्ट्रेशन कराने के अलावा क्या कोई परिवार का रजामंदी पत्र भी लगाया जाता है इसमें?
0: अगर किसी आदमी ने अपना प्लेज कर रखा है और प्लेजिंग की कार्ड उसके पास होती है तो ये आसान होता है, लेकिन रजामंदी परिवार की बहुत जरूरी होती है
1: जी।
0: तो उसमें एक कंसेंट का फॉर्म होता है, बिना परिवार के रजामंदी के बिना कोई ऑर्गन रिट्रीव नहीं किए जाते, तो ये एक एसेंशियल प्रक्रिया होती है जो हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। कभी कभार कुछ ऐसी होती है जो

0: अनक्लेम्ड बॉडी बोलते हैं,
1: हाँ
0: लोगों के मन में ऐसा दुर्भाव भाव रहता है कि जो अनक्लेम्ड बॉडी है, मान लीजिए किसी अस्पताल में बहुत दिनों तक कोई आदमी क्लेम करने नहीं आया, उसका डेथ हो गया, वैसे स्थिति में जो पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, आईजी रैंक पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, वो उस बॉडी के ऑनर होते हैं, एंड देन इवन दैट कैन बी यूटिलाइज्ड ना, तो इस तरह के प्रावधान हैं इसमें, लेकिन कंसेंट जो होना वो जरूरी होता है, बिना कंसेंट के कोई काम नहीं किया,
1: फैमिली कंसेंट की जरूरत होती है।
0: फायदा ये होती है कि आपने प्लेस किया हुआ है,
1: आपका
0: प्लेस का जो कार्ड है वो आप लेकर के चल रहे हैं, तो लोगों को मैंने जैसे हॉस्पिटल वाले को सहूलियत होती है कि आदमी ने ऑर्गन प्लेस कर रखा है ऑर्गन डोनेशन के लिए, वो उनके फैमिली से कनेक्ट होने में इनको सुविधा होती है।
1: सर थैंक यू सो मच आज इतने विशेष दिन पर हमसे ये बातचीत करने के लिए और इतनी सारी जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।
0: धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
1: तो विश्व अंगदान दिवस है आज और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने जीवन में ये एक नेक कार्य जरूर करेंगे, प्लेज जरूर लेंगे कि किसी के जीवन को दान मिल सके आपके थ्रू। हमारे साथ थे डॉक्टर नारायण प्रसाद जी, सीनियर प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी SGPGI के।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।

जी हाँ दोस्तों, आज आपने एक विशेष बातचीत सुनी। किस दिवस पर? आज था विश्व अंगदान दिवस, जिससे तमाम भ्रांतियां जो थी लोगों में वो बहुत हद तक दूर हुई होंगी। और देखिए, अब समय भी हमसे कह रहा है कि टाटा बाय बाय करना होगा प्रोग्राम शत्रुपा से, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि अगला प्रोग्राम होठों पे तेरी बात भी आप एंजॉय करेंगे अपनी दोस्त शिका के साथ। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए प्यार से और एहसास से, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 1 बज रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो के प्रोग्राम, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे थे। और स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बज चुके हैं। समय हो गया है प्रोग्राम अनुरोध गीत का।

0: सावन का महीना पवन करे शोर।
1: जी हाँ श्रोताओं, सावन का महीना पवन करे शोर। आज का हमारा ये विषय है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। तो आप अपनी फोन कॉल्स करना ना भूलिएगा कार्यक्रम में हमें दोपहर के 2:30 पर, और आप हमारी पोस्ट पर भी जरूर संबंधित विषय के साथ कमेंट कीजिएगा हमारे विषय पर। तो फिलहाल अब शुरू करते हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं आपका और हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम अनुरोध गीत। हम सबका पसंदीदा इसलिए क्योंकि आप हमें लिख के भेजते हैं इतने ढेर सारे लेटर्स, और ये लेटर्स हमारे दिल को छू जाते हैं। हम इसकी बार बार लगातार ये बात करते हैं और दिल से प्रशंसा भी करते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे पत्रों को पढ़ने का सिलसिला। ये पत्र हमें भेजा है कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली वार्ड नंबर 11 से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रेंकी, कपिल वेदराम, कैलाश सुनील, खुशबू एरोही और स्वाति मौर्य। बरेली जंक्शन से इसी गीत को सुनना चाहा है गरीब भाई नासिर, सादिक

विक्की भारद्वाज, वीरेंद्र सिंह चौहान, सोनू मिश्रा, अमान खान, प्रदीप पाल, नमन और आपके सभी साथी। और श्रोताओं, आपको बताते चलें कि आज का हमारा कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सबने केंद्रित किया है अपने पत्रों के माध्यम से, इतनी ढेर सारी फरमाइशों के माध्यम से। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो आज का हमारा कार्यक्रम अनुरोध गीत भी केंद्रित है सावन के महीने और बारिश के मौसम पर, जो आप सब ने हमें ढेर सारी ये फरमाइशें भेजी हैं। ये अगला पत्र जो हम पढ़ रहे हैं, इसे लिखा है तलैया उड़ा जागीर से फजरुद्दीन अबरार और अफजाल, आपके सभी साथी। नकटिया से ताराचंद्र और बबली ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन, रेहान, माहिरा नूर और आपके सभी साथी। आपका ये पत्र हम तक आ पहुंचा है और आप हैं ककराला बदायूं से मसरूर खान, सरफराज, याकूब अब्बासी, विकास सक्सेना, करमबीर, प्रवीण, अलिन, अनिल, काजल, चंचला, रेखा कश्यप और आपके सभी साथी। रामप्रसाद शर्मा, अजय शर्मा, मनोरमा देवी, रीता देवी, विनोद वंश और कनिष्का का ये पत्र हम तक पहुंचा है। अशरफ खां चावनी पानी की टंकी के पास से और फूलबाग किला छावनी से इसी गीत की फरमाइश की है हमें विशन दत्त भारद्वाज, शिव दत्त, गंगा दत्त, गोपाल, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु मिश्रा, भावना, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम भारद्वाज और श्रीराम राठौर ने।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

प्रोग्राम अनुरोध गीत। श्रोताओं, आप सबके लगातार पत्र हमारे पास पहुंच रहे हैं और ये अगला पत्र जो हम पढ़ रहे हैं, इसे लिखा है श्री रामचरण ध्रुवे, अवधेश कमलेश, सर्वे सुमन, सुजाता काजल, अर्चना, सुषमा, अमित, अनिकेत और राधिका दुबे। और ये पत्र हमें मिला है ग्राम अमरौली, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत से। आप हैं, एक दोस्तों का ग्रुप है ये, और आपने ये पत्र हमें लिखा है जूनियर स्कूल इज्जत नगर बरेली से। और आप हैं प्रकृति, पारुल जोशी, अनुज यादव, अशोक, गौरव बेलवाल, रेणु, इंदु कन्नौजिया, जीतू जीत सिंह, कौशल किशोर, मांडवी श्रीवास्तव, नवीन, नेहा दुबे, निधि चतुर्वेदी, पुलस्तुभनी तिवारी, रेणु गुप्ता, सचिदानंद, सर्वेश मीना, विशाल श्रीवास्तव, विश्वास अस्पाक, चंदन शर्मा, राजेश कुमार, अमित सिंह, रूपा जोशी, शीतल ओझा, आरती बिष्ट, निधि चतुर्वेदी, संतोष शर्मा और कौशल किशोर। साथियों, आपका ये पत्र पढ़ के मेरा दिल भी मेरे स्कूल की तरफ जा रहा है और मुझे भी अपने स्कूल के देश बच्चों की, अपने साथियों की याद आती है। बहुत सुंदर आपने ये पत्र लिखा, थैंक यू सो मच। अगला पत्र ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसे लिखा है गंज डुंडवारा से शमशुल कमर, शाहीन कमर और आपके सभी साथियों ने। परिमल कासगंज से आप हैं आवाद आवाद खान और गजाला खान, ये गीत की फरमाइश हमें भेजते हैं। वजीरगंज लहरा लाडपुर से होशियार मोहम्मद शेर, मोहम्मद खुश नुमावी जी, नूर जहाँ बेगम, संजुरन बेगम, जीशान अली, आसमी और चांदनी भी इस गीत को सुनना चाह है। भवाली नैनीताल से इकराम अली फैजान, ऐशान सहनाज, अपी बॉबी और अजहर साहिबा। और ये पत्र हम तक आ पहुंचा है कस्बा शीशगढ़ से, लिखने वाले हैं गुड्डू इदरीसी, फरहान इदरीसी और आपके सभी साथी। आप सबने सुनना चाह है फिल्म मोहरा का ये गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत और प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये पत्र हमें भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय ऊंचा अमित कुमार राय है पी राय दुबिया ने वादा गाजीपुर से ये पत्र भेजते हैं प्रतीक राय रोशनी और प्रांजल राय। ये जो अगला पत्र हम पढ़ रहे हैं इसे बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है गंज जुंडवारा से मुनव्वर लल्ला नसरी नरवाज शहबाज पप्पू अफसाना मैजबी और आपके सभी साथी हमारे नियमित श्रोता हैं बीसलपुर से और मोहल्ला दुर्गा प्रसाद है और आप हैं बिमल वर्मा विनय वर्मा और के परिवार के सभी साथी। इसी कड़ी में गैक्टा काशी धर्मपुर से फहीम खान सिद्दीकी साबिया और रामप्रसाद शर्मा दूने नगर से मुन्ना सिंह कटेरिया और आपके सभी साथियों का ये पत्र भी मिल चुका है हमें और नसीम अहमद अंसारी मेराज जहां मुस्कान भी रेहान अलशिफा और मन्नत का ये पत्र हमें मिला है नवाबगंज से दौलतपुर दौलतबाग मुरादाबाद से ये पत्र गीत को सुनना चाहा है जाफर हुसैन नईमा बेग कासिम अली और नदीम अली साथ में है जुनेद अब्बासी। अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली दीपक फुलमाली कृष्णा वर्मा और समर फुलमाली ये पत्र हमें भेजते हैं और इसी गीत को

सुनना चाहते हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरमिंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बनमीत, मनविंदर पांडा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया, आप सबने सुनना चाहा है फिल्म नमक हलाल का ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने और संगीत है बप्पी लाहिरी का। अरे अरे ना ना ना ना ना।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM और सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। प्रोग्राम में अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म देशवासी का ये गीत अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में। गीत के वो लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहें अलेवाई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, दंतरेंगी से भागवत वर्मा और आपके सभी साथी, गनगोला से दातागंज आप हैं, गनगोला दातागंज से आलिम खान, नेहा सालिम, आरिफ आलमशेर, वली अहमद, जहूर और मुशीर खान, और विलासपुर देवरी खुर्द से संतोष तलरेजा, आरती अर्चना, सोनू, कुंवर सिंह, गुड्डू और रामदास, विलासपुर देवरी खुर्द से आशा सिंह ऊषा, ज्योति सिंह तलरेजा और आपके सभी साथी, डाबर तालाब लोनी से ये पत्र हमें लिखा है रजा अहमद, ईशान, आरिस मुख और मरियम जहां ने, और हररपुर मटकली से आप हैं शाहरुख नूर अंसारी और आपके सभी साथी, गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर चटिया से ये पत्र हमें लिखते हैं ओमपाल गंगवार, अनीता परिवार के सभी सदस्य, पेपरिया नवरिया सुवर्णी से ये हैं आप हैं अमन गंगवार, आशा संध्या और छोटे लाल गंगवार, खान रेडियो क्लब कस्बा जादोपुर पोस्ट भैरापुरा से अनीस खान, मुनीस, आरिस मुनाजिर, परवीन दास, कारा दरकशा और साजिया खान, इसी गीत को सुनना चाहें बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक और तनु करमकर, बजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से ये पत्र लिखा है हमें प्रेम कमलवासने, सुशीला, प्रभा, अमरीस, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेद, ऋचा और ऐश्वर्य कमलवासने, शेरनगर बहेड़ी से आप हैं लईक अहमद, अदरीची, अशरफ, अतीक, शिफाबी और यास्मीन, और ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसामा जिला बदायूं तहसील दातागंज से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, नीता, सुनीता, सुरत श्री और गुनगुन यादव, आप सबने सुनना चाहें फिल्म

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध की गीत मेरे यानी ब्रजेश के साथ। और प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये पत्र हमें लिखा है बरेली जंक्शन से पप्पू भाई, जमील भाई, मेराज, मोइन, अफजल, बब्बू, फिरोज, परवेज, बासियत और हसीन भाई। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मेराज जहां, लक्सर, आज़ाद नगर, हरिद्वार से। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमें महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से दराजेश कुमार धंजे, राहुल, विशाल और शीला और गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा और नीतू वैद का भी ये पत्र हम तक आ पहुँचा है। आप हैं करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, तुलसी मस्कीन और जगमोहन प्रजापत। ये अगला पत्र जो हम पढ़ रहे हैं इसे लिखा है अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। भाटपारा दंदरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार और दीपक कुमार वर्मा का पत्र भी आया हमारे पास। लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रचक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। और आप हैं अलीका डबवाली से बसंत सिंह, छन, राजकुमार गांधी, कुलदीप गांधी और सुनीता। और इसी गीत को सुनना चाहा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा ने। ये पत्र हमें लिखते हैं करगैना बीडीए कॉलोनी से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष, अमर, हितेश, रूबी, एकता, दिव्या, ममता, ओमवती, भारती, खनक, नकुल, नैन्सी, सारांश और रचना भारती। ये अगला पत्र जो हम पढ़ रहे हैं ये हम तक पहुँचा है ग्यासपुर बीसलपुर से लिखने वाले हैं आबित अली, तबस्सुम और नेहा नाज। और गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभय, परमानंद और पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत, प्रियंका, जयप्रकाश, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द, राहुल और आपके सभी साथी। मीरगंज से कल्लू भाई, नईम, फहीम, नसीम, दानिश और आदर्श दिवाकर का भी पत्र हम तक आ पहुंचा है। और आप हैं करोला बराबर से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब और नवेद खान। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और आपके सभी साथी। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म अलग अलग का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में संगीत है आर डी बर्मन का।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। इससे पहले वाले गीत में कुछ शायद दिक्कत हुई, वो पूरा नहीं जा पाया। दिल्ली शहर मोरीगेट से अगले गीत को सुनने के लिए पत्र हमें लिखा कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पी रानी और आकाश कुमार ने। इसी गीत को सुनना चाहा है गुंजाला तहसील जिला बीड महाराष्ट्र से नारायण देव दुगे नानी भाई।

नंदा महेश निर्मला और भगवान ने ग्राम जामठी तहसील वरूड जिला अमरावती महाराष्ट्र से ये पत्र हमें लिखते हैं। मुकेश कासलेकर, दिनकर, विमल, विशाखा और आपके सभी साथी कुमार, ये पत्र हमें मिला है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम कुसुम प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम का। और ये अगला पत्र जो हम पढ़ रहे हैं इसे लिखने वाले हैं गौरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि पाटिल। चंडीगढ़ से बिमला अनेजा, सतीश अनेजा का पत्र भी मिल चुका हमें। और ये पत्र जो हम पढ़ रहे हैं इसे लिखा है कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स से नागपुर से नाना डोंगर दिव्य रमाताई रीमाताई सीमा ताई दीक्षा ताई और राहुल डोंगर दिवे। बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू और मोहित नारंग का पत्र भी हम पढ़ चुके। और ये पत्र हमें लिखने वाले हैं सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार। इस गीत की फरमाइश की है हमें मलोट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी आरती और तनिष सेतिया ने। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म मिलन का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जिया।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: और श्रोताओं, प्रोग्राम आ पहुंचा है अपने अंतिम पायदान पर। कार्यक्रम के अंत में ये पत्र हमें भेजा है सुंदर खेड़ राजमाता नगर उल्डाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवरे ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये पत्र हमें लिखते हैं। टीडी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह और अमनदीप कालका से शुभ चंद्र बजाज बिट्टा बजाज और साहिल का भी पत्र मिला हमें। और खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान सत्या सावित्री प्रतीक धर्मेंद्र मानस साहू और आपके सभी साथियों ने ये पत्र हमें लिखा। सेक्टर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौड़ कुसुम सुयश आशीष और राधिका गौड़ भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और राजपुर थाना बहजोई संभल से नवदीप कुमार रिंकी और आदित्य कुमार ने ये पत्र हमें लिखा है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश मैंडी सौरभ शाइना और निमान शर्मा की फरमाइश पर हम सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम का अगला गीत। और ये पत्र हमें लिखते हैं अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम आयशा हदिया असमा सालिमा सालिया शोएब मुजताबा राउ शाहिद गायंदी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली। और इसी गीत को सुनना चाहा है कनेरा पटियाला से मुकेश नील बत्ता नीलम नितिन निहारिका करण गीतू निहारिका वंश और पलक। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मिका बलविंदर चैतिक और मिका विरक। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म चांदनी का ये गीत सुरेश वाडेकर की आवाज में। और गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने संगीत है शिवहरी का।

लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। जी हाँ, ये झड़ी लग गया ही है सावन की, वो इसलिए क्योंकि स्टूडियो में दाखिल हो गए हैं परवेश जी आगे के कार्यक्रमों को करने के लिए। और जी हाँ श्रोताओं, आप लोग को एक बार फिर से याद दिलाते चलें कि कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में भी आज झड़ी लगेगी सावन की, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का विषय भी है कि सावन का महीना पवन करे शोर। इन सारे विषयों के साथ अगले आगे के कार्यक्रम आप सुनेंगे मोहम्मद परवेज के साथ।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत ब्रजेश तिवारी के साथ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम रसरंग। इसमें गज़ल, कव्वाली और लोकगीतों का आप आनंद लेंगे। तो आइए सुनते हैं ये पहली गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में।
1: मोहब्बत को समझना है तो नादां खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजाए तूफान नहीं होता। ऐसी होती है मोहब्बत जो हमारी आंखों

श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। सावन का महीना पवन करे जोर। जी हाँ श्रोताओं, आज का हमारी आपकी बात आकाशवाणी के साथ का विषय है, जिसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे 2:30 पर। प्रसारण का समय रहेगा आज शाम 4 बजे। हमारा फोन नंबर है 0581251720। फेसबुक पर भी हमें कमेंट करके आप अपनी बात रख सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं अजीज नाजा व साथियों की आवाज में ये गजल।

श्रोताओं, आज 2:30 पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। आज हम बात करेंगे सावन का महीना, पवन करे शोर। जी हाँ श्रोताओं, हमारा फ़ोन नंबर वही है 0581-2517-200। इस पर हमें कॉल कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

मोहम्मद रफी की आवाज में सूरज फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में वैजयंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

0: गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।

0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इस कार्यक्रम में आज वैजंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

संगम फिल्म का ये गीत मुकेश और साथी की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आम्रपाली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल तर्ज शंकर जयकिशन की।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे प्रिंस फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।

0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत, फिल्म मधुमती।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है
2: भाई? हाल तो ठीक है।
1: आज हमने देखा आपको कि एक तो सजीव प्रसारण में आप लगातार बोल रही थी
2: जी।
1: और उसके पहले मैंने देखा कि हाथ में कुछ क्रोशिया का बिनाई भी कर रही थी और साथ में अखबार के बंडल भी लिए हुए थी पढ़ रही थी। तो ये काम के साथ साथ एक साथ इतने सारे शौक निभा लेती हैं?
2: वो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि देखिए काम तो करना ही है ममता जी, लेकिन साथ में अगर कुछ ऐसे काम कर लिए जाएं जिससे मन बड़ा प्रसन्न रहे तो अच्छा लगता है। शौक हमारे ये अच्छे रहते हैं।
1: हाँ, और ये शौक बचपन से डेवलप होना चाहिए
2: जी।
1: अगर बच्चों में, छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या शौक है, लेकिन माता पिता देखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि मेरा जो निजी अनुभव और निजी सोच है वहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अभी माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर के वो

0: उन्मुख करना चाहिए, क्योंकि
1: जी
0: जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी पेशा करने लगते हैं, और जाहिर सी बात है कि आपके पास दोहरी तेरी जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता है आपको
1: जी
0: और कहीं ना कहीं तनाव महसूस होता है। तो ऐसे में अगर आपके काम के साथ कोई अलग भी शौक है, हुनर है, तो आप उसमें अपने को डाइवर्ट करके खुश रह सकते हैं। मान लीजिए हम दफ्तर में, हम या आप सभी दफ्तर में 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं, और अभी
1: जी
0: तो बहुत सारे कंपनियों में, बहुत सारी जगहों पे 12-12, 14-14 घंटे काम होते हैं, तो उतना इतना काम करने के बाद एक ऐसा समय होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए खुद के लिए, जहां पर आप अपने मन का करें, अपने शौक पूरे करें।
1: बिल्कुल। और जैसे कि ये कह सकते हैं इन दिनों तो, क्योंकि ज़्यादातर काम तो स्क्रीन के थ्रू ही होते हैं, आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप फ़ोन देख रहे हैं, कुछ भी अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर और फ़ोन से जुड़े रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी। तो ऐसे समय में जब हम अपने किसी शौक की तरफ जाते हैं तो कुछ देर उससे भी दूर हो जाते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन या ऐसा हम जब स्क्रीन देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़े अलग तरह से चलता है, और जब हम अपने शौक की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी गतिविधियां हमारे मन में होती है, भावनाएं अच्छी आती
0: और
1: हैं।
0: कई नकारात्मक बातें जब होती हैं कहीं इर्द गिर्द, तो वो आप भूल जाते हैं।
1: जी
0: तो इसलिए आप अपने कामकाज के साथ साथ कोई ना कोई शौक जरूर पालिए, और वो कहते हैं शौक का नशा होना चाहिए। तो हमने तो इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन हमारे श्रोता क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना है जो एक सेगमेंट है उसके अंतर्गत हमें इंतजार है कि हमारे श्रोता अपने अनुभव साझे कि वो अपने काम के साथ किस तरह के शौक पालते हैं, कि पढ़ाई लिखाई का शौक है उन्हें,
1: जी
0: पिक्चर देखने का, घूमने का, या फिर कुछ बिनाई कढ़ाई का शौक है, पेंटिंग का शौक है, चित्रकारी का शौक है, तो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही आज हम लोग कुछ विषय और भी लिए आए हैं उनके लिए, जैसे आज विश्व अंगदान दिवस है तो इस पर बातें होंगी, और कहानी पद्मश्री की में आज हम लेने वाले हैं पेट्रिशिया मुखीम की बातें, समाज
0: जी
1: सेवा से वो जुड़ी हैं।
0: और कई बार ये तो शौक की बातें हमने की
1: जी
0: जहां पर आप खुश हो लेते हैं, लेकिन कई ऐसे दुखद जगह, दुखद घटनाएं होती हैं, जहां जाते हैं वहां पर भी देखा है लोग कि कहीं शोक मनाने जा रहे हैं और बढ़िया जरी वाली साड़ी पहन के, तैयार
1: जी
0: होकर, लिपस्टिक लगाकर, ये महिलाओं की बात है, पुरुषों के लिए भी, कि अच्छे शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया तैयार होकर गए और वहां पहुंच के बहुत तपाक से किसी से गले मिलना, नमस्ते करना और हाथ मिलाना,
1: जी
0: लेकिन वहां का एक शिष्टाचार होता है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि आप दुख मनाने गए हैं, पता चला कि आप बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो
1: दुख
0: अब
1: में गए हैं तो उस तरह से, मतलब एक अपनी भावना भी उस तरह की होनी चाहिए, दिखावे के तौर पर नहीं लेकिन एक अपनी भावना, क्योंकि हम गए तो उसी लिए हैं। और साथ ही साथ आज हम जो एक और विषय लिए आए हैं वो है बारिश में कीड़ों के काटने पर क्या उपयोगी टिप्स हम अपना सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें।
0: बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं और हमारे श्रोता भी इस बारे में टिप्पणियां करेंगे विविध भारती के
1: जी
0: फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम सुनवाते हैं श्रोताओं को एक गाना, ये

0: तो हम अपने सखियों सहेलियों को बहुत सी बातें करते रहते हैं ममता जी, और आज विश्व अंगदान दिवस है जो कि हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अंगदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने के लिए आज का दिन मनाया
1: अब
0: जाता है।
1: मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है ना कि ये
0: जी
1: जो भ्रांति है इस बारे में सोचना भी निरर्थक है।
0: जी
1: अब तो अगर आपके एक अंगदान से किसी की जान बचती है, किसी को जीवन मिलता है,
0: जी
1: तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? अगर जो लोग ये मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान होना
0: जी
1: है, तो
0: जी
1: उनको यही मानना चाहिए कि ये तो और उपकार एक तरह का
0: पुण्य
1: ईश्वर
0: के
1: की
0: साथ
1: पूजा,
0: जुड़ा है।
1: पुण्य की तरह
0: जी
1: पुण्य से जुड़ जाता है, तो इसलिए अंगदान करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, ना ही ज्यादा उसमें चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें।
0: जी
1: और अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को हम याद करते हैं, जैसे गुर्दा, हृदय, अग्नाशय, आंखें, किडनी और फेफड़े जैसे अंगों का दान गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जान बचा सकता है, ये हमें
0: बिल्कुल
1: ध्यान में रखना चाहिए।
0: हाँ, और ये अंगदान के लिए अगर किसी को करना हो तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी मौजूद हैं और अपनी सहमति से ही होता है। अगर आप 18 साल के व्यक्ति हैं तो 18 साल के जो भी हैं उन वो अपने अंगदान को जीवित रहते हुए भी आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो आप भर देते हैं, और उसके बाद जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर उसने अंगदान करने का ये संकल्प लिया है तो उसके जिन जिन अंगों को वो देना चाहता है वो सभी अंगदान के तहत ले लिया जाता है। और अगर 18 वर्ष से कम की आयु हो और माता पिता चाहते हो, अगर माता पिता ने खुद भी अंगदान किया हो और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें, तो वो उसके पहले एक फॉर्म भर सकते हैं और उसको अपनी अनुमति से वो अंगदान के लिए कह सकते हैं। हालांकि बच्चा अगर 18 वर्ष का होता है और वो नहीं चाहता है तो वो इस चीज से मना भी कर सकता है। और पहला अंगदान किया गया था 1954 में, रोनाल्ड ली हेरिक ने अंगदान किया था सबसे पहले अपने जुड़वां भाई को, उसने उन्होंने किडनी दी थी और ये सफल एक ऑपरेशन हुआ जिसके तहत दोनों ही स्वस्थ रहे काफी लंबे समय तक। और उसके बाद धीरे धीरे अंगदान का महत्व भी लोगों को समझ में आया और जो हमारा साइंस है किस तरह से तरक्की करा, और अब तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। पहले तो कुछ मुश्किलें भी आती थी लेकिन अब इतनी तरक्की हो गई है कि तुरंत ही छुट्टी भी मिल जाती है। इन दोनों जो पहले जिन ऑपरेशंस को बहुत बड़ा माना जाता था वो तो आजकल बिना चीर फाड़ के लेजर के जरिए हो जाते हैं, और अंगदान जैसी जो चीजें हैं वो बहुत ही आम होती जा रही है। और जरूरी नहीं है कि आप एक एक डोनर लिस्ट होती है और उसमें आप जिनको भी अंग चाहिए, जिसका जिसे भी कोई गंभीर बीमारी है वो उस लिस्ट में अपना नाम उसमें रख सकते हैं, और उसके उनके अनुसार उनकी जो अवस्था है, उनकी आयु है, उनकी किस तरह का रहन सहन है उसे देखकर,
1: क्षमता उनकी कितनी, शारीरिक क्षमता
0: हाँ
1: कितनी है।
0: वो देखकर इस तरह की लिस्ट को देखा जाता है। और जो भी कोई अंगदान करता है और अंग मिलता है तो उसे इस तरह से तुरंत उन्हें बताया जाता है कि अब
1: हाँ
0: एक उनके लिए अंग ऐसा मिला है जिसे वो ले सकते हैं।
1: और एक चीज और है, कुछ अंग के कुछ हिस्सों

0: के लिए पहले से बताना पड़ता जो मृत्यु के बाद ही हो सकता है, जैसे
1: जी
0: आंख नेत्रदान।
1: जी
0: तो नेत्रदान के लिए आपको पहले जिस फॉर्म का जिक्र आपने किया वो
1: जी
0: फॉर्म भर लिया जाता है, और आंखों के दान के लिए कुछ समय सीमा होती है,
1: जी
0: उस समय सीमा के अंदर ही आपको नेत्रदान किया जाता है,
1: जी
0: करना पड़ता है। तो ये बात होगी, और किडनी और ये सब चीजें तो आप जीवित रहते भी दान करते हैं,
1: जी
0: लेकिन हाँ इन सब में खतरा बस इतना होता है कि आप अपनी इच्छा से ऐसी मुहिम ना चलाएं या कहीं डॉक्टर को कन्विंस ना करें। डॉक्टर जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए
1: जी
0: कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए भी, रक्तदान के लिए भी
1: जी
0: चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे शरीर से इतना सारा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी।
1: जी
0: वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि हमें चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा। तो ब्लड डोनेट करना तो बहुत आम बात हो गई है आजकल, इसमें
1: जी
0: कोई भी खतरा नहीं होता है। बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर वहां पे आपको बिठाते हैं रेस्ट करने के लिए, बाकी आप तो रक्तदान कर सकते हैं। तो अंगदान के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके अंगदान से किसी को जीवन मिले तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए। और अब
1: एक गीत सुनते हैं।
0: तेरे

0: हाँ
1: जी
0: मोबाइल के स्क्रीन पर आप लगातार कुछ देख रहे हैं। किसी श्रोता ने कुछ लिखा है अंगदान के विषय में क्या?
1: हाँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सभी श्रोता।

0: सुधी श्रोता कह सकते हैं, क्योंकि उनको हर विषय में कुछ ना कुछ पता होता है। तो अंगदान के विषय में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, लोगों को मनन करने और अपने अंगों को दान करने के प्रति जागरूक करता है। मानवीय कार्य किसी के परिवार में खुशियां ला सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो इसलिए जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने एक एक कहानी उन्होंने बता रही है कि वो उन्होंने सुनी इंस्टाग्राम पर, 25 साल के गौरव की कहानी, जो ब्रायन दर्द के कारण अपनी जान खो दी उन्होंने, लेकिन अपने सारे अंगों को दान कर दिया और करीब 2 से 2.5 घंटे में उसका जो दिल है उसको अहमदाबाद से शायद गुजरात के सूरत पहुंचाया गया। हम सबको इस कहानी से प्रेरणा नहीं चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबको अंगदान के विषय में सोचना चाहिए। और उस छोटे से बच्चे को भी बहुत सलाम जिसने छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा और जान जाने के बाद भी उनके माता पिता ने अंगदान किया और कम से कम 4-5 जिंदगी बचाकर वो इस दुनिया से गए।
1: क्या बात है, कितनी सजगता की बात है ये। इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और नेहा, जीवन में सुख दुख का सिलसिला तो लगा ही रहता है।
0: जी
1: कहते हैं कि भले ही आप किसी के सुख में शामिल ना हो, लेकिन दुख में साथ जरूर निभाना चाहिए। हालांकि सामाजिक तौर पर कई बड़े, मतलब ये हमें पता नहीं चलता है बड़े मौकों पर कि किसी के शोक में कैसे शामिल हुआ जाए। कई
0: जी
1: बार तो ये भी आता है, लगता है कि बहुत जो नज़दीकी लोग हैं और अचानक अगर इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे ढांढस बंधाए,
0: जी
1: कैसे हम उनके दुख पर फाहा रखें। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और जैसे हम शोक के माहौल में जैसे ही पहुंचते, तो आमतौर पर आदत होती कि क्या हुआ था ये हमें जानना है, तो हम पहुंचकर लगातार बार बार पूछताछ करते रहते हैं। हाँ, सामने वाले व्यक्ति भी आमतौर पर वो चीजें बताते होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो हम बार बार उनसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो इससे क्या होता है, वो उस पल को लगातार उन्होंने बताया होगा आपके पहुंचते तक भी, और बार बार आप उन्हें याद कराते हैं तो मानसिक रूप से वो थक चुके होते हैं कई बार, लेकिन बार बार वो चीजें पूछते रहने से जो शोक में व्यक्ति है वो उससे निकल ही नहीं पाते, कुछ और ज्यादा उसमें गहरा जाते हैं। तो ऐसा करना भी थोड़ा उचित नहीं है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कई बार लोग शोक में जाते हैं और कुछ ही समय में हंसी मजाक करने लगते हैं,
0: हाँ
1: भले ही आप कई दिनों बाद किसी परिचित से मिल रहे हो, लेकिन मौके को देखकर व्यवहार करना सही रहता है।
0: जी
1: अब ये जरूरी नहीं कि आप बेवजह रोते रहें, लेकिन शांति से पास में बैठना, चुपचाप बैठना भी एक तरीका होता है, और एक कंधे पर अपनेपन से भरा हाथ रखना भी आपकी भावना को दर्शा सकता है। आजकल यहाँ, मतलब बड़े शहरों में कहें, महानगरों में आजकल ये परंपरा हो गई कि किसी के विदा होने पर लोगों को ये, मतलब एक तरह से बुलाना ही कहते हैं,
0: जी
1: मैसेज डाल देते हैं, लोग आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाती है,
0: जी
1: चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो लोग वहाँ भी जाकर खाने खाते पीते समय बातें करते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं कि ये पसंद है, वो नहीं पसंद है, अरे ये हम नहीं खाते हैं, फिर वो रेसिपी बताना शुरू हो जाता है कई लोगों
0: जी
1: को हमने देखा। तो ये ठीक नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था लोग इसलिए करते हैं कि बहुत दूर दूर से आप आए हैं और बेचारे खुद नहीं खाते हैं, आपके खाने की व्यवस्था किए, तो
0: जी
1: वहां पर बैठ खड़े होकर मीन मेक निकालना या अपनी पसंद नापसंद जाहिर करना, ये भी ठीक नहीं लगता है।
0: और कई बार ये भी बताने लगते हैं कि भाई वो मेरा जो फलाना दोस्त था, वो जो एक रिश्तेदार था, वो भी ऐसे ही हुआ, उसका ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर विस्तार में उसका बताने लगते। कई बार जो शोक संतप्त परिवार है उसी के सदस्य को बताने लगते, उन्हें भी कई लोगों से मिलना होता है क्योंकि सब उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं और आप उनके दुख को बांटने गए, उनको बढ़ाने तो गए नहीं है, तो ये करने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि इन दिनों बहुत से लोगों की तबीयत खराब रहती है, उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ एक खास डाइट उन्हें फॉलो करनी पड़ती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप वहां जाके हो सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ा दें। आप
1: बिल्कुल।
0: कहेंगे मैं तो ये नहीं खाता, मुझे तो ये चाहिए, या मुझे वो नहीं चाहिए, या मुझे तो अभी 1 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए, मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो इस तरह से अगर जब आप पहुंचते हैं तो कई बार वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी जगह पर फिर आप फोन के जरिए भी उन्हें अपनी भावनाएं बता सकते हैं, और वो यकीन मानिए वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं उस बीच में, अगर आप बाद में भी जाते हैं तो ये ठीक लगता है, बजाय कि आप वहां जाकर अपनी जरूरतों की डिमांड करें कि हमको ऐसे ही रहना है या यहाँ ही बैठना है, तो ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है।
1: बिल्कुल सही बात है। और किसी भी शोकाकुल व्यक्ति के सामने बैठकर ये कहते रहना कि उन्होंने जिस अपने को खोया है, उसे क्या क्या काम बाकी रह गए थे। जैसे परिवार में किसी का विवाह, जन्म जैसी बातों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि इसकी शादी देख लेते या नाती पोता देख लेते तो फिर
0: हाँ
1: जाते, थोड़ा और रुक जाते। ये कहना भी शोक को कम नहीं करता है, बल्कि बढ़ा जरूर देता है। अगर आप ऐसा कहने से पहले ध्यान से सोचें, तो आपको ये भान होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अधूरा छोड़ ही जाता है, पूरा नहीं कर पाता है। और

0: मृत्यु किसी के हाथ में तो नहीं होती है ना,
1: हाँ
0: मृत्यु तो लिखा होता है, जिस दिन जिसको जाना है वो चला ही जाता है। तो ऐसे में ये सब कहना कि अरे क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, पैसे भी ज्यादा छोड़ के नहीं गए, तो ये जो सुन रहा है ना उसके ऊपर और दर्द का पहाड़ आप तोड़ते
1: जी,
0: हैं।
1: उनको और परेशानियां आप बता रहे हैं, उनकी उनकी क्या क्या परेशानियां आप उन्हें और बता रहे हैं कि क्या क्या जीवन में होना है। और कई बार ऐसा होता है, आप गए हैं शोक में शामिल होने के लिए, अपना फोन आप देख रहे हैं या फोन आ रहा है आपको, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि भाई इसके यहाँ पर हम आए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप बताने लगते हैं। तो ज्यादा मत बोलें, बेवजह ना बोलें, जितनी सहायता आप अपने आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, या शोक से भरे जो किस्से हैं कहानियां हैं वो मत सुनाइए, अपने रीति रिवाज मत बताइए। बहुत से लोगों को होता है कि देखिए हमारे यहाँ ये होता नहीं, यही करिए ये कीजिए, तो इस तरह से आप बचिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहे हैं वो तो जरूर बताइए, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आप रहने दीजिए। आप खुद सोचिए कि आप अगर उनकी जगह होंगे तो कौन कौन सा व्यवहार आपको पसंद नहीं आएगा, तो
0: बिल्कुल,
1: उसके बाद आप खुद वो व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ।
0: उस समय तो बस शांत भाव से बैठ जाना
1: जी
0: ही, किसी के कंधे पर हाथ रख देना, सिर पर हाथ रख देना ही बहुत होता है।
1: जी
0: असल में उस समय शब्द कुछ काम नहीं करते हैं।
1: जी
0: जब इंसान दुख में होता है तो शब्दों की कोई अहमियत नहीं रह जाती, बस आपके बर्ताव की अहमियत रहती है कि आप हाथ पकड़ के कह दें कि चलो हम हैं आपके साथ, कोई
1: जी
0: ज़रूरत हो तो बताना, बस इतना ही काफ़ी होता है। और फिलहाल हमें अब चाहिए कि एक गाना सुनवा दें अपने
1: जी
0: श्रोताओं को।

0: ये आकाशदीप फिल्म का गाना था, और इस गाने से पहले नेहा हम लोग बात कर रहे थे कि शोक के मौके पर जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के
1: जी
0: घर जाते हैं, तो किस तरह से शिष्टाचार का ख्याल रखना चाहिए। हमारी एक सखी हैं जो लिख रही हैं कि किसी के यहाँ शोक में जाना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव विषय है, और

0: तमाम सवालों से बचना चाहिए। घर में बच्चे या बूढ़े हों तो उनके खाने पीने के लिए जरूर कुछ लेते जाएं,
1: जी
0: बाकी बातों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उस दिन बस मौन रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका एक सांत्वना भरा हाथ शोकग्रस्त के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें लिखी, जैसे एक साथी लिखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, चुप चुप करके बहुत से लोगों को मैंने, मतलब कहेंगे कि थोड़ा चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जोर से ना करो, लेकिन बातें करते रहते हैं। अगर आप किसी के शोक सभा में गए हैं तो उनके प्रति आपकी संवेदनाएं पूरी हैं, तो वो करें जो परिवार वालों के लिए उस समय होता है, उनके लिए गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर बात है, तो ऐसे हंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो संवेदना है उसे आप दिखाइए शांति से, उनके पास अगर आप बैठते हैं तो ये ठीक रहेगा, बजाय इस तरह से रहना। और एक साथी कहते हैं कि परिवार में निकट रिश्तेदारों के निधन के कारण बहुत बार शोक सभा में जाना हुआ है। जाने से पहले सोचती कि कोई हल्के कलर की या सिंपल सी साड़ी पहनूं, वही पहनकर जाती हूँ, लेकिन वहां जाने पर देखती हूँ कि महिलाएं आजकल फैंसी साड़ियां पहन के आ रही हैं। शोक सभा के दौरान बार बार मोबाइल देख रही हैं, आसपास बैठी महिलाओं से धीरे धीरे बातें कर रही हैं, ऐसा लगता है कि औपचारिकता निभाने के लिए ही वो वहां शामिल हुई हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रिश्तेदारी या आप अपने मिलने वालों के गम और शोक के समय मैं जरूर शामिल होता हूँ शिष्टाचार के साथ। मैं उनकी शादी ब्याह या अन्य फंक्शंस पर शामिल हूँ या ना हो सकूँ किसी भी कारण से, लेकिन किसी भी कारण से मैं शोक में जरूर पहुंचता हूँ।
1: ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बात है कि दुख में आप शामिल हों तो जरूरी है। कई बार हम नहीं जा पाते शादी ब्याह में तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, जब शोक के समय अगर आप नहीं जाते तो उन्हें जरूर याद रहता है कि कौन आया, किसने उनके।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 104 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हो चुके हैं, और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
2: जी
3: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
3: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
2: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से

0: प्रयास कर रहे थे।
1: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
0: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आज़ादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
1: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
0: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कूल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
1: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
0: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
1: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
0: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
1: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
0: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आज़ादी पर ही केंद्रित रहेगी।
0: जी,
1: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
0: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आज़ादी के मूल्य को पहचानें।
2: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
3: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
2: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
4: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कर...

कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया।

0: भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
1: कौन है?
2: मैं हूँ अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
1: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई, कहाँ चले गए थे तुम?
2: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
1: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
2: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
1: ये इस शीशी में क्या है?
2: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
1: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
2: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तो देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
1: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
2: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
3: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
0: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
2: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
2: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले।

0: बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
3: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम शूरवीर।

0: बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी 2 साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा बताओ, हमें क्या करना होगा?
1: आजादी। हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
2: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं
3: सहेंगे। हम तैयार हैं।
0: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
4: गॉड, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
5: यस सर,
4: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
4: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
5: थैंक यू सर,
4: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल।

0: हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
1: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
0: सिपाही,
2: यस सर,
0: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
2: यस सर।
3: Thank you.

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो! अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन!
2: हम तैयार हैं मामा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो अपने अपने घरों में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
3: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
4: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
3: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप कर हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे, फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
3: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
1: हवाले कर दे?
3: यस।
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा।
5: ये क्या हुआ सर?
0: कप्तान के मरते ही

0: वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था? इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूर वीर था। शूर वीर।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर। और आइए सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत, सारे जहां से अच्छा।
2: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत ना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: था। अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ और हमारा आज का विषय है सावन का महीना पवन करे शोर। श्रोताओं नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं सावन का महीना चल रहा है, ये महीना जब भी आता है तो खुशनुमा वातावरण, प्यारी प्यारी हवाएं और साथ साथ चारों ओर हरे बड़े पेड़ पौधे, क्या कहने। आज इसी विषय पर हमारे बहुत सारे लिसनर्स से बातचीत हुई है और साथ साथ हमारे फेसबुक अकाउंट पर भी बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो देखते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो,
1: हेलो,
0: हमारे कौन साहब बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं आप?
1: ये मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहे हैं सर।
0: क्या बात है, तेलंगाना हैदराबाद से बात कर रहे हैं हम?
1: जी सर, आपका प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एआईआर एप पे सुनते हैं सर। हमारा बुटीक से पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और वहाँ बरेली का और अपने यूपी का जितने भी आते हैं वो सुनते रहते हैं।
0: और भी कई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे, जैसे वेब्स ओटीटी, इस पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र से लोग हमारे साथ जुड़े, आकाशवाणी बरेली से जुड़े। तो कैसे लगते हैं आपको हमारे प्रोग्राम मोहम्मद आसिफ जी?
1: सर जी, हमको प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं, इससे काफी अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिलती हैं और अपने यूपी की खास तौर पर न्यूज भी मिल जाती है।
0: क्या बात है।
1: और एफएम रेनबो पे जो भी प्रसारित होते हैं आकाशवाणी बरेली पे या एफएम रेनबो पे, तो उस पर फेक न्यूज नहीं होती है सर
0: जी,
1: जो कुछ होता है एकदम राइट होता है।
0: तो अच्छा लगता है आपको रेडियो सुनना?
1: जी सर, हमको बचपन से पसंद है सर। चलिए, दादाजी के जमाने से हम सुनते आ रहे हैं।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करना। आज का हमारा जो टॉपिक है सावन का महीना पवन करे शोर, ये एक गीत के लाइंस हैं, तो क्या सर कहना चाहेंगे इस विषय पर? सावन का महीना चल रहा है।
1: जी सर, इस विषय पे यही कहना चाहते हैं कि जब सावन आता है तो हमको गाँव की बहुत याद आती है, चारों तरफ हरियाली, नीम के पेड़ पे झूले।
0: क्या बात
1: सर, गाँव की बहुत ही याद आती है, पूरा
0: जी
1: जी, पूरा एरिया पूरा ग्रीन हो जाता है,
0: मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है।
1: मौसम सर इस टाइम थोड़ा कम बारिश हुई है तेलंगाना में सर।
0: जी
1: जी सर, और वो मोर का नाचना मेरे को बहुत पसंद है सर। आवाज इसको सर मिस कर रहे हैं सर।
0: जी जी, क्या बात है। चलिए,
1: सावन की एक अलग ही महीने की वो क्वालिटी है सर।
0: जी बिल्कुल
1: जी सर।
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
1: सर सावन का एक सॉन्ग है, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया सर। सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया आपका।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का हमारा विषय है सावन का महीना, पवन करे जोर। ये कमेंट हमारे पास आया है विष्णु मिस्कीन, रितिका मिस्कीन, वाड़ी मिस्कीन, आरब मिस्कीन, दयानंद कॉलेज भवानी पीठ सोलापुर महाराष्ट्र से। आप कहते हैं कि सावन का महीना पवन करे शोर सिर्फ बारिश और हरियाली का वर्णन नहीं है, सावन प्रकृति के उस रूप का प्रतीक है जब धरती तपिश के बाद बारिश की बूंदों से फिर से जीवंत हो उठती है। सावन हमें सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी गर्मी, परेशानी या कठिनाई क्यों ना आए, बदलाव की बारिश एक दिन जरूर आती है। जैसे सूखी धरती बारिश की बूंदों से खिल उठती है, वैसे ही इंसान का मन भी प्रेम, विश्वास और उम्मीद से फिर से हरा भरा हो सकता है। सावन की पवित्रता यही है कि ये हमें प्रकृति के करीब, भगवान के करीब और अपने भीतर के सुकून के करीब ले जाता है। सावन सिर्फ मौसम नहीं, ये उम्मीद का संदेश है। सूखे मन में भी एक दिन खुशियों की बारिश जरूर होती है। विष्णु मस्किन जी, बहुत ही प्यारा संदेश आपने लिखकर के भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगले कॉलर देखते हैं कि इस वक्त फोन लाइंस पर हमारे साथ कौन है। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार बंधु, कौन बोल रहे हैं और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ भैया जी।
0: क्या बात है बाहुबली जी, जब भी हम आपकी आवाज को सुनते हैं तो हमारा मन मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि जिस
1: तो आपका बड़प्पन है भाई साहब,
0: जिस लयात्मक तरीके से आप बातचीत करते हैं, वो आपके बातचीत करने का अंदाज बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा टॉपिक है सावन का महीना, पवन करे शोर।
1: जी जी जी,
0: क्या कहना चाहेंगे सावन के इस महीने के विषय में?
1: जी, सावन का महीना ऐसा है, सभी की जिंदगी में चैतन्य, उत्साह और बोले तो एक ऊर्जा प्रदान करता है।
0: जी,
1: चारों ओर हरियाली और बारिश के और गर्मी का प्रकोप न होने के वजह से ठंडक, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित और प्रसन्न होकर आनंदित हो जाता है।
0: जी,
1: और ये जो सावन का महीना रहता, इसमें अपने जो भी धार्मिक विधियाँ रहती है
0: जी,
1: उसे भी हम पूर्ण कर लेते हैं।
0: क्या बात है।
1: बहुत बहुत से लोग व्रत, उपवास और शंकर जी की आराधना में अपना समय व्यतीत करते हैं, और जो भी बुरी आदतें हैं, जैसा कुछ नशीली चीजों का सेवन और जो भी सामिश भोजन रहता है उसका वर्जन रहता है, ताकि अपना जीवन शुद्ध हो, विचारों में एक शुद्धता और अपने जो बर्ताव है उसमें थोड़ी सी विनयशीलता निर्मित कैसी हो, यह भूमिका इस सावन के महीने के पीछू है भैया जी।
0: क्या बात, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप इस प्रोग्राम में बाहुबली जी?
1: सावन के दिन आए सजनवा,
0: सुनवाते हैं आपको।

0: ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन्नूर अंसारी कहते हैं कि मेरे लिए सावन का महीना सिर्फ बारिश का मौसम नहीं बल्कि पुरानी यादों मिट्टी की खुशबू और दिल को सुकून देने वाला एक खूबसूरत एहसास है। जब सावन की फुहारें पड़ती हैं और ठंडी हवा पत्तों को छूकर शोर करती है तो मन अनायास ही बचपन की उन प्यारी यादों में खो जाता है। बादलों की गरज बारिश की रिमझिम और चारों तरफ हरियाली देखकर दिल कह उठता है सावन का महीना पवन करे शोर। सावन आते ही जैसे फिजा में एक नई रौनक आ जाती है और दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। यही वजह है कि मेरे लिए सावन महज एक मौसम नहीं बल्कि यादों और एहसासों का खूबसूरत सफर है। बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुन्नूर अंसारी। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी मैं नाज रेडियो क्लब ग्राम करेली जिला बरेली से निसार अहमद अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ और काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि सावन के महीने में मेरी आपकी बात आकाशवाणी बरेली के साथ में बात हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी अरसे के बाद मेरी आज बात हुई।
0: जी बिल्कुल, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी आपसे बातचीत हो रही है क्योंकि आप हमारे परमानेंट लिसनर हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं आप अक्सर हमारे केंद्र पर भेजते रहते हैं और साथ साथ हमारे प्रोग्रामों को भी सुनते हैं, है ना?
1: जी बिल्कुल, आपके केंद्र से जितने भी प्रोग्राम आते हैं सारे प्रोग्रामों को मैं सुनता हूँ और सुनता नहीं हूँ, अपनी दिल की बात आप तक जरूर पहुँचाता हूँ आपके पत्रमिला कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि जो कमियाँ होती हैं वो भी मैं बताता हूँ और जो अच्छा लगता है वो भी मैं आप तक पहुँचाता हूँ।
0: जी बिल्कुल, और आज हमारा जो विषय है सावन का महीना पवन करे शोर, क्या कहना चाहेंगे इस सावन के महीने के लिए?
1: जी बिल्कुल, सावन का महीना तो प्यार और बारिश का मौसम है सर, बारिश और प्यार का महीना सावन है। इसमें क्या कहते हैं, हरियाली और झमाझम बारिश प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती है।

0: सावन का महीना, मानसून का मजा लेने के लिए चाय और पकौड़े खा जाए तो सावन के महीने में और मजा आते हैं सर।
1: बिल्कुल।
0: और इसी सावन के महीने में कांवड़ यात्रा भी निकलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि बहुत सारे हमारे त्योहार भी इस महीने में होते हैं, और जब भी सावन का महीना आता है तो प्रकृति अपना रूप पूरी तरीके से बदल देती है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और वो पुरानी यादें, हम देखते हैं कि इस बार तो इतनी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अब से 2-3 दशक पीछे अगर हम जाते हैं तो जब बारिश का महीना हुआ करता था, सावन का महीना हुआ करता था, बरसात होती थी तो कितना अच्छा लगता था पानी में भीगना।
0: अच्छा लगता था। अब तो सर अब देखने को नहीं मिलता है। मैंने देखा जब सावन का महीना शुरू होता था तो जगह जगह झूले पड़ जाते थे।
1: जी बिल्कुल
0: जी, लोग झूलते थे और पता चलता था कि सावन का महीना शुरू हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या कहना चाहेंगे आप?
0: कार्यक्रम काफी अच्छे चल रहे हैं आपके केंद्र से, और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक गीत सुनना चाहूंगा।
1: जी।
0: और फिल्म है मिलन, यही गीत है सावन का महीना पवन करे शोर।
1: क्या बात, आज का जो हमारा टॉपिक है सावन का महीना पवन करे शोर, वो इसी फिल्म का गीत है। ये फिल्म तो आपने देखी होगी?
0: जी, काफी खूबसूरत फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म लगी है। आज टॉपिक भी हमारा सावन के ऊपर है, तो गीत भी सावन के ऊपर हो तो और चार चांद लग जाएंगे कार्यक्रम में।
1: सुनवाते हैं आपको ये।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जिया।

0: श्रोता 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये कमेंट हमारे पास आया कटर चंद खां पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य का। आप कहते हैं कि सावन का महीना पवन करे शोर, हरियाली और नवजीवन। सावन का महीना प्रकृति के सौंदर्य, ताजगी और पुनर्जन्म का प्रतीक है। जैसे सूखी धरती बारिश की बूंद से खिल उठती है, इस दौरान वर्षा से धरती हरी भरी हो जाती है, नदियां जल से भर जाती हैं और चारों तरफ नया जीवन उमड़ पड़ता है और पेड़ पौधे लहराते झूमते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका जमुना प्रसाद मौर्य जी। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर, मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ, ग्राम श्रीनगर संपतपुर तहसील लाहौला जिला बरेली से।
0: नमस्कार, आज का टॉपिक आपको मालूम है?
1: जी सर।
0: क्या है?
1: सावन का महीना पवन करे शोर।
0: क्या कहना चाहेंगे
1: सर? मैं यही कहना चाहूँगा सर, सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जब भी बारिश होती है तो मन में एक हलचल सी होती है, खुशी जाहिर होती है, और इसी को सर कहते हैं सावन का महीना पवन करे शोर।
0: मिलन फिल्म का ये गीत है, सावन का महीना पवन करे शोर, मनवा ऐसे झूमे जैसे बन में नाचे मोर। फिल्म देखी है आपने? ये
1: सर फिल्म नहीं देखी है सर, गीत सुना है सर।
0: जी जी, इसमें जो गीत होता है तो सुनील दत्त और नूतन पर फिल्माया गया है ये गीत, और बहुत ही प्यारी फिल्म थी मिलन। तो अच्छा लगता है सावन का महीना आपको?
1: जी सर, बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ हरियाली रहती है और घने घने बादल छाए रहते हैं, बहुत ही सुहाना मौसम लगता है सर।
0: जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम में?
1: सर फिल्म का नाम है एक हिंदुस्तानी और गीत के बोल है, मोहब्बत तो हम छोड़ते, मोहब्बत हमें छोड़ती ही नहीं।
0: सुनवाते हैं।

फरीदपुर से ये कमेंट हमें भेजा है असद रज़ा, हसरत रज़ा, वसीम रज़ा, साहिल रज़ा और इनके सभी साथियों ने। आप कहते हैं कि सावन एक महीना ही नहीं बल्कि दिलों में उमंग और उत्साह देने वाला महीना है। इस महीने में हर जगह हरियाली हरियाली ही नज़र आती है और खूबसूरती प्राकृतिक रूप लिए हुए अलग ही दिखती है। ये मौसम बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही लुभावना लगता है। वाकई में सावन का जो महीना है, पेड़ पौधे अपना रंग बदल देते हैं, चारों ओर हरियाली छाई हुई नज़र आती है और साथ साथ जो हवाएं हैं वो भी बड़ा सुरमई हो जाती हैं। जब पेड़ों से लहर टकरा करके जब वो हम तक पहुंचती हैं तो उनकी सुगंध हमारे मन को और मोहक कर देती है। बहुत शुक्रिया आपका, और देखते हैं कि हमारे अगले

0: कॉलर कौन है? हेलो,
1: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
0: हो रही है साहब? आप कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी, मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद, जिला करेली से बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपका बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और आज का हमारा विषय है सावन का महीना, पवन करे शोर। क्या
1: जी,
0: कहेंगे
1: क्योंकि
0: सावन के महीने
1: सावन
0: के बारे में?
1: जी सावन चल रहा है और सावन के महीने में जो पवन शोर करता है और चारों तरफ भीगा भीगा मौसम होता है, तो सावन का एक अलग ही महत्व बन जाता है सर। क्योंकि ये पवन शोर करता है, रात को जो हवाएं चलती हैं, दिन को हवाएं चलती हैं, और तमाम जो पतंगे होते हैं वो इसी महीने में मतलब निकल के आते हैं। कहते नहीं है कि कुछ लोग कहे, ये भी कहा जाता है कि ये तो बरसाती मेंढक है। मेंढक को भी ट्रक की आवाज आती है, वो बहुत सुहानी लगती है, खासतौर से रात के वक्त जब सन्नाटा होता है, खेतों में मेंढक बोलते हैं तो उनकी आवाज और भी मतलब एक सावन के महीने में चार चांद लगा देती है।
0: क्या बात है, वाकई में ये मौसम बारिश का मौसम है और बारिश में भीगना, माटी की सोंधी सोंधी खुशबू बड़ा अच्छा आनंद देती है हमें, है ना।
1: जी
0: और
1: सर, क्योंकि
0: प्रकृति अपना पूरा रंग बदल देती है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है, पेड़ पौधे सब हरे भरे हमारे और मन को मोहते हैं, है ना।
1: इंसानों के अलावा जो चरेंद और परिंद है, पेड़ बूटे हैं, सभी को बारिश का इंतजार रहता है और सभी जो बारिश होती है सभी उसमें झूम झूम कर अपनी मस्ती का इजहार करते हैं सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं कि इस महीने में बहुत सारे त्योहार भी होते हैं, जैसे रक्षाबंधन है, नाग पंचमी है आपका।
1: जी, क्योंकि अब कल के बाद परसों हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, 15 अगस्त आजादी का जश्न हम मनाएंगे, और उसी दिन एक और भी इसमें खास त्योहार है जिसे तीज का त्योहार बोलते हैं। उस दिन झूले पड़ते हैं, हमारी माँ और बहनें झूले डालती हैं और बहुत अच्छे पकवानों के साथ झूला झूलती हैं और बहुत अच्छे अच्छे गीतों को गाती हैं, तो ये दिन अपने आप में और मतलब सुहाना हो जाता है। क्योंकि एक ही दिन में दो त्योहार, एक राष्ट्रीय त्योहार, एक हमारा त्योहार, तो ये और भी अच्छा मतलब एक सहयोग हो गया सर।
0: और साथ में कहते हैं कि कांवड़ यात्री जो होते हैं वो गंगा जी से जल लेने के लिए जाते हैं, ताकि वो अपने इष्ट देव, अपने भगवान भगवान
1: हाँ
0: शिव
1: जी, ये
0: पर
1: तो
0: वो जल
1: सिलसिला
0: अर्पण कर
1: पूरा महीना
0: सकें।
1: जारी रहता है और उनके चलते चलते पूरे रोड पे जो है वो चहल पहल रहती है, बहुत खुशनुमा मौसम होता है, बहुत अच्छा लगता है, बमबोले की आवाज भी गूंजती रहती है रोडों पे और एक बहुत ही अलग माहौल बन जाता है।
0: जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके लाल मोहम्मद अंसारी जी। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
1: गीत सुनवा दीजिए, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में बारिश के गीत ना हो, क्योंकि सावन का महीना पवन करे शोर, और शोर नहीं हो तो फिर भागा क्या, फिल्म का नाम है मोहरा,
0: जी
1: उसका एक गाना है कितनी बरसा पानी, क्योंकि पानी भी कितनी बरस रहा है, अच्छा लग रहा है। भले ही वक्ती तौर पर कुछ गर्मी ज्यादा पड़ जाती है लेकिन मौसम भीगा भीगा पानी का है, तो पानी कहीं ना कहीं अपना असर दिखाता जरूर है सर।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं धारा से बोल रही हूँ। सिंधी
0: शमी, क्या करती हैं आप?
1: उसी को घर पर रहती हूँ।
0: अच्छा, घर पे काम काज करती हैं, अपनी माँ का हाथ बटाती हैं, है ना?
1: जी,
0: आज हमारा जो विषय है, सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगी इस महीने के बारे में?
1: हम इस महीने के बारे में ये कहना चाहते हैं, ये महीना एक साल में आता है और अच्छा लगता है। और इस महीने में जो कलर चलते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, साड़ियाँ पहनते हैं, सब अच्छे लगते हैं। मौसम भी अच्छा रहता है।
0: पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं,
1: हाँ, पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, हरे भरे हो जाते हैं।
0: मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है, टिप टिप करके पानी बरसता है ना? सावन के महीने में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो मन को बड़ा अच्छा लगता है इस महीने में, है ना?
1: जी, मन को बिल्कुल शांति सी मिलती है, अच्छा लगता है।
0: हरियाली तीज का त्योहार भी इसी महीने में आता है ना? हरी चूड़ियां
1: हाँ,
0: पहनती हैं, हरी साड़ी पहनती हैं, पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं। कभी झूला झूला है आपने?
1: नहीं, झूला नहीं झूला, डर लगता है।
0: अच्छा, क्यों डर लगता है?
1: डर लगता है झूला झूलते तो।
0: अच्छा
1: मैं नहीं झूलती हूँ, मैं नहीं झूला।
0: चलो, अच्छा गीत बता दो फिर, कौन सा सुनोगी?
1: गुमराह बिस्तर का गीत सुनना, दुनिया कितना दौर खुदा दुश्मन हो जाए तो क्या।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: है तो कुछ मतलब खास यादें लेके आता है सर।
1: जैसे कि
0: बचपन की सर, बचपन में जो झूले करते थे सर, और फिर हरियाली और जो खेल कूद थे बचपन के, वो याद आती है सर।
1: इस महीने में मौसम बड़ा सुहावना होता है, टिप टिप करके पानी बरसता होता
0: बहुत
1: है
0: सुहाना होता है मौसम सर।
1: और जो माटी की खुशबू है वो सोंधी सोंधी हो जाती
0: जी
1: है ना, क्योंकि जो प्यारी प्यारी हवाएं चलती हैं उस हवाओं से टकराकर जो हवा और पानी के माध्यम से जो माटी की सुगंध है वो एक अलग ही आनंद देती है ना। तो वो दिन देखे हैं आपने सावन के,
0: जी हाँ देखे सर।
1: अब बारिश क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है उसका?
0: सर ये कारण तो पता नहीं, मगर सर बारिश हाँ कुछ कम हो रही है, पहले सावन में बहुत बारिश होती थी सर।
1: 15-15, 20-20 दिन तक सूरज को देखने को नहीं मिलता था और बारिश
0: जी,
1: कंटिन्यू होती रहा करती
0: हल्की
1: थी।
0: हल्की फुहारे झर लग जाते थे सर।
1: सावन के महीने में कभी आप बारिश में नहाए हैं?
0: जी हाँ।
1: अच्छा, कैसा महसूस करते थे उस वक्त आप?
0: जी बहुत अच्छा महसूस होता है सर। सावन में तो सर बारिश पड़ती है तो अब भी नहा लेते हैं, मगर जो बचपन में था पहले निकल गए बाहर जंगल की तरफ नहाने के लिए सर। जी वो यादें हैं सर कुछ।
1: बहुत अच्छा लगता था है?
0: जी
1: कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
0: सर आज सुना दीजिए सावन कुछ कहता है,
1: सुनवाते हैं
0: मेरा गांव मेरा देश मूवी का
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: श्रोताओं, हमें खेद है, कभी कभी चलते हुए प्रोग्राम में तकनीकी व्यवधान आ जाते हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ और देखते हैं कि ये हमारा कौन से श्रोता हैं जिनका ये कमेंट हमारे पास आया है। कटाचंद खां पुराने शहर बरेली मौर्य मंदिर से आप हैं मुकेश मौर्य, पुष्पा मौर्य। आप कहते हैं कि सावन की बूंदें जब धरती को छुएं, सूखी धरा भी खुशबू से महके हुए, काली घटाएं आसमां में छाने लगें, मस्त हवाएं नए गीत गाने लगीं, पेड़ों की डालियों पर सावन के झूले, कुदरत का ये रूप देख सब गम भूले। सावन के महीने में हर जगह बहार आ जाती है, पूछते जयकारे हर हर महादेव, सड़कों पर रंग बिरंगी कांवड़ देख कर मन भावुक हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हैं हमारे मुकेश मौर्य और पुष्पा मौर्य जी, और ये कमेंट हमारे पास आया है रामबाबू मिश्रा का। आप कहते हैं कि अगर पुरानी यादें देखें तो सावन के महीने में आम व नीम के पेड़ पर झूला झूलते, बारिश हो रही, भीग रहे, चारों तरफ हरियाली, कहीं सावन गीत महिलाएं गा रही, कहीं रामायण सुनाई जाती थी, लेकिन आज तो बस सिर्फ और सिर्फ यादें ही बची हैं। और इसी तरह अगर आगे भी पेड़ों की कटाई होती रही तो सावन सावन महीना न रहकर बैसाख का महीना बन जाएगा। पीने को पानी नहीं मिलेगा, बैठने को छांव भी नहीं मिलेगी। अगर सावन को बचाना है तो कसम लो पेड़ पौधों को लगाना है, तभी सावन का आनंद मिलेगा। आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत बधाई। आप हैं पोस्ट गोठा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा व कृष्णा देवी। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया कि हमें पेड़ पौधों को लगाना है, तभी हम ये जो जीवन है, सुंदर जीवन, इसका हम आनंद ले पाएंगे। और साथ साथ जो सावन है, जो आज हम देखते हैं कि सावन के महीने में बारिश कम हो रही है, उसका कहीं ना कहीं कारण हम आप भी हैं कि हम पेड़ पौधों का कटान कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हमें पेड़ पौधों को लगाना है और साथ साथ उसका संरक्षण भी करना है। देखते हैं कि हमारे ये आखिरी कॉलर कौन है। हेलो
1: जी, बोलिए।
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी मुन्ना सैफी बोल रहा हूँ, जिला बरेली उत्तर प्रदेश से।
0: चौधरी, क्या करते हैं मुन्ना सैफी साहब?
1: जी मेरा टेलरिंग का काम है, टेलरिंग की शॉप है।
0: पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत?
1: हाँ।
0: हमारा आज का जो टॉपिक है, सावन का महीना पवन करे शोर, क्या कहना चाहेंगे सावन के बारे में?
1: सावन का महीना तो बहुत अच्छा चल रहा है सर, इस समय सब कुछ अच्छा हो जाता है, हरा
0: भरा
1: जी, कांवड़िए निकलते हैं, उनको देख के भी खुशी होती है, सब अच्छा है, मतलब बढ़िया लगता है।
0: सावन के महीने में बरसात होती है, माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाता है और
1: भरा भरा मौसम हो जाता है,
0: और गर्मी से भी राहत मिलती है ना?
1: गर्मी से भी राहत मिलती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं,
0: पशु पक्षी जो हैं वो भी बड़ा प्रफुल्लित हो जाते हैं,
1: उनको भी राहत मिलती है।
0: राहत भी मिलती है और अच्छा लगता है।
1: इतना चल रहा है बहुत ज्यादा
0: जी। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
1: तू मेरा दिल।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, शाम के 5 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम विवरण का। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी इस सभा की शेष और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। नारी संसार का समय रहेगा आज शाम 5:30 पर। इसमें चर्चा सुनेंगे आप ऑनलाइन पढ़ाई के स्मार्ट तरीके। साथ ही चर्चा होगी बच्चों में पढ़ाई की आदत कैसे बढ़ाएं, हेल्थ टिप्स और इनसे मिलिए। आज शाम 6 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी कुछ खास है आज, और साथ में आपकी पसंद और ओबीवी आप सुनेंगे। 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसानवाड़ी। आज की बात होगी नमो दीदी ड्रोन योजना पर। साथ ही कृषि गोष्ठी, सरकारी कृषि योजनाएं किसानों के लिए कितनी लाभकारी। प्रतिभागी होंगे श्री टीकाराम, श्री भानु प्रताप, श्री संजय और संचालन करेंगे हेडलपाल सिंह। साथ ही होगा बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, सवाल नसीहत और प्यारे प्यारे लोकगीत। ग्राम जगत का समय रहेगा आज शाम 7:00। इसमें चर्चा सुनेंगे आत्मनिर्भर कैसे बने। साथ ही आपको एक वार्ता सुनवाएंगे और लोकगीत का भी आप आनंद ले सकेंगे। अपने पत्रों पर आधारित पसंद के गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे अनुरोध गीत आज शाम 7:31 पर। और श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में 5:05 पर आप आनंद ले सकेंगे भजन संध्या का। श्रोताओं, अब एक नजर कल की सभा में हमारे केंद्र से रिलेवा प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे वीकली प्रोग्राम फिल्मी फ्राइडे गजेंद्र सिंह के साथ। अपराह्न 3:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आपकी पसंद का आप आनंद ले सकेंगे कल सुबह 10:00। पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे कल दोपहर 1:00। लोकगीत आप सुनेंगे कल प्रातः 8:45 पर। सबरंग सुनिएगा कल सुबह 11:00। रसरंग में गजल, कव्वाली और लोकगीत आप सुनेंगे कल अपराह्न 2:00। आपकी बात आकाशवाणी के साथ कल शाम 4:00। लकी 3 आप सुन सकेंगे कल शाम 5:30 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को आप सुनेंगे कल प्रातः 9:00, 2:30 पर और रात्रि 9:00 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। FM रेनबो के कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 11:30 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कल शाम 5:45 पर आप सुनेंगे कला में शायर। शाम 6:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी कुछ खास है आज, वो भी और नजराना ये शाम। ग्राम जगत का समय रहेगा कल शाम 6:30 पर। इसमें चर्चा होगी ग्राम पंचायत सशक्तिकरण पर। साथ ही काव्य पाठ भी आप सुनेंगे देशभक्ति पर श्री राजकुमार अग्रवाल से, और साथ में होंगे लोकगीत। कल शाम 7:00 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का देश की जनता के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अनुरोध गीत आप सुनेंगे कल शाम

7:31 पर, और रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी हमारी इस सभा की शेष, और कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

श्रोताओं आइए अब सुनते हैं भजन संध्या। भजन संध्या में ये पहला भजन अनुप जलोटा व साथियों की आवाज में।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

अनूप जलोटा के स्वर में आपने सुना ये भजन। श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप आनंद ले रहे हैं भजन संध्या का। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ के स्वर में ये भजन।

0: 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अनुप जलोटा के स्वर में ये भजन।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे अनुप जलोटा के स्वर में ये भजन, और इसी के साथ भजन संध्या यहीं पर संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है स्वदेश 104 FM पर, और श्रोताओं आप सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम नारी संसार नूर फातिमा के साथ।

0: नारी संसार सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने संसार यानी नारी संसार में। सभी प्यारी प्यारी और स्मार्ट सखियों का बहुत बहुत खैर मकदम है। जी हाँ सखियों, अब हमारी सखियां सोचती होंगी कि आते ही मैंने उन्हें स्मार्ट बोलना क्यों शुरू कर दिया। अरे भाई, आजकल हमारी सखियां हर काम इतनी स्मार्ट तरीके से कर रही हैं, घर हो या ऑफिस, खाना बनाना हो या बच्चों की पढ़ाई, हर काम वक्त में बेहतर तरीके से करने के स्मार्ट उपाय जो अपना रही हैं। जब हर काम स्मार्ट है तो फिर पढ़ाई भी स्मार्ट हो गई है। अब किताबों के साथ मोबाइल है, क्लासरूम के साथ ऑनलाइन क्लासरूम है, लेकिन सोचना ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से कैसे करें। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक स्टडी प्लान बनाइए। पूरे सिलेबस को एक साथ देखने के बजाय छोटे छोटे टारगेट्स तय कीजिए। पढ़ाई के समय मोबाइल को लर्निंग टूल बनाइए। अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आप बंद कर दीजिए ताकि बार बार ध्यान नहीं भटके, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके आप छोटे छोटे नोट्स बनाकर अपने वर्ड्स में रख लीजिए। इससे रिविज़न आसान होगा और चीज़ें बेहतर तरीके से याद रह जाएंगी। और हाँ, लगातार स्क्रीन के सामने बैठना भी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेती रहें, आँखों और दिमाग को इससे काफ़ी आराम मिलता है। तो आज से ऑनलाइन पढ़ाई को स्क्रीन टाइम नहीं, अपना स्मार्ट लर्निंग टाइम बनाइए। और हाँ, थोड़ी सी स्मार्ट और बन जाइए। आप अपनी पसंद के गीत, अपनी कमेंट हमें भेजिए। और जो हमारी सखियाँ और भाई अपनी स्मार्टनेस दिखा चुके हैं उनके कमेंट हमारे पास आ चुके हैं। और ये जो फरमाइश है ये आई है हमारे पास ग्राम दोलहापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू राजपाल, काजल मानवी, लक्ष्य मोहिनी, बलवीर सिंह की तरफ से। और इस गीत को ही सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से। शेषमणि यादव, सनी, मनीष कुमार, भूपेंद्र, प्रवेश, सचिन, मनोज, अरुण, हिमांशु, हितेश और इनका पूरा परिवार। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास भेजी है ग्राम करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नूर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी। कटरा चांदगा पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य ने इसी गीत को सुनना चाहा है। कटरा चांदगा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत। और जो सखियां अभी सुन रही हैं वो भी थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएं और अपनी पसंद और अपने कमेंट्स हमारे पास भेजें।
1: पहले आई पहले जन्मी है जहां पे कला अपना भा

0: सखियो, आज़ादी सिर्फ सरहदों की हिफाजत या गुलामी से आज़ादी का नाम नहीं। आज़ादी की असली सीमा वहाँ तक है जहाँ हर इंसान को अपने अधिकारों के साथ सम्मान और बराबरी से जीने का हक मिले। तो आइए आज़ादी के इसी मायने को समझते हैं और जानते हैं हसीन जहरा जी से। वो दे रही हैं इस विषय पर जानकारी। विषय है आज़ादी की सीमा कहाँ तक।
1: राम राम प्रणाम हमारी गांव ज्वार की सभी सयानी सजीली और मेहनती बहनों को सादर प्रणाम। बहनों आज चूल्हा चौका संभालते हुए खेत खलियान का काम करते हुए या गाय भैंस को चारा डालते हुए जरा कान रेडियो की तरफ लगाइए। आज हम बहुत ही पते की बात करने वाले हैं। एक ऐसा शब्द जो हम रोज सुनते हैं लेकिन उसके सही मायने क्या हैं। बहनों जब भी रेडियो या टीवी पर आज़ादी शब्द गूंजता है तो हमें लगता है कि ये तो देश की आज़ादी की बात हो रही है जो हमें सालों पहले अंग्रेज़ों से मिली थी। लेकिन आज हम जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं वो हमारे घर, हमारे गांव और हमारी अपनी ज़िंदगी की आज़ादी। ज़रा सोचिए, एक ग्रामीण महिला के लिए आज़ादी क्या है। क्या सुबह की पहली चाय बिना किसी रोक टोक के सुकून से पीने की आज़ादी। क्या घर के घूंघट से निकलकर पंचायत की दरी पर बैठकर अपनी बात मजबूती से रखने की आज़ादी। या फिर अपनी मेहनत की कमाई जो अपने दूध बेचकर या सिलाई कढ़ाई करके कमाई है उसे अपनी मर्जी अपने बच्चों पर खर्च करने की आज़ादी। हाँ बहनों, यही असली आज़ादी है।

आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम शहर की चकाचौंध में बह जाएं। आज़ादी का मतलब है अपनी मर्जी से जीना, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, अपने घर परिवार के बड़े फैसलों में अपनी राय रख पाना। जब एक औरत पढ़ी लिखी होती है, स्वस्थ होती है और अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है, तो समझो वो सही मायने में आज़ाद।

0: समझो वो सही मायने में आजाद है। लेकिन बहनों, जैसे ही गांव में किसी लड़की या बहू को थोड़ी छूट मिलती है तो चौपाल पर बैठ चार लोग कहने लगते हैं, अरे फलाने की बहू तो अब हाथ से निकल गई, इससे इतनी आजादी मत दो। अपने गांव की गलियों में ऐसी बातें जरूर सुनी होंगी। तो चलिए आज मिलकर ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि क्या आजादी की कोई सीमा होनी चाहिए। इसको हमारे अपने गांव के जीवन जोड़कर देखते हैं। हम सब खेतों में काम करते हैं, हम अपने खेत के चारों तरफ मेड़ बनाते हैं या कटीले तार लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्या तो मेड़ हमारी फसल को कैद करने के लिए होती है? बिल्कुल नहीं, वो मेड़ हमारी फसल की रक्षा करती है ताकि बाहर की मवेशी आकर उसे चर ना जाए, उसे बर्बाद ना कर दे। ठीक इसी तरह इंसान की आज़ादी के लिए भी कुछ नियम और सीमाएं होती हैं। हमारी आज़ादी की सबसे बड़ी सीमा यह है कि हमारी आज़ादी वही ख़त्म हो जाती है जहां से किसी दूसरे की परेशानी या तकलीफ शुरू होती है। बहनों, आज का दौर बदल रहा है। हमारे गांव की बहनें अब सिर्फ चौके चूल्हे तक सीमित नहीं हैं। कोई आंगनबाड़ी दीदी बनकर पूरे गांव के बच्चों की सेहत सुधार रही है, तो कोई स्वयं सहायता समूह से जोड़कर बैंक से लोन ले रही है और खुद को रोजगार चला रही है। आज तो हमारी कई बहनें सरपंच हैं और मुखिया बनकर पूरे गांव का फैसला कर रही हैं। बोलने की आज़ादी सीमा, आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है। आज अगर समाज में या घर में कुछ गलत हो रहा है तो बेझिझक बोलिए, लेकिन इसको सीमा ये है कि हमारी भाषा में कड़वाहट या गाली गलौज ना हो। हम किसी को अपमान ना करें बल्कि अपनी बातों को तर्क और मर्यादा के साथ रखें। फैसला लेने की आज़ादी की सीमा, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य का फैसला करने की आज़ादी मिली है तो उसकी सीमा ये है कि आप बेटा और बेटे का फर्क नहीं करेंगी। पैसे कमाने लगती हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन इस आज़ादी की सीमा यह है कि उससे पैसे का सही उपयोग, परिवार की तरक्की, बच्चों की अच्छी शिक्षा और बीमारी के समय स्वस्थ पर होना, ना कि दिखावे और फिजूल खर्ची में। सच्ची आज़ादी वो है जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, कमज़ोर नहीं। अगर कोई आपको पढ़ने से रोके तो उसके खिलाफ खड़ा होना आपकी आज़ादी है। अगर घर की बंद दीवारों के पीछे कोई आपके साथ मारपीट या घरेलू हिंसा करे तो चुप रहने के बजाय कानून की मदद लेना आपकी आज़ादी है। अपनी लाज, शर्म और मर्यादा को बजाते हुए घूंघट जैसी दकियानूसी कुरीतियों के पीछे छोड़ देना ही आपकी सही सीमा है। घूंघट का मतलब है बड़ों का सम्मान होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन अगर वही घूंघट इतना बड़ा हो जाए कि औरतों को सामने का रास्ता ना दिखे, वही प्रगति की दौड़ में पीछे छूट जाती, तो ऐसी रूढ़वादिता को बदलना ही सच्ची स्वतंत्रता है। हमारी संस्कृति हमारा गौरव है, लेकिन कुप्रथाएं हमारी बेड़ियां हैं, तो हमें बेड़ियों को तोड़ना है, गौरव को नहीं। तो बहनों, आज ही से अपने अधिकारों को पहचानिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी कभी मत भूलिए।
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी जानकारी जिसका विषय था आज़ादी की सीमा कहाँ तक, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी हसीन जहरा।

0: इनसे मिले सेगमेंट में आज हम पहुंच गए हैं अपनी सखियों के बीच, उनसे मिलने, उनसे बातें करने और उनकी जिंदगी के कुछ खूबसूरत रंगों को करीब से जानने के लिए, क्योंकि आने वाला 15 अगस्त अपने साथ दो बेहद खास एहसास लेकर आ रहा है। एक तरफ इंडिपेंडेंस डे है जो हमें आजादी की उस कीमत और जिम्मेदारी की याद दिलाता है, और दूसरी तरफ हरियाली तीज जो हमारी संस्कृति, परंपराओं, रिश्तों और त्योहारों की खूबसूरत विरासत से हमें जोड़ती है। तो आज की इस मुलाकात में हम जानेंगे कि आजादी इनके लिए क्या मायने रखती है। एक महिला के रूप में अपने फैसले लेने, अपने सपनों को पूरा करने और अपनी पहचान बनाने की आजादी को ये किस तरह देखती हैं? आजादी के जज्बे अपनी मिट्टी की खुशबू को साथ लेकर आइए आगे बढ़ते हैं।
1: तो मेरे सामने एक सखी दिख रही हैं, हाथों में इनके बहुत सारी चूड़ियां हैं जिन्हें खनका रही हैं, माथे पे बड़ी सी बिंदी है और हरी ही साड़ी, और यही वजह है कि मैं एकदम से इनकी तरफ मुड़ गई। इन्हें देखकर ये लग रहा है कि बस ये सही तो आज से ही हरियाली तीज की तैयारियों में मशगूल हो गई हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे।
2: नमस्कार, मेरा नाम पूर्णिमा शर्मा है।
1: पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा लगा, आपका नाम भी बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है। जैसे कि आपकी ड्रेस है तो वो भी बड़ी सुंदर लग रही है मुझे, क्योंकि हरी हरी है और जो आंखों को बहुत ज्यादा ही बहुत ही खुशनुमा एहसास दे रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाली तीज आज ही हो रही है। बात जब हरियाली की हो तो हरियाली तीज का नाम आते ही झूले, मेहंदी और सखियों की महफिल भी याद आती है ना, तो आपके लिए तीज का सबसे खास हिस्सा क्या है?
2: देखिए, मेरे लिए तो सबसे खास ये है कि परिवार की खुशियों के साथ हम मनाएं, त्योहारों की मेहंदी लगाएं, झूला झूलें और तीज के गीत गाएं। और गाना तो वैसे अपनी जगह है ही, लेकिन सबसे खूबसूरत बात, इस बहाने हम एक दूसरे के करीब आते हैं और इस तरह रिश्तों में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे से पहचान पड़ती है।
1: इस बार हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन है, तो आपके घर में इन दोनों खास मौकों को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं?
2: इस बार तो दोनों मौकों का कॉम्बिनेशन बहुत खास है। एक तरफ तो तीज की तैयारियों में हम लोग लगे हैं, जैसे मेहंदी, पूजा, ट्रेडिशनल कपड़ों की। तरफ इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, उसको लेकर देशभक्ति का जज्बा है। हम लोगों को बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा सजाना, उन्हें आजादी की अहमियत बताना, ये सब हमारी तैयारी का हिस्सा है।
1: आप होम मेकर हैं तो घर परिवार की इतनी जिम्मेदारियां संभालती हैं, तो आपके लिए आजादी का असली मतलब?
2: ये ऐसा है कि मेरे लिए आजादी का मतलब सिर्फ हम ये नहीं है कि घर से बाहर जा रहे हैं वो फ्रीडम हमारी आजादी है, ऐसा नहीं है। हमें अपने फैसले, आजादी, अपनी बात सबके सामने खुलकर रखने का हक और अपने सपनों को पूरा करने का मौका, यही असली आजादी है। और जब परिवार की महिला को सम्मान मिलता है तो मुझे लगता है कि सच्ची आजादी है।
1: क्या आपको लगता है कि आज की महिलाओं को अपने फैसले लेने और अपनी पसंद नापसंद को लेकर पहले से ज्यादा आजादी मिली है?
2: जी, ये बात तो सही है आपकी। पहले से तो काफी बदलाव आया है। आज महिलाएं एजुकेशन, देखिए कैरियर और अपने पर्सनल डिसीजन को लेकर ज्यादा ही अवेयर हैं और कॉन्फिडेंट रहती हैं। लेकिन अभी भी हमें कोशिश करनी है कि हर लड़की और हर महिला को हम उसकी बराबरी का सम्मान और उसको फैसले

0: करने का अवसर दें।
1: पूर्णिमा जी, आखिर में तीज की खुशियों और देश की आजादी, इन दोनों को मिलाकर अगर आप हमारी नारी संसार सुनने वाली सखियों से कुछ कहना चाहें तो क्या कहें?
0: मैं तो नारी संसार की सभी सखियों से यही कहना चाहूंगी कि तीज की खुशियों को पूरे उत्साह से मनाएं, साथ ही अपने देश की आजादी की कीमत को भी समझें। जैसे हम रिश्तों में प्यार और सम्मान चाहते हैं, वैसे ही समाज में हर महिला को सम्मान, बराबरी का हक मिलना चाहिए। तीज पर आप अपनी खुशियां बांटें लोगों में और अपने भीतर आत्मनिर्भरता का कॉन्फिडेंस संकल्प भी लें। मैं सभी सखियों को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और साथ ही हम अपना स्वतंत्रता दिवस जो मनाएंगे उसके लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मैडम, सखी इस वक्त हमारे साथ एक सखी मौजूद है और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान इनके फेस पर आई हुई है और यही वजह है कि मैं फौरन ही इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई हूँ। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी।
2: जी नमस्कार मैम, मेरा नाम तनप्रीत कौर है।
1: क्या करती हैं आप?
2: मैम मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की मददगार बनी हुई हैं और इस बार 15 अगस्त कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। एक तरफ इंडिपेंडेंस डे और दूसरी तरफ हरियाली तीज, तो क्या लगता है इन दोनों सेलिब्रेशंस का एक साथ आना हमें क्या खूबसूरत मैसेज देता है?
2: मैम इन दोनों फेस्टिवल्स का साथ में आना एक बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत रिमाइंडर है। एक तरफ तिरंगा है जो आसमान की ऊंचाइयों को छूने की आजादी देता है हमको, ये बताता है कि यस हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो तीज है वो हमको हमारे जो इंडियन सभ्यता है, रूट्स है, उससे जोड़े रखती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस है, एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट भगवान ने दिया है कि भाई इस बार आप आजादी और जुड़े रहने का जो लुत्फ है दोनों एक ही दिन उठा सकते हैं।
1: आज की जो
2: जी
1: शिक्षित महिलाएं हैं वो आज आजाद हैं और आजाद भारत में आजाद महिलाओं की लाइफ में तीज और ऐसी ट्रेडिशंस आती हैं तो वो उनके लिए क्या मायने रखती हैं और आपकी जिंदगी में ये क्या मायने रखती हैं?
2: मैम, तीज जो है वो मेरे लिए स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मेरे मम्मा जो कहते थे कि मैं तीजों वाले दिन ही पैदा हुई थी, या शी सेड टू मी दैट आई एम वेरी लकी फॉर द फैमिली, एंड उन्होंने मुझे उतने ही नाजों से पाला। एंड जो है बहुत आई वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल चाइल्ड इन द फैमिली। कहीं ना कहीं इसी वजह से मेरा नाम भी तनप्रीत रखा गया, बिकॉज जैसे कि मुझे तारीफ मिलती थी। तो एजुकेटेड और जो इंडिपेंडेंट वुमेन है आज के लिए, आज के उनके लिए ट्रेडिशंस भी उतने इम्पोर्टेंट हैं, बट कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशंस को फॉलो करने का तरीका बदल चुका है, क्योंकि वो अब एक जबरदस्ती नहीं है, एक फोर्सफुल गाइडेंस नहीं है हमारे पेरेंट्स की तरफ से, बल्कि वो हमारे लिए चॉइस बन चुका है। तो एक तरफ महिला है जो अपनी आजादी और अपनी मर्जी से अपनी संस्कृति को अपने तरीके से सेलिब्रेट कर सकती है, और इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं तीज के त्योहार की खूबसूरती और बढ़ जाती है। और तीज के साथ जैसे कि हम देखते हैं हम हरे कलर को रिलेट करते हैं, हरे कलर खुद भी पीस, प्रोस्पेरिटी और ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारी पहचान को खुशी से अपनाने का तरीका है। कहीं
1: हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, यानी हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो कई महिलाओं ने अपनी हिम्मत और साहस से इतिहास रच दिया। आज की जनरेशन उन इंस्पिरेशनल विमेन से क्या सीख सकती है?
2: हमारे यहाँ एक कहावत है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कटमरे कभी ना छाड़ो खेत, जो कि पंजाबी में कहा जाता है कि हम हमेशा ही सही चीज के लिए खड़े होते हैं और लड़ जाते हैं, मर भी जाते हैं, कटवा सकते हैं अपने आप को जहाँ पे गलत और सही की बात है। वो ह्यूमैनिटी में किसी की भी मदद करनी है, नॉट जस्ट फॉर आर ओन सेल्फ। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल का तो डेटा ऐसा है जो आज तक शायद अकाउंटेड ही नहीं है। कितनी ऐसी हैं जिन्होंने ऑफ द पेपर्स कुर्बानियां दी हैं, इन्होंने इतिहास रचा है जब रिसोर्सेस कम थे, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे, तब से लड़ती आ रही है ये 1800 ईस्वी से। तो आज की जेनरेशन उनके लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप बुक्स पढ़ें, हिस्ट्री के बारे में जानें, तो वो कितनी रेजिलियंट और उनमें जो आत्मविश्वास था वो अब के टाइम पे यदि हम उनके बारे में जानते हैं तो हम उनकी मिसाल से खुद भी अपने लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं और बाकियों के लिए भी। तो अगर आपने हिम्मत है तो बदलाव आप खुद भी छोटे छोटे कदम लेके ला सकते हैं।
1: आखिर में आज के जो यंग गर्ल्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए?

0: जाएंगी, खासकर उन बेटियों को जो अपने ड्रीम्स को लेकर कंफ्यूज हैं या उन्हें पूरा करने के रास्ते में चैलेंजेस फेस कर रही हैं।
1: देखिए मैम, अपने ड्रीम्स पे फर्स्ट थिंग इज दैट हमें डाउट सबसे पहले तो नहीं करना चाहिए. दिस इज माय फर्स्ट यू नो लर्निंग. और अगर डाउट आ भी रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज फाइंड अ मेंटोर. अगर आप मैनिफेस्ट करें सही तरीके से, जो भी चैलेंजेस आपके रास्ते में आ रहे हैं, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, वो मस्ट है. क्योंकि चैलेंज नहीं आएगा तो आप कभी अपने ड्रीम का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाओगे. आज के टाइम पर वुमेन ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, सब फेमिनिज्म में बिलीव करती हैं. बट मैं एक चीज जो मुझे पर्सनली लगती है, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम जो वुमेन सेंट्रिक पावर है उसका अनड्यू एडवांटेज उठाएं, बल्कि हम उसे एक एक एसेट समझ के कि हमारे पास अपनी बात को प्रकट करने की क्षमता है, तो उस पर उसको ईमानदारी से और अपने भी कहते हैं ना ह्यूमैनिटी के साथ उस फेमिनिज्म पे चले.
0: संप्रीत जी, एक तरफ हमारे हाथ में तिरंगा है जो हमें फ्रीडम की याद दिलाता है, दूसरी तरफ तीज की हरियाली है जो हमें कल्चर और ट्रेडिशंस की खूबसूरती दिखाती है। अगर आपको इन दोनों को जोड़कर हर महिला और हर बेटी के लिए सिर्फ एक मैसेज देना हो तो वो क्या होगा?
1: आई थिंक अपनी रूट्स और कल्चर से उतनी ही गहराई से जुड़े रहना चाहिए जितनी, जैसे कि तीज की हरियाली जैसे हमारे मेहंदी का कलर होता है. और हमें अपने सपनों के आसमान में उतनी ही आजादी से उड़ना चाहिए जितना कि आजादी से हमारा तिरंगा हवा में लहराता है, जब वो आसमान में जब तिरंगा फहर रहा होता है.
0: संप्रीत जी, आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। क्यों ना इस मौके पर सुन लेते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
1: ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो.

सखियों, हमने आपसे पूछा था एक सवाल, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है। हमारी सखियों ने और साथ ही हमारे सखा भाइयों ने भी अपने जवाब भेजे हैं। ये हमारे पास आया है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से, विश्व मिस्किन रितिका वानी आरा प्रवीण चौहान रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश कुमार गंगा सिंह रावत जी ने भी सही जवाब भेजा है, रतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा ने, और ग्राम व पोस्ट गोटा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी, शिवम, इन लोगों ने एक गाने की भी फरमाइश की थी जो हम सुनवा चुके हैं। साथ ही नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी और फागुन यादव, और साथ ही सही जवाब हमारे पास आया है लाल मोहम्मद अंसारी जी का। तो सखियों, आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा अपने पत्रों के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। दीजिए सखी को नूर फातिमा को इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार नूर फातिमा के साथ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी नेहा सिंह के साथ।

हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम है आप सभी का प्रोग्राम युववाणी में अपनी रेडियो फ्रेंड नेहा सिंह के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? वेल दोस्तों, मौसम तो आजकल काफ़ी बदल रहा है। एकदम से बादल, फिर वर्षा होते ही ठंडा मौसम हो जाता है, जो कि काफ़ी हमें अच्छा भी लगता है और गर्मी से राहत भी मिलती है। बट उसके कुछ टाइम बाद ही ना धूप, उमस और गर्मी हम सबको फिर से परेशान कर देती है, और यही आजकल का बदलता मौसम हमें बीमार बनाता है। फीवर, कोल्ड, कफ, ये सब चीज़ें हमें बहुत इजीली हो जाती हैं, स्पेशली बच्चों को। और इस मौसम में खुद को हेल्दी रखना, हमारा ध्यान रखना, ये हमारे हाथ में ही है। और इस मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बारिश में हमें भीगने से बचना चाहिए। और अगर हम गलती से भीग भी जाते हैं तो घर पर आकर आप सादे पानी से ज़रूर नहाएं, किसी भी तरह के जर्म्स एंड इन्फेक्शन से बचने के लिए। और इसके साथ ही बिल्कुल जो फ्रिज का चिल्ड पानी है उसे बाहर से आकर गर्मी से बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि इसके कारण हमारा गला तो ख़राब होता ही है, साथ ही खांसी, जुखाम, ये सब चीज़ें भी हमें बहुत इजीली हो जाती हैं। और इस वेदर में इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए स्ट्रीट फूड हुआ, इसको अवॉइड करें। या आज के टाइम में जो भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ आती हैं ना, वो हमें इस मौसम में नहीं खाने चाहिए। और ये सब चीज़ें खाने से स्टमक इन्फेक्शन भी हो सकता है। और साथ ही पॉल्यूटेड वाटर, इससे बचना भी ज़रूरी है, क्योंकि यही कारण बनता है टाइफाइड का, पीलिया का, या पेट में किसी भी तरह के इन्फेक्शन का। इसलिए फिल्टर्ड वाटर ही पिएं, और अगर फिल्टर अवेलेबल नहीं है तो आप पानी को उबाल कर भी पी सकते हैं। साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने की चीज़ों का। खाने में प्रोटीन को इंक्लूड करें, विटामिन सी रिच डाइट लें, मौसमी फलों का सेवन करना, हाइड्रेटेड रहना, ये सब चीज़ें भी हमें स्ट्रॉन्ग रखती हैं, हेल्दी बनाती हैं और साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं। श्रोताओं, अपने कार्यक्रम को हम आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे, बट अब लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे आजकल का मौसम हमें और स्पेशली बच्चों को बीमार बना सकता है, और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारे खाने पीने की हैबिट्स पे। और आज के समय में जहाँ हर चीज़ में इतनी मिलावट हो गई है जो हमें बीमार बना रही हैं, हमारी इम्यूनिटी को वीक कर रही हैं, तो ऐसे में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और भी ज़रूरी हो जाता है। और इस बारे में अब हम जानेंगे इंदु से।
5: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदु है एंड मैंने बैचलर ऑफ साइंस इन फूड टेक्नोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। फूड हैबिट्स हम सबकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करती है, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप से क्यों ना बिलोंग करते हों। खुद को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करना इनफ नहीं है, हम एक्सरसाइज के साथ साथ क्या क्या इनटेक करते हैं और कब करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली आज के समय में जब नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, पानी हवा सब दूषित हो रहा है, सब खुद को स्वस्थ बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। एंड जब भी

हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें दवाई के साथ हमारे खाने पीने के बारे में भी सजेस्ट करते हैं, अलग चीज़ें खाने को बताते हैं। सो हम वो स्टेज आने ही क्यों दें कि हमें दवाई खाने के बाद समझ आए। हमें अभी से बल्कि आज से ही अपनी फूड हैबिट्स को सुधारना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्वस्थ भोजन है क्या। सो वो फूड जिसमें हमारे शरीर को फिट रखने के लिए सही मात्रा में सभी पोषक तत्व मौजूद हों, वही हमारे लिए हेल्दी फूड है। एंड ये फूड हैबिट्स बड़ों से ज़्यादा आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आज उनका लाइफस्टाइल हो गया है वो काफ़ी हार्मफुल हो गया है उनकी हेल्थ के लिए। आजकल हर कोई अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले जाए तो उनको चुप कराना हो तो हम तुरंत पैकेट फूड ला देते हैं, लाइक चिप्स, चॉकलेट्स, या घर पे कुछ खाने का मन नहीं हो तो इंस्टेंट नूडल्स ले आए विदाउट नोइंग कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। हम कभी उन पर बने न्यूट्रिशन वैल्यू, इंग्रेडिएंट्स, या कुछ लोग तो एक्सपायरी डेट तक चेक नहीं करते होंगे। ये सब चीज़ें, मोस्टली चीज़ें पाम ऑयल, मैदा, शुगर, आर्टिफिशियल कलर्स या प्रिजर्वेटिव से भरी होती हैं, जो सीधा बच्चों की ग्रोथ पर असर डालती हैं। घर बैठे बैठे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना, फिज़िकल मोमेंट भी ना के बराबर होना, यही रीज़न है आजकल के बच्चों में डायबिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम सुनने में आ रही हैं। इसलिए हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करें। नट्स, फ्रूट्स, ओट्स, ये सब लें जो एनर्जी और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। एंड लंच में सैलेड, वेजिटेबल्स ज़रूर लें। रॉ फूड को शामिल करें डाइट में। फाइबर रिच फूड खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। एंड विंटर सीजन में तो सब्जियां भी तरह तरह की आती हैं, वैरायटी ज़्यादा रहती है, सो हम उनका सूप, साग, मल्टीग्रेन रोटी सब बना सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी रहता है। एंड अगर आप पैकेज फूड लें तो उनके इंग्रेडिएंट्स देख लें पहले। सोडा ड्रिंक्स बिल्कुल भूल जाएं अगर स्वस्थ रहना है तो, बिकॉज ये शुगर, वीक बोन्स जैसी प्रॉब्लम्स लाती हैं हमारे शरीर में। एंड शाम की चाय के साथ हम बिस्कुट, नमकीन खाते हैं, बट क्या आपको पता है उस एक बिस्कुट में अप्रोक्स 2-3 टेबलस्पून ऑफ शुगर होती है। यही रीज़न है लोगों में डायबिटीज़ का। इसको आप रोस्टेड पीनट्स, मखाना, चना के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुद हेल्दी खाएं एंड बच्चों में भी अवेयरनेस लाएं कि हेल्दी फूड हैबिट्स कितना ज़रूरी है। उनको लेबल्स पढ़ने के बारे में, जंक फूड के नुकसान के बारे में सिखाएं, सो वो खुद समझने लगेंगे, तभी उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर पाएंगे। एट द एंड मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारे थॉट्स हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं, वैसे ही हमारा खान पान हमारी फिजिकल हेल्थ पर। सो ईट केयरफुली एंड स्टे हेल्दी।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आज के दिन यानी के 13 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। अंगदान एक ऐसा नेक काम है जो किसी की जान बचा के उसे जीने का दूसरा मौका देता है, और 1954 में पहला सफल अंगदान यानी कि अंग प्रत्यारोपण हुआ था, जब रोनाल्ड डी हैरिक ने अपना जुड़वा भाई रिचर्ड को एक गुर्दा दान किया था जो कि गंभीर गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे। फिर उसी टाइम डॉक्टर जोसेफ मरे के द्वारा किया गया ये ऑपरेशन सफल भी रहा था, और इसके सफल होने के ज़्यादा चांसेस इसलिए थे क्योंकि ये दोनों जो थे वो ट्विन ब्रदर्स थे, जिसने रिचर्ड की जान बच गई और ये साबित हो गया कि अंग प्रत्यारोपण एक प्रभावी चिकित्सा उपचार हो सकता है आने वाले समय में। फिर डॉक्टर जोसेफ मरे को इस काम के लिए साल 1990 में शरीर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और फिर 13 अगस्त को मनाया जाने वाला ये दिवस डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1967 में दुनिया का पहला मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। विश्व अंगदान का महत्व इस बात में निहित है कि अंग की आवश्यकता वाले रोगियों की संख्या और वास्तव में उपलब्ध अंगों की संख्या के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है। प्रतिदिन प्रतीक्षा सूची में शामिल कई मरीज केवल इसलिए अपनी जान गंवा बैठते हैं क्योंकि समय पर

उनके लिए उपयुक्त अंग ही नहीं मिल पाते और जागरूकता की लोगों में कमी रहती है। इसलिए जागरूकता अभियान इस अंतर को कम करने की दिशा में पहला कदम है। इसलिए हम सबको इस बारे में और जागरूक होना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को अंगदान के महत्व के बारे में बताना चाहिए। अंगदान एक ऐसा दान है जो महादान बन सकता है और आपको दोबारा जन्म दे सकता है, क्योंकि आप अपने जीवन के बाद किसी और को जीवन दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जागरूक बने और अंगदान के महत्व को समझें। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक लेंगे छोटा सा ब्रेक इस गाने के साथ।

श्वेता, आपको हमारा आज का सवाल याद है ना, जो हमने अपने सोशल मीडिया के FB के पेज के थ्रू पूछा था। हमारा आज का सवाल था कि ऑक्सीजन की खोज किसने की है। ऑक्सीजन जो कि हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है, अर्थ पर प्रेजेंट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये एक एसेंशियल एलिमेंट है, जिसे हम मेनली पेड़ों से और ओशियंस में मौजूद सूक्ष्म जीवों और पौधों, जिसे हम फाइटोप्लैंकटन कहते हैं, उनके द्वारा पैदा किया जाता है। ये सूक्ष्म जलीय पौधे और शैवाल सूर्य के प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनाते हैं। और ऑक्सीजन की जो खोज है, इसका मुख्य श्रेय मेनली इंग्लिश साइंटिस्ट जोसेफ प्रीस्टले को दिया जाता है और स्वीडिश केमिस्ट कार्ल विलहेम शीले को भी। इन दोनों ने स्वतंत्र रूप से इसकी खोज की थी, लेकिन प्रीस्टले का काम पहले प्रकाशित हुआ, इसलिए उन्हें अक्सर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। कार्ल विलहेम शीले ने 1772 में सबसे पहले ये गैस बनाई थी, बट उनकी ये जो खोज थी वो साल 1777 में प्रकाशित हुई थी। और रही बात जोसेफ प्रीस्टले की, तो उन्होंने 1774 में मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन की खोज की और उसी साल से सबके सामने प्रकाशित भी किया। फिर एट द एंड एंटोइन लवोजियर, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन है वो एक मौलिक तत्व है और दहन यानी कि जलाने के लिए इसकी प्रेजेंस होना एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जल ही नहीं सकती। और जो हमारा आज का सवाल है, इसका जवाब हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स ने अपने कमेंट्स के थ्रू बिल्कुल सही दिया है, जो कि है विष्णु, साथ ही हीरामणि वर्मा, पुंजाजी नवकर, प्रवीण चौहान, धर्मेंद्र छिपा, राहुल पाल, दिनेश वर्मा, गंगा सिंह रावत, भूपेंद्र सिंह, मुकेश कश्यप, दिग्दर्शन गौड़, वन्य कई सारे लिसनर्स ने। तो श्रोताओं, ऐसे ही कमेंट्स करते रहे। वेल, कार्यक्रम युववाणी का जो समय है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो अब अंत में सुनते हैं ये गीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी नेहा के साथ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसानवाड़ी, रविंद्र कुमार और क्षमा सक्सेना के साथ।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे हैं?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को आपकी बहन क्षमा
5: और आपके भैया रघु की
4: राम राम। और किसानवाड़ी में हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सावन की हरियाली, तीज के झूले, सुहागिनों की खुशियां और चारों ओर त्योहार की रौनक और जैक के साथ हमारे दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी हमारे द्वार पर है। एक तरफ तीज हमें हमारी मिट्टी, हमारी परंपराओं और लोक संस्कृति से जोड़ता है, तो दूसरी तरफ 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि इस मिट्टी की आजादी के लिए कितने वीरों ने अपना सर्वस्व निछावर किया।
5: तो क्षमा बहन, आइए आज किसानवाणी में बात करें खेत खलिहान की, सावन की, तीज की, हमारी बेटियों और बहनों की और उस आजाद भारत की जिसे हमारे किसान अपने पसीने से सींच रहे हैं, क्योंकि देश की शान भी किसान से है और खेतों की हरियाली भी किसान से है।
4: तो साथियों, सुनते रहिए पसंदीदा कार्यक्रम किसानवाणी, जहां खेत की बात होती है, किसान के साथ होती है। और सुनो रघु भैया, क्या हाल चाल है, खेती बाड़ी सब कैसी चल रही है?
5: बिल्कुल सही चल रही है क्षमा बहन, खेती बाड़ी। और देखो, धान की नराई करवाई है, तो अब धान भी ठीक है। अब जा है कि बारिश न भई है, तो हम पानी लगा के आए हैं आज।
4: बिल्कुल रघु भैया, और देखो अबे तो बारिश हो रही, तो जरूरत ना थी धान की फसलन में, और अबे दो दिन से देख रहे हो कितनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है।
5: बिल्कुल, अब तो ऐसे में जा है कि नमी की जरूरत होती है धान की फसल में, तो हमारे भैया बहन सिंचाई करत रहे। तो क्षमा बहन, बातचीत तो करेंगे ही अपने भैया बहनन से, आज सवाल का पूछ रही हूँ आप।
4: साथियों, अपनी पेन और कॉपी निकाल लो और नोट कर लो आज को सवाल। आज को सवाल है कृषि मेघ किस से संबंधित है, और सवाल को जवाब हम कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे। तब तक हमारे साथ ही सुने हमारा कार्यक्रम किसानवाड़ी।
5: तो देखो क्षमा बहन, बहुत सी योजनाएं सरकार चलाती है, उसे ही तरीका की एक योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। जब भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र पहल है, जाके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि कार्यों के लिए 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं।
4: बिल्कुल रघु भैया, ड्रोन से बड़े खेतों में कम समय में छिड़काव किया जा सकता है और खेत में बार बार चलने की जरूरत कम हो जाती है। सही मात्रा और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर और निर्धारित कृषि निर्देशों का पालन जरूरी है।
5: बिल्कुल, और इसके माध्यम से जा है कि गांव में हमारी जो बहने हैं उनको रोजगार भी मिलू है, और तभी जय योजना को नाम नमो ड्रोन दीदी

0: योजना भी रखो गए।
1: हार को भी अब महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ानो और खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देनो जा योजना को मुख्य उद्देश्य है।
0: तो हमारे भैया बहन जा योजना को लाभ उठा रहे होंगे, जो स्वयं सहायता समूह हैं वो भी जा योजना को लाभ उठा रहे होंगे।
1: और देखो रघु भैया, आज दिन है गुरुवार और गुरुवार के दिन हम अपने साथियों को सुनवाते हैं कृषि गोष्ठी। और आज हमारी कृषि गोष्ठी में बातचीत को विषय है सरकारी कृषि योजनाएं किसानों के लिए कितनी लाभकारी हैं। और जाए विषय पर हमारे कृषि गोष्ठी कार्यक्रम में प्रतिभागी हैं श्री टीकाराम, श्री भानु प्रताप और श्री संजय जी। और आपसे अपने सटीक प्रश्नों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं भैया हेडलपाल। तो आओ भैया बहनों सुन लेते हैं जा कृषि गोष्ठी।
2: किसान भाइयों, समय समय पर हम आपको कृषि गोष्ठी सुनवाते रहते हैं और आज कार्यक्रम में तीन मेहमान आए हुए हैं आज की कृषि गोष्ठी के लिए। और आज की हमारी जो कृषि गोष्ठी है इसका विषय है सरकारी कृषि योजनाएं किसानों के लिए कितनी जरूरी। इस विषय में विस्तार से जानकारी के लिए आज कार्यक्रम में तीन अन्नदाता मेहमान हैं हमारे साथ में, उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है?
3: हमारा टीकाराम नाम।
2: आप कहाँ से आए हैं?
3: गांव सुकटिया से।
2: गांव सुकटिया, कौन से ब्लॉक का गांव है आपका?
3: शेरगढ़ ब्लॉक का।
2: शेरगढ़ ब्लॉक का। तहसील आपकी कहाँ लगती है?
3: तहसील मीरगंज लगती है
2: जी। बीच में हमारे साथ में मेहमान बैठे हुए हैं, आपका नाम क्या है?
4: संजय।
2: संजय जी, आप कहाँ से आए हैं?
4: मैं फतेहगंज पश्चिमी से आया हूँ
2: जी। आपकी तहसील कहाँ लगती है?
4: मीरगंज।
2: मीरगंज लग। और जिला?
4: बरेली।
2: बरेली। और एक तीसरे मेहमान हमारे साथ में और हैं, उनसे भी उनका परिचय जान लेते हैं। आपका नाम?
5: हमारा नाम भानु प्रताप।
2: भानु प्रताप जी, आप कहाँ से उपस्थित हुए हैं?
5: हमारा गांव ग्राम बिबियापुर
2: जी,
5: तहसील बरेली।
2: और ब्लॉक आप?
5: ब्लॉक फतेहगंज।
2: ब्लॉक फतेहगंज जी। जी, कार्यक्रम में सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को हमारी राम
4: राम राम राम।
2: अब हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये जो आज हमारा विषय है सरकारी कृषि योजनाएं किसानों के लिए कितनी जरूरी, तो कितनी जरूरी है आप सभी से जानते हैं। टीकाराम जी, सबसे पहले आप बताएं कि ये सरकारी योजनाएं हैं, ये हमारे किसानों भाइयों के लिए किस तरीके से हितकारी हैं?
3: खेती में राहत मिलती है इससे
2: जी,
3: समय समय पैसा मिल जाता है, तो पैसा नहीं होता है तो उससे मदद मिल जाती है
2: जी। वैसे तो हमारे सरकार ने बहुत सी योजनाएं किसानों के हित में चला रखी,
3: बहुत चला रखी है,
2: जैसे कृषि यंत्रों पर अनुदान मिल जाता है, अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध हैं,
3: सब्सिडी मिल जाती है,
2: सब्सिडी मिल जाती है, जो खाद बीज उर्वरक कीटनाशक दवाएं हैं उन पे भी सब्सिडी मिल जाती है,
3: उन पे भी सब्सिडी मिलती है।
2: सब्सिडी के तहत ये जो सहकारी समितियां हैं या फिर सरकारी कृषि बीज गोदाम है वहां पर ये सुविधाएं सब उपलब्ध हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है,
3: हाँ वो भी मिलती है,
2: फसल बीमा योजना है, ये बहुत सी योजनाएं किसानों के हित में चल रही हैं। तो इनमें से कौन सी योजना का लाभ टीकाराम जी आपने लिया है?
3: पीएम सम्मान निधि योजना मिल रही है,
2: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको मिल रहा है?
3: मिल रहा
2: जी। तो ये किस तरीके की योजना है, थोड़ा विस्तार से बताएं अपने अन्नदाता भाइयों के लिए।
3: ये साल में 3 बार मिलती है।
2: अच्छा,
3: हाँ।
2: ₹2,000 की,
3: ₹2,000 की किस्त
2: जी,
3: तो इससे लाभ मिलता है?
2: लाभ मिलता है,
3: हाँ।
2: तो आपको लगभग कितनी किस्त अब तक मिल गई होंगी?
3: 20-22 मिल चुकी।
2: 20-22 किस्त मिल गई,
3: हाँ मिल चुकी।
2: क्या करते हैं इस पैसे का आप?
3: खेती में लगा देते हैं।
2: अच्छा, तो खेती में खास तौर से कौन कौन सी फसलें आप उगा?
3: हमारे पास तो गन्ना है।
2: अच्छा,
3: हाँ।
2: आपके क्षेत्र में गन्ना काफी?
3: गन्ना होता है हमारे ज्यादा
2: जी। एक एक दूसरे अन्नदाता किसान भाई हैं हमारे साथ में, भानु प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सरकारी योजना है कितनी लाभकारी है अन्नदाता भाइयों के लिए?
5: योजना तो बढ़िया है और जो है सभी किसान भाइयों के लिए अच्छी है योजना
2: जी।
5: उसमें जो है हम लोगों को सब्सिडी मिलती है, जैसे किसान निधि सम्मान निधि, इसमें भी पैसे आते हैं हम लोगों के, ₹2,000 करके साल में 3 बार आते हैं ये पैसे
2: जी।
5: और फसल बीमा है,
2: फसल बीमा बहुत अच्छी योजना है।
5: जैसे फसल बीमा ये है, जैसे हमारा अभी इस समय हमने धान लगाए हैं, जब ये तैयार होंगे और बारिश होने के कारण अगर ज्यादा खराब हो गया तो उसमें जो है हमारा फसल बीमा मिल जाता है।
2: बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैसे फसल बीमा योजना कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, बहुत विस्तृत योजना है और सभी राज्यों में हमारे किसान भाई इसका लाभ भी ले रहे हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है या किसी कारण से हमारी फसल नष्ट हो जाती है, तो हमारे किसान भाई अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। अच्छा, ये बीमा कहाँ कराएं हमारे?
5: ये बीमा

0: तो हमारे यहाँ तो सर लेखपाल आते हैं सर्वे
1: जी
0: करने के लिए,
1: जी जी
0: वो सर्वे करके ले जाते हैं अपने जो जो गाटा संख्या है, खतौनी वगैरह जो लगती है वो दे दी जाती है,
1: जी
0: ठीक है। उसके बाद में अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, उसके जरिए से हमारा बैंक में सीधे खाते पैसे आते हैं।
1: जी कोई भी जब नुकसान हो जाता है।
0: हाँ जब आता है।
1: बहुत बढ़िया। अच्छा, और भी बहुत सारी योजना चल रही है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है जिसके तहत हमारे किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड घर घर मिले हुए हैं। तो ये मिट्टी की जांच भी हमारे किसान भाइयों को समय समय पर करानी होती
0: जी
1: है, उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। सन 2015 से ये योजना चल रही है।
0: जी
1: तो कुल मिलाकर के इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जो सरकारी योजनाएं हैं वास्तव में किसान भाइयों के हित में है,
0: जी
1: बहुत लाभकारी योजना है। संजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि

0: जी
1: बहुत लाभकारी योजना है। संजय जी, हम ये जानना चाहेंगे आप क्या करते हैं?
0: हम दूध का काम करते हैं।
1: दूध का काम करते हैं,
0: हाँ
1: बहुत अच्छी बात है। यानी जो सभी किसान भाई हैं, कोई खेती करते हैं, कोई
0: हाँ
1: पशुपालन करते हैं, कोई अन्य
0: हम
1: व्यवसाय
0: भैंसे
1: करते हैं
0: पालते
1: खेती
0: हैं।
1: पर आधारित, आप पशुपालन करके दुग्ध व्यवसाय कर रहे हैं,
0: हाँ
1: तो ये दुग्ध व्यवसाय ही आपने क्यों चुना? काम तो
0: ये
1: और भी थे।
0: काम ये थे, इसे थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है, भैंसे
1: जी
0: पालते हैं,
1: जी
0: अपना गुजारा चलता है थोड़ा
1: जी
0: सा।
1: बालक बच्चे लगे रहते
0: हाँ
1: हैं,
0: बाले बच्चे लगे रहते हैं, पूरा घर
1: आप
0: लगता
1: खेती
0: है।
1: काम में हैं तो घर में बालक बच्चे इनकी देखरेख करते
0: हाँ
1: होंगे, बहुत बढ़िया। तो कितने पशु आपने पाल रखे हैं?
0: अभी दो तीन हैं।
1: तीन पशु हैं,
0: हाँ
1: तीनों में भैंस हैं या गाय
0: हाँ
1: हैं?
0: तीनों भैंसे हैं।
1: तीनों भैंस हैं।
0: हाँ
1: आज के समय पर भैंसें बहुत महंगी होती जा रही
0: हाँ महंगी तो हो जा रही है।
1: हैं।
0: हाँ
1: तो कितना कितना दूध देती होंगी आपकी
0: देती
1: भैंसें?
0: हैं, दो दो किलो, तीन तीन किलो दे देती है
1: एक
0: भैंस
1: बार
0: आई
1: में?
0: एक बार।
1: तो आपने अच्छी नस्ल की भैंसें नहीं पाली हैं क्या?
0: अभी तो है अच्छी, जैसा खवाएंगे वैसा ही मिलता है।
1: जी, तो क्या
0: हाँ
1: चीज ऐसी खिलाई जाए अपने पशुओं को जिससे दूध ज्यादा दे?
0: जैसे चोकर मिलाते हैं, खर खवाते हैं, और चुनी जी
1: जी
0: खवाते हैं तो दूध ज़्यादा देती है। हरा चारा खवाते हैं, भूसा,
1: जी। तो इस
0: और
1: समय देखिए, हमारे जो पशु हैं सबसे ज्यादा रोगग्रस्त होते हैं बरसात के दिनों में,
0: हाँ बरसात में बीमारी फैलती है,
1: बहुत ज्यादा फैलती है।
0: फैलती है।
1: तो आपने अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए?
0: जैसे उनका बीमा करवाया था।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: पशुओं का बीमा भी कराया है।
0: हाँ कराया था।
1: जी, किसी
0: हम
1: बीमारी से यदि पशु
0: हाँ
1: मर जाते हैं तो
0: हाँ
1: उसका
0: बीमा
1: लाभ मिल जाता है।
0: लाभ मिल जाता है।
1: जी, टीके लगवाए हैं आपने?
0: हाँ टीका भी लगाते थे, डॉक्टर
1: अच्छा।
0: आते थे ब्लॉक से लगाते थे।
1: अच्छा, ये टीका तो कई बीमारियों से भी हमारे पशुओं को बचाते हैं, खुरपका, मुंहपका,
0: हाँ
1: गला घोटू।
0: हाँ गला घोटू बन जाता है,
1: जी
0: और बहुत सी बीमारी इनसे बनती हैं
1: जी
0: ये चौमासे के महीने में।
1: जी अच्छा, खास तौर से हमारे जो किसान भाई हैं पशुपालन वो भी करते हैं, लेकिन दूध जो दूहते समय बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसी कौन सी अच्छी खास बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए दूध दूहते समय?
0: दूध का सफाई करते हैं,
1: जी
0: सुबह उठे उसका गोबर उठाया और उसे झाड़ू मारी और अलग नहवा दिया भैंस को, फिर
1: जी
0: दुआ।
1: जी
0: हाँ तो नहवा के फिर स्वस्थ हो जाता है।
1: जी यानी पशु जब हमारा साफ सुथरा होगा
0: हाँ
1: तो
0: दूध
1: हमारा
0: सही
1: दूध
0: देगा,
1: भी साफ
0: सफा
1: सुथरा ही
0: हाँ
1: निकलेगा, है ना?
0: निकलेगा।
1: कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो कृषक कुछ पशुपालक भाई हैं जो दूध का काम करते हैं, बड़ी बड़ी डेयरियां चलाते हैं, तो उन्होंने किसी लवारे को छोड़ा और थन धोए धोए नहीं और ऐसे ही दूध धो लिया, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए?
0: उसमें तो क्या है, बीमारी भी बन सकती है भैंस के
1: जी
0: लिए और
1: जी
0: लबारे के भी नुकसान देगा।
1: जी
0: हाँ इसलिए गर्म पानी करके उसे धो लूँ।
1: अच्छा, हल्का गुनगुना पानी होना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: गुनगुना करके।
1: अच्छा, जाड़े के दिनों में ज्यादा जरूरी है गुनगुना पानी।
0: हाँ जैसे हाँ हाँ
1: अब आपसे जानना चाहेंगे भानु प्रताप जी कि आप खेती बाड़ी करते हैं,
0: जी
1: तो खेती में खास तौर से क्या क्या फसलें हैं?
0: गेहूं करते हैं, धान
1: अच्छा,
0: और गन्ना भी करते हैं।
1: गन्ना भी करते हैं। आपके पास इस समय कौन कौन सी फसलें हैं?
0: इस समय गन्ना और धान है
1: गन्ना और धान। ठीक, तो गन्ना कितनी कितना बड़ा हो गया होगा, कितनी किस अवस्था में पहुंच
0: गन्ना,
1: गया?
0: करीब 7 फीट की ऊंचाई में हो चुका है। हाँ
1: यानी 4-5 पोई बन गई। अब क्या कर रहे हैं गन्ना की फसल में?
0: गन्ने की अब तैयारी ये चल रही है, उसमें खाद तो हमने लगा दी,
1: अच्छा।
0: देसी खाद तो हमने जड़ में ही डाल दी उसकी, बाकी वो थोड़ा बहुत जो है कीटनाशक दवाई हल्की फुल्की ले ली और थोड़ी खाद डाल दी उसमें, डाया।
1: अच्छा, डीएपी।
0: हाँ डीएपी डाल दी। अब उसकी पत्ती कट करके उसको जो है गन्ने को बांधा जा रहा है, इससे कि गिरे ना,
1: अच्छा
0: मजबूती रहे उससे।
1: जी,
0: हाँ
1: तो गन्ने की बंधाई किस तरीके से आप करते
0: गन्ने की
1: हैं?
0: बंधाई मतलब इसके रेजा होते हैं, रेजा मतलब चार चार रेजा इकट्ठे करके उसको बांध दिया
1: यानी जो
0: जाएगा।
1: मुंड होते हैं।
0: हाँ तो वो इधर उधर गिरेगी नहीं, वो सीधी खड़ी रहेगी वहां से।
1: अच्छा, टीकाराम जी, आप कौन कौन सी फसलें उगाते हैं अपने खेतों में?
0: अभी तो गन्ना है।
1: गन्ना है आपके खेत में भी? भानु प्रताप जी बता रहे हैं कि हम गन्ने की बधाई करते हैं, तो गन्ना हमारा गिरता नहीं है। टीकाराम जी, आपसे जानना चाहेंगे अगर गन्ना हमारा गिर जाए तो क्या नुकसान होते हैं?
0: गन्ना हल्का हो जाता है।
1: अच्छा,
0: बल
1: और
0: और चूहे भी लग जाते हैं उसमें।
1: जी, चूहे हैं, खरगोश हैं, गीदड़
0: हाँ
1: हैं, ये भी
0: सभी हाँ बीमारी बढ़ जाती है इसमें।
1: बढ़ जाती हैं। अच्छा, छिलाई करने में भी परेशानी होती
0: छिलाई
1: है।
0: में भी यहाँ टुकड़े।

0: बनाने पड़ते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, कई मोड़ हो जाती है उसमें।
1: फिर जा करके ट्रॉली में लादते हैं तब भी
0: हाँ,
1: परेशानी हो
0: तब
1: जाती
0: भी
1: है।
0: दिक्कतें दिक्कत आती है फिर।
1: अच्छा, तो इसलिए हमें बधाई करनी चाहिए।
0: जरूरी है।
1: बधाई कब हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए, कौन से महीने
0: अब अगस्त के लास्ट में 10-12 दिन रह जाएंगे अगस्त
1: में?
0: के, जब ही बंदाई करवा देंगे फिर।
1: अच्छा।
0: आप हाँ, फिर वह हवा तेज चलने लगेगी, अभी तो हवा हल्की है,
1: जी
0: तो थोड़े दिन बाद ही बंदवाएंगे,
1: जी
0: जिससे कि गन्ना रुक रुक रुके
1: जी जिससे हमारा गन्ना जो है गिरे नहीं।
0: ना,
1: तो
0: गिरे ना।
1: कितनी बंधाई आप करते हैं अपने गन्ना की फसल में?
0: दो बंदाई करते हैं
1: दो बंधाई करते हैं। भानु प्रताप जी, आप कितनी बंधाई करते हैं अपने गन्ना में?
2: हमी, सब दो ही बार करते हैं बधाई।
1: अच्छा। और कुछ किसान भाइयों के खेतों में हमने बंधा हुआ देखा, तीन तीन बंधाई
2: हाँ
1: उन्होंने
2: हाँ
1: कर
2: होता है
1: देते,
2: सर,
1: ज्यादा
2: होता
1: बढ़
2: है।
1: जाता है
2: हाँ,
1: गन्ना तो।
2: गन्ना अगर ज्यादा बढ़ गया तो 3 बार भी बांधना पड़ता है।
1: जी, तो गन्ने की अधिक पैदावार मिले हमें, बम्फर पैदावार मिले,
2: जी,
1: तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए?
2: इसके लिए सर हमारे लिए देसी खाद लगानी चाहिए,
1: जी।
2: बढ़िया करके उसकी जुताई होनी चाहिए, महीन मिट्टी हो जाए, देसी खाद उसमें मिलानी चाहिए
1: जी
2: बढ़िया करके, उसके बाद पानी समय समय से लगना चाहिए उसमें।
1: जी
2: और अगर कोई रोग अगर लग रहा है तो उसमें जो है कीटनाशक दवाई 1-2 बार लगा देनी चाहिए,
1: जी
2: जिससे कि रोग ना लगे। हाँ
1: ये तो शुरुआती अवस्था में ज्यादा लगते हैं, हैं?
2: जी,
1: और
2: अब तो
1: तभी
0: बरसात में अब नहीं लगेंगे।
2: अब नहीं लगेगी।
1: जी, अब तो गन्ना काफी बड़ा हो गया,
2: हाँ,
1: दवाई
2: अब
1: छिड़की
2: तो
1: भी नहीं जाएगी।
2: हाँ,
1: अच्छा, कौन कौन सी बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं गन्ना की फसल में? टीकाराम जी।
0: उसमें कीट जो गोबा सूख जाता है, पीला पड़ जाता है।
1: कनफर्रा हो जाता है गन्ना।
0: हाँ
1: ऊपर से जो अगौली में कई
0: हाँ
1: कई कल्ले
0: और
1: बन
0: कई
1: जाते
0: कई गांठों पे कीड़ा लग जाता है, सुड़ी जैसी।
1: हैं जी। लाल सड़न रोग भी होता है, बीच में
0: हाँ,
1: पूरा गन्ना लाल हो जाता है।
0: लाल हो जाता है।
1: काने भी हो जाते हैं गन्ने में
0: हाँ, तो
1: तो।
0: जी, 2-3 रोग हैं उसमें।
1: अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि जो संजय जी हैं वो अधिक से अधिक पशुपालन करते हैं, तो ये जानना चाहेंगे संजय जी आपसे कि पशुपालन करने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या फायदा होता है? पशुपालन करने से हमारे किसान भाइयों को क्या फायदा होता है?
2: इससे ये फायदा होता है कि बच्चे भी सब लगे रहते हैं
1: जी
2: और दूध बेच के और पैसे भी मिलते हैं,
1: जी
2: फिर उनका भी काम चलता है,
1: जी रोज की इनकम घर में आती
2: रोज
1: है।
2: के थोड़े बहुत पैसे आते हैं घर में,
1: जी,
2: अपना
1: तो
2: गुजारा चलता है।
1: एक भैंस कितना चारा दाना एक दिन में खा जाती होगी?
2: 1 दिन में खा जाती है करीब 25-30 किलो भूसा खा जाती है
1: 25-30 किलो भूसा
2: ना।
1: खा जाती है।
2: हाँ,
1: तो उसमें जो रातिब होता है वो आप क्या क्या खिलाते हैं, कितना देते हैं पशु के लिए?
2: ऐसे चोकर दे दिया 1 किलो, और आधी किलो खर डाल दी,
1: जी
2: और चुनी मिला दी दाल की।
1: ठीक है।
2: हाँ,
1: गुड़ भी
2: वो
1: डाल दिया।
2: और गुड़ भी डाल दिया थोड़ा, और मिला के फिर पानी में मिला
1: सानी
2: के
1: कर दी
2: सानी
1: उसमें।
2: कर दी
1: जी,
2: भूसा में मिला के।
1: कितनी बार ये चारा दाना देते हैं आप अपने पशु को दिन भर में?
2: 3 बार,
1: तीन बार।
2: तीन
1: कौन
2: बार
1: कौन से समय?
2: सुबह दोपहर शाम
1: जी। और पानी कब कब पिलाते हैं आप?
2: पानी 2 टाइम पे आते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, अभी तो इतना नहीं पी रहे हैं, चुगने जा चले जाते हैं अभी तो, फिर 2 बार पे आते हैं।
1: क्या आप पशुओं को चराने के लिए भी ले जाते
2: हाँ,
1: हैं?
2: ले जाते
1: ले
2: हैं
1: जाते हैं। तो क्या घर पे पानी पिला करके ले जाते हैं या किसी गड्ढे में ही पिलवा देते हैं?
2: ना, घर में भी पिलाते हैं, जब खोलते हैं सुबह को खोल के घर से ले जाते हैं,
1: जी।
2: फिर तो वो उधर पी लें, शाम को पिलाते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: फिर शाम को लेकर आते हैं तब पिलाते हैं।
2: तब पिलाते हैं।
1: और यही बात सही होनी चाहिए कि हमें पशुओं को किसी गड्ढे में या ठहरा हुआ पानी न
2: नहीं,
1: पिलाना
2: नहीं
1: चाहिए,
2: पिलाते हैं।
1: है, जिससे पशु बीमार हो सकते हैं। अच्छा, आप टीकाराम जी खेती के साथ पशुपालन करते हैं?
0: हाँ, एक भैंस पालते हैं।
1: एक भैंस। वो किस लिए पाल रखी है, दूध बेचने के लिए, खाने
0: ना,
1: के लिए?
0: खाने के लिए पालते हैं, और उससे गोबर भी
1: मिलता
0: खाद
1: रहता है
0: मिलता रहता।
1: देसी खाद के लिए।
0: हाँ,
1: जरूरी है।
0: जरूरी।
1: अच्छा, हमारे कुछ किसान भाई ये भी कहते हैं कि पूछना है तो कछुना है, इसलिए कोई ना कोई पशु हमारे किसान भाइयों के घर में जरूर होना
0: जरूरी
1: चाहिए।
0: होना।
1: तो पशुपालन खेती के साथ कितना जरूरी है?
0: खेत पे जाते हैं तो कोई ना कुछ ले आए, उसका
1: हाँ,
0: भी काम हो जाता है
1: पशु का
0: पशु का, और अपना भी का
1: जी, अपने लिए
0: खा
1: भी दूध मट्ठा घी
0: सब
1: घर
0: चलता
1: का
0: है।
1: मिल जाता है। अब बात करें बाजार में दूध लेने के लिए जाए तो मिलावट
0: हाँ,
1: मिलती
0: मिलावट मिलती है।
1: है, पानी की मिलावट हो सकती है या अन्य केमिकलों की मिलावट हो
0: हाँ
1: सकती है, और जब अपने घर का होगा तो शुद्ध
0: हाँ
1: होगा,
0: शुद्ध होगा, शुद्ध
1: उसमें
0: होगा
1: कोई मिलावट नहीं है।
0: ना।
1: पशुपालन के विषय में भानु जी आप क्या कहना चाहेंगे?

0: जरूरी है पशुपालन?
1: ये तो सर बहुत ही जरूरत,
0: जी
1: इसको पालने से हमारा मतलब देसी खाद भी बनता है और
0: जी
1: खेती भी बढ़िया होती है इससे,
0: जी
1: और दूध मीठा दही मतलब जो भी चाहें अपने वो खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं,
0: जी
1: उससे मतलब बच्चों का भी संतुलन बहुत बढ़िया रहता है
0: जी
1: और अपने भी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा उससे।
0: इसीलिए
1: हाँ
0: तो दूध को संतुलित आहार का वो
1: जी
0: सभी के लिए मिलना जरूरी है।
1: जरूरी है ये तो
0: दूध
1: सर।
0: का सेवन बहुत जरूरी है जिससे हमारे शरीर की तंदुरुस्ती बनी रहती है।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, पशुपालन के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, जैसे समय समय पर टीके लगते रहते
1: जी
0: हैं जो सरकारी अस्पताल के माध्यम से निःशुल्क लगते हैं किसान भाइयों के पशुओं को, और अधिकतर ये जो पशु हैं वो संक्रामक रोगों से हमको बचाते हैं।
1: बचाते हैं।
0: तो टीके लगवाना कितना जरूरी है भानु प्रताप जी?
1: ये तो सर बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो मतलब जानवर को बीमारी होगी,
0: जी
1: उसके बाद मतलब जब हम सेवन उसका करेंगे, दूध का, दही, दूध, मठा जो भी करेंगे, तो हम पे भी उसका जो प्रभाव पड़ सकता है।
0: जी बात सही है।
1: हाँ
0: कोई उसके लक्षण, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पशुओं में होने के बाद मनुष्यों में भी हो जाती हैं,
1: हाँ
0: जैसे रेबीज की बीमारी
1: हाँ
0: भी है वो भी हो जाती
1: वो हो जाती
0: है
1: है।
0: ना? कभी कभी कोई पागल कुत्ता होता है जिसके अंदर रेबीज हो गया, उसने पशु को काट लिया, पता ना लगा,
1: नहीं लगा पता
0: और
1: हो
0: उसका
1: जाए।
0: दूध का सेवन हमने किया तो
1: हाँ
0: उसके माध्यम से भी
1: हमको हो सकती है।
0: हमको हो सकती है। तो इसलिए जो है हमें अपने पशुओं को समय समय पर डॉक्टरों के पास भी ले जाते रहना चाहिए, उनका
1: हाँ
0: भी चेकअप बहुत जरूरी है। टीकाराम जी, ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सरकारी योजनाएं हमारे किसान भाइयों के लिए चल रही हैं, चाहे वो पशुपालन से संबंधित हों या खेती बाड़ी संबंधित हों, सभी लाभकारी योजनाएं हैं। आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अलावा और किसी योजना को लाभ मिला हुआ आपको?
2: और किसी का भी लिया नहीं है।
0: अच्छा, लिया नहीं है अभी तो। जमीन आपके ही नाम है?
2: हाँ,
0: और
2: जमीन हमारे भी नाम है, पापा के नाम है।
0: अच्छा, दोनों लोगों के नाम है तो किसान सम्मान निधि आपकी भी आती होगी, पापा की भी
2: हाँ,
0: आती होगी,
2: दोनों की आती है।
0: दोनों की आती है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि जिन किसान भाइयों की किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है वो कहाँ जा करके संपर्क करें, कैसे उनकी किसान सम्मान निधि आ
2: वो
0: सकती है?
2: फार्म रजिस्ट्री कराएं।
0: अच्छा, फार्म रजिस्ट्री तो हो रही है?
2: हाँ तो वो कराना पड़ेगी।
0: अच्छा, तभी
2: हाँ
0: आएगी।
2: तभी आएगी,
0: जब तक फार्म रजिस्ट्री ना होगी,
2: तब तक
0: फार्मर रजिस्ट्री
2: हाँ तो नहीं आएगी।
0: तो नहीं आएगी।
2: हाँ
0: क्या केवाईसी भी कराएंगे?
2: केवाईसी जरूरी है,
0: अच्छा,
2: साल में एक बार तो कराना चाहिए, उससे पता लगता है किसान है या ना है,
0: हाँ, ये भी बहुत जरूरी है।
2: ये जरूरी है।
0: तो किसी भी योजना का लाभ लेना है हमें तो
2: हाँ तो
0: केवाईसी
2: केवाईसी
0: करानी बहुत जरूरी है।
2: जरूरी है।
0: बात सही है आपकी। और केवाईसी जब ना होएगी तो पता नहीं लगता सरकार के लिए भी कि वो
2: हाँ
0: व्यक्ति
2: है या ना है,
0: दुनिया में है या नहीं है।
2: सही बात
0: इस कारण से कभी कभी गलत
2: नहीं,
0: जगह पे भी पैसा पहुंच जाता है सरकार का,
2: सही बात।
0: तो ये भी हमें बहुत जरूरी है। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे उनको सिलेंडर मिले हैं, तो ऐसे कोई तीनों किसानों में से हमारे कोई अन्नदाता किसान ऐसे हैं जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है?
1: हमें मिला है
0: मिला है आपको?
1: जी,
0: तो अब घर में महिलाएं कैसा महसूस करती हैं?
1: बहुत अच्छा लगता है, मतलब
0: जी
1: उन्हीं के नाम से जुड़े कनेक्शन है उनका, मिसेज के नाम से ही कनेक्शन है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: बिल्कुल बात सही है।
1: और जुए सिलेंडर लेने जाते हैं, उस पर वापसी फिर सब्सिडी भी आती है हमारी।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: पूरा
1: पूरा लाभ उससे मिल रहा है, हम लोग को
0: लाभ मिल रहा है।
1: पूरा मिल रहा
0: पहले
1: है,
0: बरसात के दिनों में बड़ी समस्याएं आती
1: बहुत
0: थी,
1: दिक्कत होती है।
0: कंडा ईंधन गीलो हो
1: हाँ
0: जाता है और वो जो है फिर धुआं धप्पाड़ भी होता, घर
1: हाँ
0: भी काला
1: काला
0: होता
1: हो
0: है,
1: जाता है।
0: महिलाएं थोड़ा परेशान भी रहती थी फूंक मारते मारते चूल्हे में, तो इससे भी राहत मिली है,
1: बहुत बढ़िया
0: अब
1: रहे।
0: अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आपके लिए इस योजना का लाभ मिला
1: जी
0: है? जी, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए कि जो योजना चलाई जा रही है उनका लाभ हमारे सभी अन्नदाता भाइयों को अधिक से अधिक मिले,
2: मिले।
0: है? तभी हमारे किसान भाइयों के चेहरे भी खिलेंगे
1: हाँ
0: और उनको बहुत अधिक सपोर्ट भी मिलेगी
2: सपोर्ट
0: और
2: मिलेगी
0: तभी वो
2: खुशी।
0: आगे बढ़ेंगे। टीकाराम जी, भानु प्रताप जी और संजय जी, आप तीनों लोग आज की कृषि गोष्ठी में उपस्थित हुए जिसको आज हमारा विषय हो सरकारी कृषि योजनाएं किसानों के लिए कितनी जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। पुनः आप सभी को हमारी
1: राम
0: राम राम।
3: नमस्कार। तो देखो क्षमा बहन, हमारे भैया बहन ने सुनी कृषि गोष्ठी, जो हमारे किसान भैया है उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, कैसे खेती में वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

0: लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: और देखो श्यामा बहन, अब समय जो ही चलू है वो ही चलू है, थोड़े से गीत और संगीत को। हमारे भैया खेतन से लौट आए होंगे, रोटी खा रहे होंगे, तो ऐसे में अगर गीत संगीत हो जाए तो उनको मनोरंजन भी हो जाएगा और उनकी थकान भी दूर हो जाएगी।
7: बिल्कुल रघु भैया, आपकी फरमाइश पे और अपने साथियों की फरमाइश पे सुना देते हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: और क्षमा बहन आप बता दो बस सवाल को जवाब जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो।
1: तो भैया आज को सवाल हो कृषि मेघ किससे संबंधित है, तो जाको सही जवाब है कृषि मेघ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की डेटा रिकवरी सेंटर से संबंधित है। और भैया देखो जा सवाल को जवाब हमारे श्रोता ने भी दो है, और बता दो उनको का नाम है जिन्होंने जा सवाल को जवाब दो है।
0: हाँ बिल्कुल आप क्षमा बहन सही कह रही हैं, जा सवाल को जवाब दो है हमारे जो श्रोता हैं प्रवीण चौहान जी, उनने बिल्कुल सटीक जवाब दो है। और अब बता दो आज के कार्यक्रम की नसीहत।
1: रघु भैया आज के कार्यक्रम से हमें जाही नसीहत मिलता है, सरकारी कृषि योजनाओं को अपनाए कर अपनी खेती बाड़ी को सरल बनाए हमारे किसान साथी और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें।
0: तो भैया जा तो ही आज के कार्यक्रम की नसीहत, और हमारे भैया खूब खुश रहें, क्षमा बहन आजादी को जो पर्व है बाको खूब धूमधाम से मनावें और अच्छे से अपनी खेतन की देखभाल करें रखवाली करें। जाई बात के संग आज के कार्यक्रम किसानवाणी से अपने भैया रघु
1: और अपनी बहन क्षमा को दें अनुमति।
0: भैया बहनों राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी रविंद्र कुमार और श्यामा बहन के साथ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोतन को बहुत बहुत स्वागत है। देखो रघु भैया, आजकल आपने देखो होगा, सब लोग बात करते हैं अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की। आत्मनिर्भर या अपने पैरों पर खड़ा होना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है।
1: बिल्कुल।
0: और देखो भैया, आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है पढ़ाई लिखाई।
1: बिल्कुल, आत्मनिर्भर तो तभी बन पाएंगे जब हम पढ़े लिखे होंगे, हम जान पाएंगे कौन सी योजनाएं हमारे लिए चल रही हैं या क्या काम करके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
0: बिल्कुल रघु भैया, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि हम काऊ ना काऊ हुनर सीखें, मिलकर काम करें, बचत और आय बढ़ाएं, खेती में नई नई तकनीकें अपनाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी रखें और उनको लाभ उठाएं।
1: बिल्कुल, तो हमारे जो भैया बहन हैं वे आत्मनिर्भर बनन की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
0: तभी तो भैया कहते हैं जब गांव की महिला आत्मनिर्भर बनता है तो पूरा वो परिवार और गांव मजबूत हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और देखो रघु भैया, आज हम अपने कार्यक्रम में लेकर आए एक वार्ता, विषय है स्वस्थ नारी खुशहाल परिवार।
1: वार्ताकार हैं श्रीमती मोहन देवी।
2: नमस्कार बहनों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय पर, स्वस्थ नारी खुशहाल परिवार पोषण से बने जीवन साकार। पोषण और संतुलित आहार का क्या महत्व है हमारे शरीर के लिए, ये हम आपके लिए आज इस वार्तालाप में बताएंगे। बहनों, अक्सर हम अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते खुद के खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कभी बच्चों को पहले खाना खिलाना, कभी खेत का काम, कभी घर का काम, और आखिर में जो बचा वही खुद खा लिया करते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ रहेगी तभी परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। संतुलित आहार क्या होता है, महिला और बच्चों के लिए पोषण क्यों जरूरी है, गांव में उपलब्ध सस्ती चीजों से पौष्टिक भोजन कैसे बनाएं? बहनों, पोषण का मतलब है शरीर को सही मात्रा में जरूरी तत्व मिलना, जिससे शरीर मजबूत रहे और बीमारियों से दूर रहे। हमारे शरीर को चाहिए ऊर्जा देने वाले कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे रोटी, चावल, बाजरा, मक्का। शरीर बनाने के लिए दाल, दूध, अंडा, चना, सोयाबीन। रोगों से बचने के लिए जैसे हरी सब्जियां, फल, गाजर, मटर, टमाटर। खनिज और विटामिन्स की बात करें तो इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स ए, डी, सी आदि आते हैं। अगर ये सभी चीजें सही मात्रा में मिलें तभी भोजन संतुलित कहलाता है। बहनों, संतुलित आहार हमारे शरीर को ताकत देता है, खून की कमी नहीं होने देता, बच्चों की सही ग्रोथ करता है, गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखता है, बीमारियों से बचाता है, काम करने की शक्ति बढ़ाता है। गांव में महिलाओं को खेत, पशुपालन, घर और बच्चों की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, इसलिए उनके लिए पौष्टिक तत्व भोजन में शामिल होना ज्यादा जरूरी है। अगर सही पोषण ना मिले तो कमजोरी, चक्कर, खून की कमी, थकान, बच्चों में कम वजन, बार बार बीमार पड़ना जैसी आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। गांव में मिलने वाले सस्ते पौष्टिक आहार। बहनों, अच्छा भोजन हमेशा महंगा हो यह जरूरी तो नहीं, हमारे गांव में ही बहुत सी सस्ती और पौष्टिक चीजें उपलब्ध हैं। अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल इत्यादि। प्रोटीन की बात करें तो चना, मूंग, मसूर, अरहर दाल, सोयाबीन, मूंगफली आदि। कैल्शियम की बात करें तो दूध, दही, छाछ, तिल, रागी आदि चीजों से पूर्ति की जा सकती है। विटामिन्स, पालक, मेथी, सरसों का साग, सहजन की पत्तियां, गाजर, कद्दू, पपीता, केला चीजों से विटामिन की भी पूर्ति की जा सकती है। बच्चों और

0: गर्भवती महिलाओं के लिए गुड़ और चना, दूध, अंडा, खिचड़ी, दलिया, मौसमी फल आदि रखें। रोज की थाली में दाल रोटी, हरी सब्जी और थोड़ा सलाद जरूर खाएं। महिलाओं के लिए विशेष पोषण मिलना बहुत ही जरूरी है। बहनों, महिलाओं को खास तौर पर चाहिए आयरन, खून की कमी से बचने के लिए कैल्शियम, हड्डियों के लिए फॉलिक एसिड, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन, ताकत और मांसपेशियों के लिए। अगर हम आयरन के स्रोतों की बात करें तो जैसे पालक, चना, गुड़, किशमिश, चुकंदर, कैल्शियम, चुकंदर आदि। कैल्शियम के स्रोतों की बातें करें तो दूध, दही, तिल, रागी, हरी पत्तीदार सब्जियां, खाना बनाने के बाद तुरंत चाय ना पिए, इसे आयरन शरीर में कम लगता है। कुपोषण से बचाव के उपाय, समय पर भोजन करें, नाश्ता जरूर करें, बच्चों को जंक फूड कम दें, साफ पानी पिलाएं, हाथ धोकर खाना खिलाएं, गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी से मिलने वाला पोषण आहार जरूर लें, बच्चों का वजन समय समय पर नियमित रूप से जांचें कराएं। तो बहनों, आज हमने जाना कि संतुलित आहार ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। महंगे खाने की जरूरत नहीं, बस गांव में उपलब्ध अनाज, दाल, हरी सब्जियां, दूध, गुड़ और चना को सही तरीके से अपनी थाली में शामिल करें। याद रखिए, हर थाली में हो पोषण का साथ, तभी बनेगा स्वस्थ जीवन का रास्ता।
1: तो क्षमा बहन, देखो अब हमारे भैया बहन ने सुनी वार्ता, स्वस्थ नारी खुशहाल परिवार। और सही बात है, जब नारी घर परिवार की स्वस्थ होगी तो परिवार में खुशहाली आवेगी।
2: और रघु भैया, देखो सावन को महीनों चल रहे हुए है और हम बात ना करें लोकगीत की, लोक संगीत की, गीत की, बजाउन की और गान की, तो ये तो हो ही ना सकता है। तो आज
1: बिल्कुल
2: हमारे साथियों को कौन सो प्यारो सो लोकगीत सुनवा रहे हो जिससे हमारी बहनें छूम उठे? क्योंकि देखो भैया, परसों हम सब 15 अगस्त तो मनाए रहे हैं, साथ ही साथ हमारी बहनें तीज का त्योहार भी मनाए रही हैं।
1: बिल्कुल,
2: और रघु भैया, अब तो आपके गांव में भी गोतरखाने आ गई होंगी बहन बेटियां।
1: बहन बेटियां आ गई हैं क्षमा बहन, और हमारे यहाँ जो पाखड़ को पेड़ है वहाँ पे झूला भी पड़ गया है,
2: हाँ
1: तो बालक भी खुश हैं। और यह है कि ऐसे में रौनक ही जाती है। और देखो कुछ ऐसे खास मौका हैं जो बेटियां अपने माता पिता से मिलती हैं, अपने पीहर आती हैं, अपने
2: बिल्कुल
1: मायके आती हैं, तो जामे एक अलग ही गाँव में एक अलग रंग की छटा हुई जाती है और बहुत अच्छा लगता है।
2: और सावन के महीने में झूले पे बैठ के गीत ना गाएं, ऐसा तो हो ही ना सकता है।
1: बिल्कुल
2: तो भैया, आप लोग की फरमाइश पे सुनवा देते हैं आज ये लोकगीत।

0: जय लोकगीत के साथ आज के कार्यक्रम से भैया विदा ले लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज के कार्यक्रम ग्राम जगत से अपनी बहन क्षमा
1: और अपने भैया रघु को दो अनुमति। भैया बहनों
0: राम राम, राम।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति से संबंधित सूचना सुनिए। ध्रुवपाल सिंह पुत्र श्याम पाल सिंह, ग्राम चौरिया थाना कैंट जिला बरेली, सूचित करते हैं कि इनके पुत्र महावीर सिंह, जिनकी उम्र 20 वर्ष, कद 5 फुट 7 इंच, इकहरा जिस्म रंग गोरा, चेहरा लंबा, आँख काली और बाल भी काले हैं, जो नीले रंग की बनियान, काले रंग की पैंट और पैरों में चप्पल पहने हुए हैं, 19/7/2026 ग्राम इचौरिया से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो राकेश कुमार उप निरीक्षक थाना कैंट जिला बरेली को सूचित करें। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति संबंधित एक और सूचना सुनिए। रेहान खान पुत्र नबी रजा, निवासी वार्ड नंबर 11, ठेरिया निजावत खां, थाना कैंट बरेली, सूचित करते हैं कि इनके

0: भाई इमरान, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, कद 5 फुट 6 इंच, शरीर सामान्य रंग सावला, चेहरा औसत है और आंख नाक कान भी औसत हैं, बाल भी औसत हैं। जो टी शर्ट रंग पीला व नीली जीन्स की पैंट पहने हुए हैं। 21/7/2026 रात 8:20 पर वार्ड नंबर 11 ट्रिया निजावत खां थाना कैंट बरेली से लापता है। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो संजय कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट जिला बरेली को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति से संबंधित सूचना समाप्त हुई। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 15 अगस्त 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 14 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 14 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई।
1: 100.4 मेगाहर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार,
2: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा ये अभियान। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू हो गया नया ड्रेस कोड, 15 अगस्त से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक।

0: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में लगाई जाएगी वंदे मातरम वाटिका। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा में जीपीओ और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अयोध्या में गांधी पार्क के सामने से शुरू हुई यात्रा का शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने किया। वहीं बाराबंकी में जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मैनपुरी में अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। फतेहपुर में स्कूली बच्चों ने 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा मानव श्रृंखला बनाई। मऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कानपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तिरंगा अभियान घर घर पहुंच रहा है। मैं प्रदेशवासियों से, कानपुर वासियों से अपील करता हूं, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के अपने घर पर तिरंगा फहराएं। और बिठोर के हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, यहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र प्रथम की भावना से हम घर घर जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को नंबर एक पर ले जाने का काम करेंगे।
0: प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कानपुर देहात में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने लगभग 1200 फीट लंबे तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहराइच में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने तिरंगा अभियान के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
2: मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी और उस विचारों को, उस सोच को, जो आज पूरे देश में एक साथ हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। पूरे देश भर के कोई गांव, गली, शहर, नगर कुछ भी नहीं बचेगा जहां तिरंगा ना हो। और ये सोच जो डेवलप हुई है, निसंदेह मुझे भारत के प्रति, अपने देश के प्रति एक करने के लिए, संगठित होने के लिए एक बढ़िया अवसर देती है।
0: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में बदलाव के क्रम में रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक अब एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति ने अर्चकों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है, जिसे 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे।
3: हमारी संत समिति ने निर्णय लिया है कि वो सूचीबद्ध जो यानी कि सिला हुआ वस्त्र ना हो, ऐसा रेशमी सिल्क का वस्त्र होगा, नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय होगा। शरदकालीन ऋतु में ऋतु के अनुसार होगा वस्त्र, लेकिन कलर वही रहेगा, पीत वस्त्र में रहेंगे सभी लोग, ये तय किया गया है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुईं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की वाद सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची एवं न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ इस मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का

0: 30वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में 34,947 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गयी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विज्ञान और तकनीक की आवश्यकता पर बल दिया।
1: जल भवन में हम लोगों ने 5 करोड़ का खर्च करके एक सुंदर भवन बनाया। इसमें 3 प्रकार का बुजुर्गों को हुनर सिखाया। एक 28 लाख रुपया का खर्च करके इसरो का बड़ा सेंटर बनाया। इसरो के चेयरमैन खुद ये देखने के लिए आए और हमारे बच्चों को तैयार किया। और आज 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे जिस तरह उसका देखाते समझाते थे कि है क्या क्या टेक्नोलॉजी हम गगनयान के लिए क्या काम कर रहे हैं, चंद्रमा की धरती पर हम कैसे उतरे, ये सब आज इतने होशियार हो गए हैं। मैं जानती हूँ तो मुझे भी समझाने लगे।
0: प्रदेश के वन विभाग की तरफ से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दीपक कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान में आम नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी। एक रिपोर्ट।
2: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सितांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: रक्षाबंधन पर्व के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक परिवहन व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने 26 से 31 अगस्त तक प्रदेश में अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि त्योहार से पहले और उसके बाद यात्रियों की संख्या को देखते हुए परिवहन निगम को अधिकतम बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर यात्रियों की अधिक आवाजाही के मद्देनजर इस दिशा में अतिरिक्त सेवाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यात्रियों की मांग के अनुसार लखनऊ और कानपुर समेत विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के लिए भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में गोमती नदी को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत व्यापक कार्य योजना तैयार की है। शहर से निकलने वाले सीवेज को सीधे गोमती नदी में पहुंचने से रोकने के लिए नालों की टैपिंग, फ्लो डायवर्जन, एसटीपी की क्षमता बढ़ाने और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद गोमती नदी में गिरने वाले 45 नालों की पहचान हुई है। राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि विभाग ने नए नालों की पहचान की है, जिन्हें जल्द शोधित किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। गोरखपुर में आज तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अयोध्या और आसपास के जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी व अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा ये अभियान। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड। 15 अगस्त से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में लगाई जाएगी वंदे मातरम वाटिका। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 और 6 सेकंड हुए हैं। आइए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। ये पहला खत हमारे पास बहड़ी से अंजुम भाई, खालिद बेगम, कैकशा, दानिश, आदिल, शपक और इनके परिवार के सभी लोगों का। मनकारा मंदिर, बीडीए कॉलोनी, करघना, बरेली, उत्तर प्रदेश से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश रूपंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, ममता चौधरी, ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। ग्राम पजौनिया, तहसील कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक आराध्या और चंसौलिया परिवार के सभी लोग। गांव चौराहदा, बागपत से संजय डिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। आप हैं खमरिया, बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापत, प्रतीक कुमार। करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापत। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, आप हैं हमारे श्रोता। कोटबा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा। गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला से आप हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। ये खत हमें भेजा है नगासा रोड उसैद बदायूं से मसरूर खान, अमन अब्बासी, सुहेल अंसारी, भरत यादव, अनस मंसूरी, आबाद खान, रेखा कश्यप, शवाना खान। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला भाई, नसीम बेगम, आशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, सोएब खान, मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। आप हैं वारिस अली खान, शकील अहमद, जावेद अली, अल्फिशा खान, हमजा खान। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज जिला बरेली से नसीम अहमद, मेराज भी, मुस्कान भी, मोहम्मद रेहान, अलशिफा भी, मन्नत भी। पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से अख्तर हुसैन, असलम हुसैन, बीबीपुर से महमूद हुसैन, बैटला सिरसी से मकसूद हसन, बलबंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति अतुल, पायल शर्मा वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा, मालवा रेडियो श्रोता संघ, प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। आप हैं इंदिरा बिहार, रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम, वली अकरम, उल्ला अकरम। राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान, इरफान। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम, अदीबा। मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और इनके परिवार के लोग। पीर भौड़ा बरेली से आज़ाद खान, दिलशाद, मुस्तकीम और तबस्सुम। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। रमेश चंद्र यादव, मुस्कान यादव, सुशीला कुंज, प्रिया, पवन बिहार बरेली से। आप हैं टिंकू भाई उर्फ भास्कर भाई, शुभम कुमार, मोहित माथुर, योगेंद्र माथुर, कुमार पाल माथुर, रुपेंद्र माथुर, रेटू शर्मा, के शर्मा, चोप सिंह शाक, आशीष शाक, रमेश साहू, मोनिका माथुर, अनिष्का माथुर। ग्राम बुटला दौलत पोस्ट उजानी जिला बदायूं से आप हैं हरी सिंह, रोकी सिंह, मीना सिंह, टीना सिंह, प्रिया सिंह, मेघा सिंह और इनके परिवार के सभी लोग। सदर बाजार कैंट बरेली से शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना।

निश्चित खुशी गोस्वामी, वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कमल वाशने, सुशीला कमल, प्रभात कमल, अमरीश कमल, सलोनी कमल, सचिन कमल, नीरू कमल, देविका कमल, कार्तिक कमल, वेदरिचा कमल, ऐश्वर्या कमल और वाशने परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म नया दौर का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी, बलवीर व साथियों की आवाज़ में। गीत है साहिर लुधियानवी का, संगीत ओपी नैयर का।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त, गीत है आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, और फरमाइश की है नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजरत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, वसीम अंसारी और पप्पू भाई अंसारी ने। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम शंकरपुर।

सुनना चाहा है ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावास जिला बदायूं से सुमिंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरजश्री यादव ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। आप हैं पुराना होली चौक ग्राम करघना बरेली से गणेश शर्मा, शगुन शर्मा, कार्तिक पवन, युवराज, इशिता, पंकज, वीर शर्मा, संदीप शर्मा, चंचल शर्मा, चिंकी शर्मा, सूरज शर्मा और शर्मा परिवार के सभी लोग। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंदर कुमार वर्मा। आप हैं विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, रीना, नीरज और इनके परिवार के सभी लोग। बक्सरना दातागंज बदायूं से गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक, मीका बिरक। ऊंची मस्जिद उसैद से चांदमिया तबस्सुम, आसा सत्तार, शाहजहां, अली बाबा, मर्जीना अलबख्श। गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम एच लल्ला, एन बी मिर्जा, मनोबर हुसैन, नसरीन बेगम, काकशा बेगम, अनवार मियां, गुमनाम शाह, बीनाम शाह, नामालूम शाह। शीशगढ़ बरेली से आप हैं इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी और नदीम इदरीसी। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, स्वीट बेबी गाव्या, जयपाल यादव। एकता क्लब कस्बा सिंधौली से आप हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम और गुड़िया। बिजली घर मीरगंज से आप हैं कल्लू भाई, रेहान भाई और इनके परिवार के सभी लोग। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, असलम सैफी, ए खान। गंजडुंडवारा से शमशुल कमर राही, जाहिद अली। कस्बा शेरगढ़ ग्राम टांडा से मोहम्मद उमर इदरीसी, परवीन, नेहा, निदा, सना, आलिया, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद कमर, इम्तियाज इदरीसी। राबर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके परिवार के लोग। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप। कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। वार्ड नंबर 6 आवला बाजारिया से मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। मोहल्ला हलवाईयान चेयरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी, आलिया रानी। बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुलनिशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान। आइए सुनते हैं फिल्म जिगरी दोस्त का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई।

श्रोता 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। ये खत हमारे पास आया है कटर चंद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य का। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाका, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। आप हैं बिरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक प्राची और तनु करमकर। जिला बदायूं ग्राम दूनी नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सतेंद्र कुमार गुड्डू, विशाल संगम, विभू, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। आप हैं कासिम कॉलोनी सनाबाद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शबी खत्री, इदरीस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिफ मीना, हाशिम मीना। भूड़ बरेली से रजत कुमार, आप हैं यादव मोहल्ला सनाबाद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान और मालाकार परिवार के सभी लोग। कस्बा शीरगढ़ मोहल्ला गौड़ी से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। आप हैं तहसील जाफराबाद जिला जालनाहौन से सुधाकर राजदादब, प्रशांत जागुताई, संचित प्रतिमेश, सोहम प्रणाली सानवी, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, शिवनाथ मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अकरम, अल्ताफ डुमराव। बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सरीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एचडी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफताब और मेराज अंसारी। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलठाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाडे, ज्योति नरवाडे, आकांक्षा नरवाडे, आकाश कुमार। आप हैं शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समरराज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। गड़िया बरेली मस्जिद के पास से मोहम्मद कैसर शमशी, मोहम्मद अजीम शमशी, मोहम्मद सलीम शमशी, मोहम्मद नवैद शमशी, रजिया शमशी, राजा बाबू और शमशी परिवार के सभी लोग। गंगवार रेडियो श्रोता संघ ग्राम दलपतपुर पोस्ट चटिया जिला बरेली उत्तर प्रदेश से ओम पाल गंगवार, अनिता गंगवार, मम्मी पापा, ग्राम पिपरिया पोस्ट नगरिया सोबरनी जिला बरेली से अमन गंगवार, आशा गंगवार, संध्या गंगवार, छोटेलाल गंगवार। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। फूलबाग किला छावनी बरेली से विशनदत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगादत्त, बिक्की भारद्वाज, वर्षा कविता कल्पना, ईशु भावना, आदित्य देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर। बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, बिक्की भारद्वाज, अमान, जैद, इसरार भाई, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, प्रदीप पाल, नमन और उमा शंकर। तो आइए सुनते हैं फिल्म बॉर्डर हिंदुस्तान का आवाज़ सोनू निगम की, गीत है ताहिर हम्बालवी का, संगीत है दिलीप हरिकिशन का।

ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार, मस्तान बाबा और इनके परिवार के सभी लोग, गंज डुंडवारा से मोहम्मद फारूक शेख, फरासत हुसैन, मनोवर लल्ला, शमा परवीन शेख, अल कमर बेगम, अफसाना, पप्पू भाई, मिर्जा नसरीन बेगम और अरहान शेख, आप हैं मोहल्ला फतेहगढ़, लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी बीपी रंजू, अशोकपुरी सुशीलपुरी नीलम, बीकेपुरी कैलाशपुरी, रमापुरी आर एसपुरी, आप हैं चंद्रप्रकाश, नेहा सेन, संतोषी सेन भागवानी, गजेंद्र चिराग सेन, बरसूदा से छत्तीसगढ़ से, रामचंद मखीजा काफिर, श्रीमती सविता मखीजा और स्वाति मखीजा और इनके परिवार के सभी लोग, धमतरी बमनिया से, छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, इनकी प्यारी बिटिया सोनम, सरीमपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा बिहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, बेबी अंसारी, छटिया पोखरा डुमराव से आप हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्य भारती, आप हैं जमशेदपुर झारखंड से सुपाही शाही, गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन जी, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक और ढींगरा, छावनी अशरफ खां पानी की टंकी होली चौक बरेली से रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय और इनके परिवार के सभी लोग, दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं परदेसी बाबू फिल्म का ये गीत आनंद राज आनंद की आवाज़ में।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, रात के 8 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा का 271वां सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान उच्च सदन की उत्पादकता महज 39.17% रही। उच्च सदन में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तथा नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज, विकास एवं विनियम

अधिनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि यह संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंधना द्रुमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडीके सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ

अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे।

0: इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मॉनसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। रात्रि के 8:15 हुए हैं और प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं देवश्थर के गाए कुछ

सूरदास की लिखी ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे देवर्षधर के स्वर में, और इन्हीं के स्वर में लीजिए सुनिए ये ब्रह्मानंद की लिखी भक्ति रचना।

और कार्यक्रम के अंत में अभी आप सुन रहे थे कबीर दास की लिखी ये भक्ति रचना देवाश्धर के स्वर में। और आपके साथ संगत करता थे ढोलक पर अंबुज गुप्ता, हारमोनियम पर सुरेंद्र कुमार सरोज, कीबोर्ड पर विजय कुमार सैनी और गिटार पर सरबजीत सिंह मारवा। और इसी के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गीत के बोल लिखे समीर अंजान ने और संगीत दिशन है जतिन ललित।

आनंद बख्शी का लिखा गीत आप सुन रहे हैं। आवाजें हैं उदित नारायण, जसपिंदर नरूला, उद्भव मनोहर शेट्टी, ईशान श्वेता पंडित और सोनाली और साथियों की, और फिल्म का नाम है मोहब्बतें।

सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड में सफल हैं तो घबराएं नहीं। एनआईओएस स्ट्रीम 2 में उसी पाठ्यक्रम में माह अक्टूबर नवंबर 2026 की परीक्षा में शामिल हों और दिसंबर 2026 तक परिणाम प्राप्त करें। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 17 अगस्त 2000

और दिसंबर 2026 तक परिणाम प्राप्त करें। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 17 अगस्त 2026। अभी लॉगिन करें sdmis.nios.ac.in पर या कॉल करें क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज 0532-254-8154 पर।

फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। और इसी के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 4.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:45 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है।
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39

0: प्रतिशत से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक

0: अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 520 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
2: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1,500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी

0: वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शमशाद बेगम की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार है सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है बहार।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है शैलेंद्र ने। तर्ज है शंकर जय किशन की, फिल्म का नाम है रंगोली।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है देवदास।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, गीत को सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है सूरज।

0: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
0: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहत नामा।
2: आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है नया दौर।

जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सलील चौधरी, फिल्म का नाम है मधुमती।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। नख्वानिगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद अली का, फिल्म का नाम है लीडर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

भारतीय सिनेमा की नामचीन अदाकारा वैजयंतीमाला बहुआयामी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। अभिनय के अलावा भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत गायन और नृत्य निर्देशन में अपनी कामयाबी साबित करने के बाद जन प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शानदार अभिनय और नृत्य में अपनी दक्षता के रहते वैजयंतीमाला ने फिल्म जगत में बनाई अपनी विशिष्ट पहचान।

सिने जगत में वैजयंती माला ने 16 बरस की आयु में अभिनय की शुरुआत जिस फिल्म से की वो थी 1949 में आई तमिल फिल्म वजकई। अगले ही बरस 1950 में उन्होंने तेलुगु फिल्म जीवितम में काम किया। अपनी प्रतिभा से वैजयंती माला ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तो कामयाबी के शिखर छुए ही, मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की भी वो

13 अगस्त सन 1933 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के ट्रिप्लिकेट में जन्मी वैजयंतीमाला की शुरुआती फिल्म मंगामा सबाथम बहुत सफल रही। सन 1951 में रिलीज हुई वैजयंतीमाला की पहली हिंदी फिल्म बहार।

फिल्म बहार के 3 बरस बाद वैजयंतीमाला की यादगार फिल्म आई नागिन। राजेंद्र कृष्ण के गीतों और हेमंत कुमार के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: सन 1955 में आई शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति देवदास पर इसी नाम से बनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें वैजयंतीमाला ने निभाई चंद्रमुखी की भूमिका।
1: ये इतने कपड़े लगते पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
2: जरूरत थी या नहीं ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ।

0: देश में एक सासी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
0: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में के लिए कैसे जाओगी, कैसे रहोगे?
1: मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा।
0: मुझे एक वरदान दोगे?
1: क्या?
0: अब कभी शराब नहीं पियोगे?
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर।

0: 空了。
1: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
0: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास।
1: नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं।
0: जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ।

0: तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।
1: अब फिर कब मिलना होगा?
0: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
1: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
2: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।

फिल्म देवदास के लिए वैजयंतीमाला को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वैजयंतीमाला ने यह कहकर पुरस्कार अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका सह अभिनेत्री की नहीं बल्कि मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वैजयंतीमाला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर और

1958 में वैजयंतीमाला की दो चर्चित फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। इनमें से एक थी फिल्म साधना।

पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में वैजयंतीमाला के नायक थे दिलीप कुमार। मधुमति अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय के अलावा अपने सुमधुर संगीत के लिए भी सराही।

0: लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे गुंडे के लिंके।
2: अरे देख रही धन्नो, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है।
1: फाउंटेन लावा है, चलत ना ही सारी से की निकाल दे हो एक मिनट में।
2: अरे बाह रे महारानी बाह, फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का?
1: फोकट का नहीं, इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
2: अरे इकन्नी देखी है कौन दिन?
1: हाय हाय, तेली का तेल जले मसालची की छाती फटे। तोरी छाती काहे पटेरे? एक को समझाए दियो,
2: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं, लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
2: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है देखा।
3: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर हटे।

0: 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब वैजयंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

फिल्म संगम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए वैजयंती माला ने तीसरी बार पाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार।

फिल्म संगम के बाद वह जयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

अपने करियर के ढलान में भी वैजयंतीमाला ने कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। ये थी सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष।

सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।

वैजयंती माला जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचिंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंती माला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंती माला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है वो अटूट है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

सनम तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बाबरा ने और संगीत से संवारा है आरजी बर्मन ने।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों को आप सुन रहे हैं फिल्म हम किसी से कम नहीं में, और शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत निर्देशन है राहुल देव बर्मन का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ ही अब वक्त है चित्रपट संगीत के कार्यक्रम को, फिल्म संगीत के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रवीण कश्यप का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रवीण कश्यप का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन, और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्य

0: जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ. जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
1: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it today. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business. But continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed during the monsoon session, but only one of them was discussed in both houses. He stated that during this session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha and 39% in the Rajya Sabha. President Draupadi Murmu will address the nation on the eve of the 80th Independence Day tomorrow. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in